सुप्रभात। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज पर और साथ ही FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आज दिन शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि तदनुसार 29 मई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हो रहे हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। सवेरे के 6 बज रहे हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली से सुनेंगे समाचार।
1: समाचार होंगे
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
3: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3 करोड़ 91 लाख घरों को मंजूरी दी और उनमें

0: 3.5 करोड़ से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ईश्वर का सामीप्य पाने के लिए हमें आवश्यकता होती है एक स्वच्छ और निश्चल मन की, ना कि रूप और वैभव की।

माँ शब्द अपने आप में ही परिपूर्ण है, और फिर वो माँ जो बिन बोले सब जानती हैं और बिन मांगे सब देती हैं। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम।

इस जीवन के कठिन क्षणों में जब सारे रास्ते बंद मिलते हैं तो मात्र एक ही सहारे की उम्मीद होती है, और वो सहारा होता है ईश्वर का, अपने आराध्य का।

0: ये थी आज की वंदना।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
4: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharati

0: archives.co.in।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है

0: एक बार फिर नोट करें 8700001424।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं चिंतन बिंदु।
8: सब जानने वाले हैं प्रभु, प्रभु से कुछ नहीं छिपता। हमको ये लगता है कि हम अंतर्मन में कुछ और, बाहर से कुछ और रहें, तो जो लोग नहीं देख पाते वह परमात्मा भी नहीं जानते होंगे। ऐसा संभव नहीं, वह दृष्टा है, वह सब देख रहा है, उससे कुछ छिप ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो जब अपने कुछ सैनिकों के साथ बिभीषण जी प्रभु के पास आए, सभा लगी है, सारे लोग बैठे हैं, राघवेंद्र सरकार बैठे, अंगद, नल, नील, सुग्रीव, हनुमान जी महाराज, सारे लोग बैठे हैं। राघवेंद्र सरकार ने सुग्रीव जी से कहा कि तुम सेनाध्यक्ष हो, तुम बताओ कि विभीषण को अपनाना है कि नहीं अपनाना है। तो उन्होंने कहा नहीं, दुश्मन का भाई है, हो सकता है भेद लेने आया हो, युद्ध नीति में यह ठीक भी नहीं है किसी दुश्मन के भाई को अपनाया जाए, चाहे उसे स्वीकार किया जाए। सबसे पूछा, हनुमान जी महाराज चुप थे। हनुमान जी महाराज जानते हैं कि प्रभु सर्वसमर्थवान हैं। मैं इन्हें बताऊं कि विभीषण जी के घर में राम नाम अंकित, गृह शोभा भरने न जाए, उनके घर में राम नाम अंकित है। तो कहीं ना कहीं अपने सब जानने वाले परमात्मा के प्रति हमारा शंका का भाव होगा, इसलिए हनुमान जी सब जान कर के भी चुप हैं। जब सब लोगों ने सब कुछ कहा, मत अपना, ये भेद लेने आया होगा, तो प्रभु मुस्कुराने लगे और प्रभु ने बात कही कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कोटि विप्र बद लागहि जाऊं, आयो शरण तजे नहीं ताऊं। प्रभु कहते हैं कि निर्मल मन, जिसका मन निर्मल हो, कहा गया है कि निर्मल मन हो तो रघुनायक सेवरी के घर जाते, सूर श्याम का बाह पकड़कर साग विदुर घर खाते, इस पर तुमने नहीं बिचारा कैसे आएंगे प्रभु राम। तो प्रभु कहते हैं कि बाह्य रूप से ये तो एक असुर का भ्राता है, रावण का भाई है, लेकिन इसका अंतःकरण पवित्र है और निर्मल मन से मेरे शरण को ग्रहण करने वाला, चाहे वह मेरे पत्नी के हरण करने वाले रावण का भाई क्यों ना हो, मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। कोटि विप्र बद लागे जाऊं, एक दो नहीं करोड़ों विप्रों के वध लगने का पाप हमें लगेगा कि कोई सच्ची मन से शरणागति ग्रहण किया हो फिर भी उसे मैं स्वीकार न करूं। इस कथा का मात्र आशय यह है कि जिस शरण में आप बैठे हो, राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि शरणागति पवित्र अगर है तो मुझे लगता है प्रभु की कृपा निश्चित प्राप्त होगी। हमारी शरणागति पवित्र है कि नहीं है, हम अंतर मन से क्या उस भाव से प्रभु के पास पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं, क्या अंतर मन की पवित्रता से पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। बार बार जब प्रभु की शरणागति प्राप्त हो तो यह चिंतन विभीषण जी का करिए कि उनका अंतर मन

0: पवित्र है। तो एक राक्षस के भ्राता होने के बाद भी भगवान ने उन्हें अपना बना लिया, और अंतःकरण अगर पवित्र नहीं है तो बाह्य रूप से कितना भी अगरबत्ती कपूर धूप दीप हम जला लें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रभु अंदर भी बैठे हैं और बाहर भी हैं। गोपिकाएं कहती हैं श्रीमद् भागवत में, अंतरात्मदृक् अखल देही नाम अंतरात्मदिक, आप अंदर भी विराजमान हो बाह्य रूप से बाहर भी विराजमान हो, सर्वम खलविदम ब्रह्म हो, जो परमात्मा हमारे अंतःकरण में विराजमान है और बाहर भी विराजमान है, उस प्रभु को बताने की आवश्यकता नहीं, मैं बहुत बड़ा पुजारी हूँ, मैं बहुत अच्छा भोग लगाता हूँ, मैं बहुत विधियों से आपकी पूजा करता हूँ, वह परमात्मा तो केवल आपके अंतर्मन के पवित्रता से ही रिझने वाला है। तो उस पवित्र अंतर्मन के साथ शरणागति ग्रहण कीजिए। तो जैसे प्रभु ने विभीषण जी को अपना बना लिया, वैसे ही हम सबको भी अपना बना लेंगे, स्वीकार कर लेंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन बिंदु, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

हमारे आज की इसी सभा में सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे 9:50 पर कुछ शिव भजन। लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग में 11:05 पर सुनिएगा श्रीमती मैनावती श्रीवास्तव के गाय लोकगीत। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा 12:00। दोपहर 12:55 पर सुगम संगीत में आज के कलाकार होंगे मेहदी हसन और गुलाम अली।

महिलाओं के लिए उनका कार्यक्रम होगा नारी जगत दोपहर 1:15 पर। रेबीज की बीमारी लक्षण व बचाव, डॉक्टर रामाशंकर सिंह की ये वार्ता आप सुनेंगे खेती किसानी कार्यक्रम में दोपहर 1:50 पर। युवा श्रोताओं के लिए उनका कार्यक्रम होगा युवाणी शाम 5:05 पर। ग्राम जगत कार्यक्रम होगा शाम 5:35 पर। इसमें आज आप एक झलकी सुनिएगा, लड़की पसंद है। किसान भाइयों के लिए उनका कार्यक्रम होगा खेतीबाड़ी शाम 6:10 पर। इसमें आज एक वार्ता होगी डॉक्टर सतीश कुमार तोमर की, परिस्थितियों के अनुसार धान की प्रजातियां।

शाम 6:45 पर लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आज आप सुनेंगे विजय शंकर विश्वकर्मा के गाए लोकगीत। जितेंद्र प्रसाद त्यागी का काव्य पाठ सुनिएगा देश हमारे कार्यक्रम में शाम 7:00। हिंदी कार्यक्रम शाम 8:00 होगा। इसमें आज आप सुनेंगे मिथिलेश वर्मा की वार्ता हिंदी साहित्य में स्तरीय चेतना।

शाम 8:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में भी आज आप सुनेंगे मैं दिया सुनोर गुलाम अली को। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन, राग होगा दुर्गा। हमारे आज के फिल्म संगीत के कार्यक्रम इस प्रकार हैं। इसी सभा में 7:31 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा पूर्वा सुहानी। 8:45 पर भी फिल्म संगीत होगा और 10:05 पर भी फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। ग्यारह पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। दोपहर 12:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने। शाम 7:30 पर सुनिएगा फिल्मी कवालियां और रात 10 भी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुन सकते हैं। ये था आज के शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

श्री राम की कोई भी सीख, कोई भी तर्क लक्ष्मण के उनके साथ वन जाने के संकल्प को नहीं टिका सका, तो श्री राम को समर्पित छोटे भाई की अनुनय विनय माननी पड़ी। तब उन्होंने लक्ष्मण से जाकर माता की अनुमति ले लेने को कहा। हर्षित हृदय से लक्ष्मण माता के पास पहुंचे और उन्हें विस्तार से सब कुछ कह सुनाया। घटना चक्र की गति से माता सुमित्रा इस प्रकार सहम गईं, जैसे जंगल में लगी आग से हिरनी भयभीत हो जाती है। कैकेयी की करनी पर उन्होंने अपना सिर पीट लिया। श्री राम तथा सीता के प्रति लक्ष्मण के प्रेम और आदर तथा समर्पण की भावना से वो भली भांति परिचित थीं। बोली, हे पुत्र, जानकी तुम्हारी माता हैं और तुम पर अथोर स्नेह रखने वाले श्री राम तुम्हारे पिता के समान हैं। जहाँ उनका निवास हो वही अयोध्या है। यदि वे वनगमन करें तो तुम्हारे यहाँ होने का कोई अर्थ नहीं है। गुरु, पिता माता, भाई देवता तथा स्वामी की प्राणपण से सेवा करनी चाहिए। जो भी पूजनीय तथा प्रिय लोग हैं वे केवल राम के कारण पूज्य और प्रिय हैं। अतः श्री राम और सीता के साथ वन जाओ और जीवन को सार्थक करो। मैं बड़भागी हूँ जिसके पुत्र का श्री राम चरणों में ऐसा अनुराग है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम वन को जा रहे हैं, अतः वन में तुम पूरी निष्ठा, मन, वचन और कर्म से उनकी सेवा करना।

0: अभी आप सुन रहे थे मानस गान, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:55 हो रहे हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली से सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्दझाः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी गतदिने जनजातीयप्रतिनिधिभिः सह मिलितवान्। ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य जनजातीय सुरक्षा कल्याण मञ्चस्य विषये सामाजिक सञ्चार माध्यमेन श्रीमोदी उक्तवान् यत् आदिवासी समुदायं प्रति तस्य समर्पणं यथार्थतया प्रशंसनीयम्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः पुनरेकदा अवैध प्रवासिनाम् अभिज्ञानार्थं निर्वासनार्थं सीमा सुरक्षां च सुदृढीकर्तुं सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां दृढतया प्रतिपादितवान्। गतवासरे गुजराते गान्धीनगरे ४३,३०० कोटिरूप्यकाणां विकास परियोजनानाम् उद्घाटनस्य शिलान्यासस्य च अनन्तरं जनसभां सम्बोधयन् श्रीशाहः पश्चिमबंगाल सर्वकारस्य अपि प्रशंसाम् अकरोत्, यतः शासनेन एकसप्ताहाभ्यन्तरे सीमा सुरक्षाबलाय 600 हेक्टर परिमिता भूमिः प्रदत्ता। वीर सावरकर महोदयस्य जन्मवार्षिक्याः अवसरे गृहमन्त्री तस्य योगदानाय त्यागाय च तस्मै श्रद्धाञ्जलिं प्रदत्तवान्। गुजरातराज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां श्रीशाहः अनेकेषां सार्वजनिक सौकर्याणाम् उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रान्तरे सः अहमदाबाद नगरे आगामिनि ओलम्पिक क्रीडानां कॉमनवेल्थ क्रीडानां विश्वरक्षक क्रीडानां अग्निक्रीडानां च सज्जतायाः समीक्षाम् अकरोत्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मूः आरक्षकबलाय बोधितवती यत् आरक्षकाः अधिकं नागरिकाभिमुखाः भवेयुः, अपि च समाजस्य दुर्बलवर्गाणां विशेषतः महिलानां निर्धनानां बालकानां च विषये संवेदनशीलतां धारयेयुः। राष्ट्रपतिः गतवासरे गंगटोक नगरे आयोजिते अलंकरण संचलने सिक्किमारक्षकदलाय प्रतिष्ठितं राष्ट्रपतिध्वजसम्मानं प्रदाय एवम् उक्तवती। तया राज्ये विधिव्यवस्थायाः पालने सहैव आपत्प्रबन्धने सिक्किमारक्षकदलस्य भूमिकायाः भूरिशः प्रशंसा कृता। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य आरभ्य अस्य मासस्य 31 दिनांकपर्यन्तं कर्णाटक गोवा केरल राज्यानां त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। अद्य सः कर्णाटके बेंगलुरुनगरे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इत्येतस्य संस्थानस्य 45 वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते वैश्विक समारोहे सहभागं करिष्यति। तदनन्तरं सः कर्णाटकस्य दावणगेरे स्थितस्य विश्वविद्यालय बीडीटी अभियांत्रिकी महाविद्यालयस्य प्लैटिनम जुबली इति महारजत जयन्त्युत्सवे अपि सहभागं करिष्यति। कर्णाटकस्य मुख्यमन्त्री सिद्धारमैया इत्यसौ गतवासरे लोकभवने राज्यपालस्य सचिवाय औपचारिकरूपेण स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। वार्ताहरान् सम्बोधयन् सः प्रमाणितवान् यत् त्यागपत्रं सचिवाय औपचारिकरूपेण प्रदत्तमिति। अत्रावसरे सः राज्यपालं नूतनमुख्यमन्त्रिणः पदभारग्रहणाय आमन्त्रयितुं साग्रहं निवेदितवान्, यतोहि विधानसभायां 33,100 विधायकानां समर्थनेन कांग्रेसदलस्य पूर्णबहुमतं वर्तते। तेन सूचितं यत् कांग्रेस उच्चाधिकारिभिः तस्मै राज्यसभायाः सदस्यता प्रस्ताविता आसीत्, परञ्च सः राष्ट्रिय राजनीतौ स्वकीयाम् अरुचिं प्रकटयन् उक्तवान् यत् सम्प्रत्यसौ राज्यस्य जनानां कृते एव निरन्तरं कार्यं करिष्यति। भारतीयर्तुविभागेन अनुमितं यत् देशस्य उत्तरपश्चिमीय दिग्विभागस्य कतिपयक्षेत्रेषु अतितापघटनायाम् अपचितिः भविष्यति। अन्ते क्रीडावार्तासु। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य उपान्तिचक्रीये द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन समं स्पर्धिष्यते। स्पर्धा सायं 7:30 आरप्स्यते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी ऑफ बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्री शाह ने कहा कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said, "Their dedication to the tribal community is truly commendable." He stated that during the meeting, meaningful discussions were held on various topics related to the development of tribal communities and their empowerment. Vice President C.P. Radhakrishnan will undertake a three-day visit to Karnataka, Goa and Kerala beginning today. The Vice President will attend the global celebration marking 45 years of the Art of Living Foundation in Bengaluru, Karnataka today. Later in the day, he will attend the Platinum Jubilee celebrations of University BDT College of Engineering at Davanagere, Karnataka. The CBI has arrested Giribala Singh in the Twisha Sharma death case. Giribala is Twisha's mother-in-law and a retired district and sessions judge. The arrest was made in Bhopal yesterday. Earlier, a CBI team questioned and searched Giribala's home for nearly 7 hours, following which she was arrested. Union Home Minister Amit Shah held a meeting yesterday to review preparations for the Commonwealth Games and proposed Olympics to be hosted in Ahmedabad. Union Sports Minister Mansukh Mandaviya, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi and senior officials were present at the meeting. In a social media post, Mr. Shah said, "Keeping in mind the proposed world-class sporting events in Ahmedabad, sporting facilities are being developed in accordance with global standards. Ahmedabad would be hosting the 2030 Commonwealth Games and has officially submitted a bid for the 2036 Olympics." The National Testing Agency, NTA, has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test undergraduate CUET-UG 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. The examinations will now be conducted on the 31st of this month and 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for yesterday, was rescheduled due to Eid al-Adha. NTA said that admit cards for candidates appearing for the test on Sunday can be downloaded from the official website of NTA, cuet.nta.nic.in. National Security Advisor Ajit Doval called for decisive action against terrorism and said there cannot be double standards in the fight against it. Addressing an international security forum in Russia, Mr. Doval said, "Responsible nations have to evaluate their choices and decide whether they support sponsors of terrorism or counter them with decisive action."
4: Terrorism constitutes as one of the most serious threats to international security, and he felt that this is something for which all international security experts must address this threat. It is an antithesis of everything that humanity stands for.

0: अभी आप सुन रहे थे मिली जुली आवाजों में देश गान, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप हमारे केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, कहा घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना सरकार का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ, कहा किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की, कहा प्रशिक्षण व्यवस्था में सुनिश्चित की जाए गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता। और तेज आंधी और गरज चमक के साथ हुई बारिश से लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने प्रदेश में 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर जारी की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठियों की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर के एक कार्यक्रम में उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय के बारे में चर्चा की।
3: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। श्री चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
4: देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की, इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं इस वर्ष में। इस साल कुल मिलाकर जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3,765.63 टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188 लाख टन अधिक है।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है।
6: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था और उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की कल उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसिंग केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, आधुनिक तकनीक, संवेदनशील व्यवहार, संवाद कौशल, साइबर अपराधों की समझ और फॉरेंसिक दक्षता प्रभावी पुलिसिंग की बुनियादी आवश्यकता बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण व्यवस्था में गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता और मनोबल को मजबूत करने के लिए बेहतर आवासीय एवं कार्य सुविधाएं आवश्यक हैं। उन्होंने पुलिस लाइन्स, थाना बैरक और अग्निशमन केंद्र के कार्य गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनका सादगीपूर्ण जीवन, किसानों के प्रति समर्पण और जन कल्याण की राजनीति सभी को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। अयोध्या में आज श्री राम मंदिर परिसर के परकोटे में बने मां भगवती मंदिर के शिखर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और प्रमुख संत साध्वी रितंबरा ध्वज फहराएंगी। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट।
7: पहली बार राम मंदिर परिसर में 3,000 से अधिक मातृ शक्तियों का एक साथ समागम होने जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु समारोह में शामिल होंगी। सभी आमंत्रित मेहमानों को QR कोड युक्त प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं और स्कैनिंग के बाद ही मंदिर परिसर में प्रवेश मिलेगा। शाम 6 बजे माँ भगवती मंदिर के शिखर पर साध्वी रितंबरा और साध्वी निरंजन ज्योति ध्वजारोहण करेंगी। कार्यक्रम को लेकर रामनगरी में उत्साह का माहौल है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 और 7 जून को आयोजित की जाएंगी। एनटीए ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रदेश के कई जिलों में बीती रात तेज आंधी और गरज चमक के साथ शुरू हुई बारिश से लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिली है। कुछ जिलों से ओले पड़ने के भी समाचार मिले हैं। गोरखपुर और इसके आसपास के पूर्वी जिलों में कहीं कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है तो कुछ स्थानों पर आसमान में बादल छाए हुए हैं। बदायूं और बिजनौर सहित कुछ अन्य जिलों में बारिश के साथ साथ ओले पड़ने की सूचना है।

अनुसार 1 जून से मौसम के शुष्क होने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह भी दी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, घुसपैठिए को देश से बाहर निकालना सरकार का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की। कहा, प्रशिक्षण व्यवस्था में सुनिश्चित की जाए गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता। और तेज आंधी और गरज चमक के साथ हुई बारिश से लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने प्रदेश में 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर जारी की चेतावनी। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: करना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

यशुदास को अभी आप सुन रहे थे फिल्म चितचोर में। गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। अगला गीत आइए सुनते हैं यशुदास, हेमलता और बंश्री सेनगुप्ता की आवाज़ में। फिल्म का नाम है दुल्हन वही जो पियामन भाए। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार।

0: विंध्याचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

यशोदास की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गीत। फिल्म का नाम था साजन बिना सुहागन। गीतकार इंदिवर थे और संगीत दिया था उषा खन्ना ने। अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म छोटी सी बात से। आवाज़ें हैं यशोदास और आशा भोसले की। गीत योगेश के हैं और संगीतकार हैं सलील चौधरी।

0: यशोदास को अभी आप सुन रहे थे फिल्म स्वामी में। इसके साथ ही आज का फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप दिल्ली से सुनेंगे समाचार।
1: ठीक 8 बजने को है, अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की जानकर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
4: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
4: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामीनाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
5: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज, जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। तीन मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
0: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है, समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिव कुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Home Minister Amit Shah says Center's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirement of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees. He said the committee, headed by retired Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Naulekar, would submit its report within a year.
7: Removing infiltrators from the country is a commitment of our government. And for this, Prime Minister Narendra Modi has decided to form a demographic change committee. This high-powered committee will examine the reason behind the demographic changes that have taken place across the country and look into the possible solutions. It will also consider where there is a need to bring any new law regarding this issue.
6: Union Home Minister Amit Shah will visit the strategically significant and sensitive Harami Nala and Creek areas along the international border in Kutch on the second day of his Gujarat tour today. During the visit, he will review the security arrangements made by the Border Security Force and discuss border security challenges with senior officials. The Home Minister will inaugurate Border Outpost G7 and interact with BSF personnel. National Security Advisor Ajit Doval called for decisive action against terrorism and said there cannot be double standards in the fight against it. Addressing an international security forum in Russia, Mr. Doval said responsible nations have to evaluate their choices and decide whether they support sponsors of terrorism or counter them with decisive action.
8: Terrorism constitutes as one of the most serious threats to international security, and he felt that this is something for which all international security experts must address this threat. It is an antithesis of everything that humanity stands for. India has been a victim of state-sponsored terrorism.
6: In a social media post, the Indian Embassy in Moscow said Mr. Doval participated in the first International Security Forum and the 14th meeting of High Representatives for Security Matters in Moscow. On the sidelines of the forum, Mr. Doval held a meeting with his Russian counterpart, Shoigu. During the meeting, the parties reviewed the current state of cooperation in the areas of defense, security, energy and trade economic ties. The BJP has appointed new party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. BJP National President Nitin Naveen appointed East Delhi MP and Union Minister Harsh Malhotra as the party's Delhi unit president. Dr. Archana Gupta has been appointed as Haryana BJP chief and Kewal Singh Dhillno will be the new president of Punjab BJP. Abhishek Debroy has been appointed as Tripura BJP president. With the appointments, Mr. Naveen has begun the process of selecting a new team of office bearers in states as well as the national level. In Kerala, Governor Rajendra Vishwanath Arlekar will address the Legislative Assembly today. This is the first policy address of the new UDF government in Kerala after 10 years. Following the governor's address today, the House will adjourn and reconvene on June the 1st for discussion on the motion of thanks to the governor's address. Prime Minister Narendra Modi met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said their dedication to the tribal community is truly commendable. He stated that during the meeting, meaningful discussions were held on various topics related to the development of tribal communities and their empowerment. Vice President C.P. Radhakrishnan will undertake a three-day visit to Karnataka, Goa and Kerala beginning today. The Vice President will attend the global celebration marking 45 years of the Art of Living Foundation in Bengaluru, Karnataka today. Later in the day, he will attend the Platinum Jubilee celebrations of University BDT College of Engineering at Davanagere, Karnataka.
7: In Punjab, the counting of votes for the 102 civic bodies has started. The fate of 754 candidates from 1,897 wards will be decided today. Voting was held on May the 26th. These civic polls are being seen as a litmus test for all the major political parties in the state ahead of the upcoming Punjab Assembly elections in 2027. In this multi-cornered contest, the ruling Aam Aadmi Party AAP, International Congress, Shiromani Akali Dal SAD and Bharatiya Janata Party BJP have fielded their candidates. The National Testing Agency NTA has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test undergraduate CUET UG 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. The examinations will now be conducted on the 31st of this month and 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for yesterday, was rescheduled due to Eid al-Azhar. NTA said that admit cards for candidates appearing for the test on Sunday can be downloaded from the official website of NTA, cuet.nta.nic.in. The CBI has arrested Giribala Singh in the Twisha Sharma death case. More in this report.
4: Giribala is a retired judge and Twisha's mother-in-law. She was arrested yesterday in Bhopal after nearly 7 hours of questioning. She will be produced before a CBI court today. A day before the arrest, the Madhya Pradesh High Court cancelled her anticipatory bail. The court said that given the seriousness of the case and the evidence, relief could not be granted to her. Twisha died under suspicious circumstances on the night of May 12 in the Katara Hills area of Bhopal. Her in-laws called it a suicide, but her family has accused her husband and in-laws of murder. Abhinav Goyal, Akashwani, Bhopal.
7: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. World Meteorological Organization, WMO, has said that global temperatures are likely to hit near record highs over the next 5 years. According to a new WMO report, annual global mean near surface temperatures during 2026 to 2030 are predicted to range between 1.3 and 1.9 degrees Celsius above the 1850 to 1900 average. According to the report, there is an 86% chance that at least 1 year between 2026 and 2030 will surpass 2024 as the warmest year on record. There is an El Niño predicted for the end of 2026, which increases the chances of 2027 becoming the next record-breaking year. The United States, Mexico, and Canada issued a trilateral statement on public health travel measures for individuals arriving from African regions in the wake of the Ebola virus outbreak in parts of Africa. In a statement, these countries said that this coordinated approach aims to protect the citizens and the millions of visitors, fans, athletes and tourists expected during the FIFA World Cup 2026 while maintaining travel and commerce across their borders. Meanwhile, Uganda has banned mass public gatherings in an effort to curb the spread of Ebola in the East African country. World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus has said that the Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo was very complex, with conflict, insecurity, displacement, food shortages and community mistrust complicating efforts to contain the disease. Speaking to reporters at the airport upon arriving in the DRC capital of Kinshasa, Tedros said he had come to show affected communities that they're not alone and that the WHO was there to support the response. He said WHO teams are already working on the ground in Bunia, the capital of the eastern Ituri province, adding that he would travel there today to assess the situation. Air India has extended suspension with flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. The airlines had earlier suspended flight operations on Tel Aviv-Delhi route till June end. A senior Air India official says that flights have been further suspended, keeping in mind the geopolitical situation in the region. In the wake of the West Asia conflict, airlines have been facing multiple headwinds, including costlier fuel and airspace curbs, which pushed up their operational costs. India Meteorological Department IMD has issued a red alert for thunderstorms and rainfall conditions today over parts of Delhi, Haryana and Chandigarh. According to the weather agency, Bihar, Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh are likely to experience thunder squalls today with wind speed gusting to 80 km per hour. In the US, three people were killed in an explosion that engulfed a Dallas apartment building in a massive and deadly blaze. Dallas Fire Rescue spokesperson Jason Evans announced the fatalities at a news conference. In IPL cricket, Gujarat Titans and Rajasthan Royals will meet in the all-important qualifier 2 at the Maharaja Yadavendra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh, this evening. The match will start at 7:30 p.m. The winner will take on Royal Challengers Bengaluru in the final on Sunday at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. India took a 1-0 lead after beating England comfortably by 38 runs in the first of a three-match T20 International Cricket Series at County Cricket Ground, Chelmsford. After losing the toss, India made 188 runs for 7 wickets in their stipulated 20 overs. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
9: Thank you, Sunil. The resignation of Siddaramaiah as Karnataka Chief Minister is the top news in many dailies. Siddaramaiah makes way for D.K. Shivakumar in Karnataka leadership shift, headlines Hindustan Times. Amid suspense on whether Chinese President Xi Jinping will attend the BRICS summit in India in September, the two nations held constructive talks on the LAC and border row, writes the Asian Age. To ensure foolproof conduct of the NEET UG again, the government is mulling to seek logistical support from the Indian Air Force to transport examination material, reports the Tribune. In its editorial piece titled Death's Blow to Online Gaming, the Asian Age welcomes the Supreme Court's decision upholding GST on the full amount deposited by online gaming participants, seeing it as a strong step to curb betting and its damaging social consequences. The paper argues that the distinction between skill-based and chance-based betting is too blurred to be meaningful in practice and says the ruling could severely hit the industry. At the same time, it notes that retrospective taxation, though legally upheld, creates uncertainty for business. Dailies have paid tributes to poet Bashir Badr, who died yesterday. Bashir Badr, master Urdu poet of love and melancholy, passes away, headlines the Times of India. In the next 5 years, the Earth is likely to surge again and again past the international climate threshold set as safe, according to new United Nations climate projections, reports the Statesman. And finally, in a landmark development for wildlife conservation in Himachal Pradesh, forest officials in charge

0: there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end. Amid continued geopolitical uncertainties in West Asia and in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मस्नूई आबादियाती तब्दीलियों से मुतालिक मरकज की आला सतही कमेटी इस मामले से निमटने के लिए कानूनी जरूरत का भी जायजा लेगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस लानत से निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता। बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के सदर मुकर्रर किए हैं। मगरबी एशिया में जारी जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने जुलाई के आखिर तक इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल रखने में तौसी की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ में क्वालिफायर 2 के अहम मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकज की आला सतही कमेटी गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने और दीगर गैर फितरी वजूहात के सबब मस्नूई आबादियाती तब्दीलियों के सिलसिले में इस बात का भी जायजा लेगी कि क्या इस मामले से निमटने के लिए कानून की जरूरत है या नहीं। जनाब शाह ने कहा कि ये कमेटी मुल्क भर में हो रही मस्नूई आबादियाती तब्दीलियों की वजूहात का भी जायजा लेगी। उन्होंने कहा कि वो जरूरी इस्लाही इकदाम पर तबादला ख्याल करेगी और इस बात का पता लगाएगी कि क्या किसी मखसूस कानून की अमलदारी लाजिमी है।
2: उस पेटे को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: वजीर दाखिला कल गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने और संगे बुनियाद रखने के बाद एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। जनाब शाह ने मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हुकूमत की बांग्लादेश से दरअंदाजी के लिए नुक्ताचीनी की और दावा किया कि रियासत में असेंबली इंतखाबात के बाद सूरत हाल तब्दील हुई है।
2: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के अपने दौरे के दूसरे दिन कच्छ में बैन अल-अक़वामी सरहद से मुत्तसिल इंतहाई अहमियत के हामिल और हसास हरामी नाला और दीगर छोटे नालों के इलाकों का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो सरहदी हिफाजती फोर्स की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेंगे और सीनियर अहदेदारान के साथ सरहद पर सिक्योरिटी चैलेंजों के सिलसिले में तबादला ख्याल करेंगे। वजीर दाखिला बॉर्डर आउटपोस्ट G7 का इफ्तिताह करेंगे और BSF एहलकारों के साथ बातचीत करेंगे। वो OP टावर 1170 पर कंट्रोल रूम भी जाएंगे और हरामी नाला खित्ते का कश्ती में जायजा लेंगे। बाद में दिन में जनाब शाह भुज में BSF सेक्टर हेडक्वार्टर्स में सरहद से मुतालिक मामलात पर एक आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे। जनाब शाह का 6 माह के अंदर ये कच्छ का दूसरा दौरा है। उन्होंने गुज़श्ता बरस नवम्बर में BSF के कौमी यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत के लिए भुज का दौरा किया था। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है और कहा है कि इससे निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता। रूस में बैन अल-अक़वामी सिक्योरिटी से मुतालिक एक फोरम से खिताब करते हुए जनाब डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार ममालिक को अपने इंतखाब का जायजा लेना होगा और ये फैसला करना होगा कि क्या वो दहशतगर्दी को शह देने वालों की मदद फराहम करना चाहते हैं या उससे निमटने के लिए फैसला कुन कार्रवाई करना चाहते हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में मॉस्को में भारतीय सिफारतखाने

0: ने कहा है कि जनाब डोभाल ने मॉस्को में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी के पहले फोरम और सलामती से मुतालिक उमूर के लिए आला नुमाइंदों की 14वीं मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग की मेजबानी रूसी फेडरेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने की थी और इसमें कसीर कुतबी दुनिया में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी को लाहिक चैलेंजों और खतरात पर तबादलाए ख्याल किया गया। बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के नए सदर मुकर्रर किए हैं। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन ने मशरकी दिल्ली के रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर हर्ष मल्होत्रा को पार्टी की दिल्ली इकाई का सदर मुकर्रर किया। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी की सरबरा और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब बीजेपी का नया सदर मुकर्रर किया गया है। अभिषेक देब्रोय त्रिपुरा के बीजेपी सदर होंगे। इन तकर्रियों के साथ जनाब नबीन ने मुल्की सतह के साथ साथ रियासतों में जिम्मेदारी निभाने वालों की नई टीम के इंतखाब का अमल शुरू कर दिया है। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन उत्तराखंड के 3 रोजा दौरे पर हैं। आज अपने दौरे के दूसरे दिन वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। पहले दिन देहरादून में पार्टी दफ्तर में कौमी सदर की जेर सदारत रियासती वुजरा ग्रुप और कोर कमेटी की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तंजीम की सतह पर तौसी, बूथ को मजबूत करने, अवाम से राबता मुहिम और आइंदा प्रोग्रामों के खाके पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी के रियासती सदर महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी लीडर साबिका इंतखाबात में जहां पार्टी को कम वोट मिले उन बूथ पर जाएंगे।
1: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोर कमेटी वाला मार्ग किया, मुख्य रूप से 2027 चुनाव में बूथ प्रबंधन पे आपका मार्गदर्शन रहा। जो बूथ हम लोकसभा चुनाव में और उसके पहले विधानसभा चुनाव में जो बूथ हम जीत नहीं पाए थे, उन बूथों के लिए हमने टीम बनानी है। कोर कमेटी के हमारे सभी सदस्य है दो दो दिन के प्रवास पर कुछ विधानसभाओं के अंदर रहेंगे, जहाँ उस विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में कबायली सिक्योरिटी फोरम के नुमाइंदों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि कबायली बिरादरी के तई मजकूरा नुमाइंदों का जज्बा काबिले सताइश है। उन्होंने बताया कि मीटिंग के दौरान कबायली बिरादरियों की तरक्की और उन्हें बाख्तियार बनाए जाने से मुतालिक मुख्तलिफ मौजूद पर बामानी तबादला ख्याल किया गया। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। वो आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल मुकम्मल होने की आलमी तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद अजां दिन में जनाब राधाकृष्णन कर्नाटक के देवांगिरी में बीडीटी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज की प्लेटिनम जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी एशिया में जारी सियासी जुग्राफियाई खैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने इसराइल के लिए अपनी परवाजों को मुअत्तल रखे जाने में जुलाई के आखिर तक तौसी दे दी है। इससे कबल एयरलाइंस ने तेल अबीब दिल्ली के रास्ते पर परवाजों को जून महीने के आखिर तक मुअत्तल किया था। एयर इंडिया के एक आला एहलकार ने बताया कि ऐसा खित्ते में जारी सियासी जुग्राफियाई सूरत हाल के मद्देनजर किया गया है। मगरबी एशिया जंग की वजह से एयरलाइंस को ईंधन की कीमतों में इजाफा और फजाई हदूद से मुतालिक पाबंदियों समेत मुतादिद चैलेंजों का सामना है, जिसकी वजह से कार्रवाई जाती अखराजात में इजाफा हुआ है। सीबीआई ने त्विशा शर्मा की मौत के मामले में गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और एक रिटायर्ड जिला और सेशंस जज हैं। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
2: गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी कल भोपाल में हुई। इससे कबल सीबीआई की टीम ने गिरिबाला के घर की तलाशी ली थी और उनसे पूछताछ की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी पेशगी जमानत को मुस्तरद कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि मामले की संगीनी, सबूत और तहकीकात के मरहले को मद्देनजर रखते हुए गिरिबाला को जमानत देना मुनासिब नहीं है। त्रिशा शर्मा की मौत 12 मई की शब भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में मशकूक हालात में हुई थी। त्विशा के ससुराल वालों का कहना है कि यह खुदकुशी का मामला है, जबकि त्विशा के घर वालों ने उनके शौहर और ससुराल के लोगों पर कत्ल का इल्जाम लगाया है। भोपाल से अभिनव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। इन रियासतों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस बात को यकीनी बनाने के अहदबंद हैं कि मुल्क में कोई भी गरीब कच्चे मकान में न रहे।
3: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: इम्तिहानात के निकात से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट CUET UG 2026 इम्तिहानात में शामिल होने वाली तमाम मरकजी और शरीक यूनिवर्सिटियों को इम्तिहान की नई तारीखें और एडमिट कार्ड्स जारी किए हैं। ये इम्तिहानात अब इस माह की 31 तारीख और आइंदा माह की 6 और 7 तारीखों को होंगे। ईद उल अजहा की वजह से कल होने वाले इम्तिहानात की नई तारीख तय की गई है। NTA ने बताया कि इतवार के रोज होने वाले इम्तिहान में शामिल होने वाले उम्मीदवार NTA की सरकारी वेबसाइट CUET.NTA.NIC.IN से अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात कौमी राजधानी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई जिसकी वजह से शदीद गर्म लहर और हब्स के हालात से राहत मिली। IMD के मुताबिक बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आज गरज चमक के साथ आंधी आने का इम्कान है जिसकी रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा तक होगी। छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल के गंगा के तराई वाले इलाकों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह के हालात रहेंगे। केरलम में चंद इलाकों में भारी बारिश के इम्कान के मद्देनजर कुल 14 अजला में से 6 अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह से केरलम और लक्षद्वीप में मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन मराकज पर 5 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस दौरान जनूब मगरबी मानसून का सरकारी ऐलान आज या कल होने का इम्कान है। IPL क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह पैनुलक्वामी क्रिकेट स्टेडियम में एक अहम क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसकी फातह टीम इतवार के रोज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना करेगी। गुजरात टाइटन्स की टीम क्वालिफायर 1 में दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार गई थी, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर 1 में सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया था। जेम्स फोर्ड के काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 बैन अल-अक़वामी क्रिकेट सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को बहुत आसानी से 38 रन से शिकस्त देकर 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। इंग्लैंड ने टॉस जीता और भारत ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए। दूसरा T20 बैन अल-अक़वामी मैच कल भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे ब्रिस्टल में खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं शगुफ्ता यास्मीन।
4: शुक्रिया नितिका। ईद उल अजहा की तातील के पेश नजर आज राजधानी दिल्ली से उर्दू अखबारात मंजरे आम पर नहीं आ सके, लिहाजा आज के अंग्रेजी अखबारात की कुछ अहम शह सुर्खियां इस तरह से हैं। कर्नाटक के वजीर आला की हैसियत से सिद्धारमैया के मुस्ताफी होने की खबर को आज के बेशतर अखबारात ने अपने सफाई अव्वल पर नुमाया हैसियत से जगह दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की शह सुर्खी है, कर्नाटक में इकतदार की मुंतकली में सिद्धारमैया ने DK शिवकुमार के लिए राह हमवार की। सितंबर में भारत में होने वाली ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में चीन के सदर शी जिनपिंग की शमूलियत पर पसोपेश के दरमियान भारत और चीन ने LAC और सरहद से मुतालिक तनाजे पर तामीरी बातचीत की। इस खबर को द एशियन एज ने अहम खबर के तौर पर शाया किया है। साहित्य अकादमी अवार्ड याफ्ता नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र की वफात की खबर भी बेशतर अखबारात की नुमाया खबर के तौर पर मौजूद है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की शह सुर्खी है, इश्क रोमान के सरकर्दा शायर बशीर बद्र का इंतकाल।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मसनूई आबादियाती तब्दीलियों से मुतालिक मरकज की आला सतह कमेटी इस मामले से निमटने के लिए कानूनी जरूरत का भी जायजा लेगी। قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس لعنت سے نمٹنے کے سلسلے میں دوہرا معیار نہیں ہو سکتا. بی جے پی نے پنجاب، ہریانہ، دلی اور تریپورہ کے لیے پارٹی کے صدر مقرر کیے ہیں. مغربی ایشیا میں جاری جغرافیائی اور

सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने जुलाई के आखिर तक इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल रखने में तौसी की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम क्वालिफायर 2 के अहम मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

अभी आप सुन रहे थे शान की आवाज़ में ये गीत फिल्म सांवरिया से। गीतकार समीर थे और संगीतकार थे मोंटी शर्मा। अगले गीत आइए सुनते हैं फिल्म जन्नत 2 से। आवाज़ें हैं, माफ कीजिएगा, आवाज़ है शफकत अमानत अली की। गीतकार सईद कादरी और संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: खो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

अभी आप ये गीत सुन रहे थे फिल्म कल हो ना हो से। शंकर महादेवन की आवाज में अगले गीत आइए सुनते हैं फिल्म दोस्ताना से। आवाजें हैं सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और विशाल ददलानी की। संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

इसके साथ ही आज का फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, जिसे हम लखनऊ से रिले कर रहे हैं।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सहारनपुर और हापुड़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सहारनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विजयंत सैनी का।
1: पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद इन दिनों भीषण गर्मी से तप रहा है। गर्मी ने बीते 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रशासन एवं नगर निगम ने राहत के कार्य तेज किए हैं। जिले में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकानों की सूचीकरण कार्य के लिए कुल 1383 परगणक और 223 पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। यह अभियान 20 जून 2026 तक चलाया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों को स्वयं गणना की सुविधा भी दी, जिसमें 7 मई से 21 मई तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लोग स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी सहारनपुर को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता संबंधी राष्ट्रीय रिपोर्ट में जिले के आंगनबाड़ी आधारित शिक्षा मॉडल को सक्सेस स्टोरी के रूप में स्थान दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन के निर्देशन में ITC मिशन सुनहरा कल प्रथम संस्था एवं IGD के सहयोग से संचालित इस कार्यक्रम के तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के भाषा विकास, सीखने की अक्षमता और सामाजिक व्यवहार को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा मिली इस सराहना से सहारनपुर की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और भी मजबूत हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में जिले की बेटियों ने भी शानदार प्रदर्शन कर गौरव बढ़ाया है। CBSE 12वीं परीक्षा परिणाम में देवबंद की छात्रा नंदिनी कुशवाहा ने 98.8% अंक प्राप्त कर जिला टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। नैना स्वामी 98.4% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि सीमर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। हर्षिता कपूर और श्रेया संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहीं। मेधावियों के सम्मान में आयोजित समारोह में राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हुए उन्हें अनुशासन और लक्ष्य निर्धारण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। दूसरी ओर शिक्षा विभाग में RTI फीस प्रतिपूर्ति घोटाले को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान के निर्देश पर BDM पब्लिक स्कूल शांति नगर और भगवती देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल लेबर कॉलोनी के प्रबंधकों एवं प्रधानाध्यापिकाओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जाँच में फर्जी दावों के आधार पर सरकारी धनराशि प्राप्त करने की पुष्टि होने के बाद 32.61 लाख रुपए की वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही दोनों विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन की इस कार्यवाही से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीते दिनों जिले में बड़ी कार्रवाई हुई। देवबंद में एंटी करप्शन विजिलेंस टीम ने बिजली विभाग के SDO दिनेश कुमार मौर्य और संविदा कर्मी मोहम्मद शाकिर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता मोहम्मद एहरार ने आरोप लगाया था कि आटा चक्की के लिए बिजली कनेक्शन और सर्वे सही कराने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उधर सहारनपुर की उप श्रम आयुक्त वंदना को गंभीर अनियमितताओं के आरोप में निलंबित किया गया। उन पर एक निजी अस्पताल निर्माण मामले में नियम विरुद्ध 18 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी करने और श्रम बोर्ड को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे हैं। IMA अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण शर्मा की शिकायत पर हुई जांच में आरोप सही पाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। सहारनपुर में ईद उल अजहा का पर्व पूरे धार्मिक उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया। शहर में जिले भर की ईदगाहों व मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा कर देश में अमन चैन, खुशहाली और तरक्की की दुआएं मांगी। बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। DIG अभिषेक सिंह, DM अरविंद कुमार चौहान और SSP अभिनंदन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने बताया,
2: बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे नमाज जो संपन्न हुई है, सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से जहाँ पे उनके डिजाइनेटेड प्लेसेस थे वहाँ पे नमाज अदा की है और इस अवसर पे मैं सभी जनपद वासियों को बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ।
1: सहारनपुर में कैराना से सपा सांसद इकरा हसन समेत 32 लोगों पर थाना सदर बाजार में FIR दर्ज हुई। उन पर DIG कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालकर चक्का जाम करने का आरोप है। मामला मोनू कश्यप हत्याकांड में जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन से जुड़ा है।
0: सहारनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रविन्द्र कुमार का।
3: जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। ज्येष्ठ मास में गंगा दशहरा पर्व का गंगा स्नान का पौराणिक महत्व है। श्रद्धालुओं का काफी जनसैलाब उमड़ा। गंगा दशमी के ही दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। दिल्ली हरियाणा राजस्थान सहित यूपी के कई जनपदों से श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे। गंगा स्नान को लेकर हापुड़ जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के पुख्ता इंतजाम किए। सुरक्षा की दृष्टि से काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए नाव और गोताखोर भी लगाए गए। वहीं महिलाओं के लिए अलग से चेंजिंग रूम बनाए गए। जनपद हापुड़ में भीषण गर्मी का प्रकोप अधिक बढ़ने से इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे में बाहर निकलना काफी मुश्किल भरा है। हीट वेव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। लोगों को स्वस्थ रखने के लिए जनपद हापुड़ का स्वास्थ्य विभाग और जिला आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से सक्रिय है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सलाह दी गई है कि तेज धूप से बचें, हो सके तो छाते या कपड़े का प्रयोग करें, पानी नियमित रूप से पिएं, सुबह 10 से 4 बजे तक किसान खेतों में काम करने से बचें, ताजा खाना और फलों का सेवन करें। अधिक गर्मी से हीट वेव के चलते स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि आम जनता गर्मी से बचाव करे ताकि स्वास्थ्य पर कुप्रभाव न पड़ सके। जनपद हापुड़ में जिला अस्पताल में पहुँचने वाले रोगियों के सभी वार्डों में एसी लगाए गए हैं। इसके अलावा बाहर जगह जगह कूलर लगाए गए हैं। वातानुकूलित इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर रोगियों को भर्ती किया जा सके। जिला अस्पताल की मुख्य अधीक्षक ने रोगियों के लिए ORS के घोल के कैंपर की व्यवस्था की है। वहीं अस्पताल में आने वाले रोगियों को ORS के पैकेट भी प्रदान किए जा रहे हैं। लोगों को हीट वेव से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतने और खानपान में विशेष सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। जनपद हापुड़ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में एक माह तक चलने वाले शहीद मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में शहीदों को समर्पित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। जनपद हापुड़ खाद्य विभाग की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। जिले में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले गोदाम पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में मिलावटी माल को नष्ट कराया। जनपद में एक गोदाम में भारी मात्रा में लाल सॉस बनाई जा रही थी जो मिलावटी सामान से बनाई जा रही थी। इसके साथ ही सॉस को गाढ़ा करने के लिए कई प्रकार के केमिकल सामान और अन्य रंग इस्तेमाल किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने चंडी रोड मेरठ गेट पुलिस चौकी के पास एक दुकान पर छापा मारा जहां टीम ने 30 पेटी सॉस को सीज कर दिया। इसमें 360 बोतल पैक थी। इसकी अनुमानित कीमत 22,680 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा 335 किलो सॉस को नष्ट कराया गया। इसकी अनुमानित कीमत करीब 16,450 रुपए बताई जा रही है। सॉस के नमूने लेकर जाँच के लिए भेजे गए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऊर्जा बचत की अपील को साकार करने एवं एकल वाहनों के प्रयोग के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार PPP मॉडल पर आधारित गांव-गांव तक बस सेवा प्रदान कर रही है। जनपद हापुड़ में इस मॉडल के तहत एक बस का अनुबंध करके गाँव तक बस सेवा शुरू की गई है जिसका शुभारंभ रोडवेज डिपो से भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी एवं सदर विधायक विजयपाल आरती ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कार्य कर रही योगी आदित्यनाथ की सरकार गांव-गांव तक सुविधा उपलब्ध करा रही है। अब ऐसे गाँव में भी बस पहुँचेगी जिन गाँवों में आने जाने की कोई साधन नहीं थे। जनता और छात्र छात्राओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यह योजना ग्रामीणों के लिए काफी लाभकारी साबित होगी। जनपद हापुड़ में PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत COVID-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को भारत सरकार द्वारा 10 लाख रुपए 23 वर्ष पूर्ण होने पर देने का प्रावधान के तहत जिला अधिकारी ने चेक प्रदान किया। जनपद हापुड़ में उक्त योजना के अंतर्गत 11 बच्चों को चिन्हित किया गया।
0: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान।

0: دیکھیے کہ اردو زبان آپ نے کہا جیسا کہ بھائی ہندوستان کی زبان ہے, لیکن اردو میں کتنی ساری زبانوں کے الفاظ شامل ہیں. یہ بہت بڑی خوبی ہے اردو کی. آپ دیکھیں گے اس میں سنسکرت کے الفاظ بھی ہیں, آپ دیکھیے کہ اس میں جو ہے وہ عربی و فارسی کے الفاظ بھی ہیں, اس کے اندر جو ہے اردو نے اپنے اندر پرتگالی کو بھی سمویا ہے, چائنیز لفظ بھی مل جائیں گے. اب اتنی ساری زبانیں جس میں مکس ہو گئی ہیں, اور پھر اتنی ساری تہذیبیں بھی تو مکس ہوئی ساتھ میں, تو ان سب کو ملا کے ہماری اردو زبان بنی. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں جو خط, یعنی جس طریقے سے رسم الخط کا مطلب یہ ہے کہ زبان کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے, تو اردو نے اپنا ایک خاص, کہا یہ ضرور جاتا ہے کہ عربی و فارسی کے نستعلیق خط پر یا اس طرح سے اردو لکھی جاتی ہے, لیکن اردو نے اس میں بہت کچھ شامل بھی کیا ہے. مثلاً حکاری آوازیں جیسے بھے پھے تھے ٹھے, یہ ساری آوازیں ہم نے ہندی سے لی ہیں, بہت ساری آوازیں ہمارے یہاں سنسکرت سے بھی آئی ہیں. تو یہ ساری آوازیں جب ملتی ہیں تو اردو تو ایک بہت منفرد, ایک بہت خوبصورت, اپنا خود کا رسم الخط بناتی ہے, اور یہی ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے.
1: میم, ٹیکنالوجی کا دور ہے
0: جی,
1: کمپیوٹر ہے, موبائل ہے, فون ہے, تو جو اردو رسم الخط ہے یہ جو اس کے لیے کیسا ہے, یہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں یا فائدے مند ہیں؟
0: دیکھیں, میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم زندہ رہنا جانتے ہیں تو جو نئے چینجز ہیں, جو نئی تبدیلیاں ہیں, ان سے جڑنا تو پڑے گا. آپ نے کہا موبائل یا لیپ ٹاپ, تو ہماری, ہم نے تو ابھی کہا اس بات کے لیے کہ اردو تو وہ زبان ہے جس نے ڈھیر ساری زبانوں کو اپنے اندر ملا لیا. بھائی, ہمارے لیے فخر کا سبب یہی تو ہے, کتنی تہذیبیں ہماری زبان میں موجود ہیں. تو اسی طرح سے اگر کوئی نئی تبدیلی آ رہی ہے, مثلا لیپ ٹاپ ہے یا کمپیوٹر ہے یا موبائل ہے یا آپ جہاں کہیں بھی ٹیلی ویژن ہے, ریڈیو ہے, یا ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں, تو یہ سب چیزیں تو اردو تو اڈاپٹ کرے گی, اور یہ تو بہت بڑی چیز ہے, کیوں نہیں کرے گی, اور کر رہے ہیں لوگ. آپ دیکھیں, آپ خود بھی سب کچھ موبائل پہ ٹائپ کرتے ہیں, نہیں کرتے تو پھر؟
1: میم, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ لوگوں میں رجحان ہے, پھر بھی نئی نسل کے جو لوگ ہیں ان میں رسم الخط کے فروغ کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے, اور کیا کن اقدامات کی ضرورت ہے؟
0: ہاں, گڈ کوشچن. دیکھیے, ہمارا جو سب سے بڑا المیہ, جسے آپ نے کہا کہ ہماری جو سب سے بڑی ایک قابل رحم صورت حال ہے, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ چیزوں کو فرض کرتے ہیں اور اس کے بعد طے کر دیتے ہیں کہ بھیا ایسا ہی ہے, نہ تو گہرائی میں جاتے ہیں, نہ محنت کرتے ہیں, نہ اس طرف دیکھنا چاہتے ہیں. کسی نے کہا, بات چیت ہو رہی ہے, ارے بھیا وہ رسم الخط ختم ہو گیا, یا یہ ہے کہ اب نئی نسل تو کچھ سیکھے گی نہیں, سیدھا نئی نسل پہ الزام لگا دیا. ارے بھیا, نئی نسل سے پوچھو تو وہ چاہتی کیا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ چھوٹے بچوں سے لے کے ینگ جنریشن تک, آپ ریختہ میں, آپ نے ریختہ کھلے عام دلی میں دیکھ لیجئے, آپ یہاں لکھنؤ میں ہمارے پروگرامس میں آئیے, وہ نسل بیٹھی ہوتی ہے کہ جس نے اردو کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا رکھا ہے, وہ لوگ ہر لمحہ اردو کے اشعار اتنے اچھے مجھے اور آپ کو یاد نہیں ہوں گے جو ان کو یاد ہیں, وہ لوگ پڑھتے بھی ہیں اور اس حد تک اردو میں ڈوبے ہیں کہ دن رات بات کرتے ہیں تو تلفظ سے لے کے ہر چیز درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پر ہم نے کیا, ایک مفروضہ ہے کہ بھیا نئی نسل تو کچھ کرے گی نہیں. آپ دیکھیے, ایک میں جنرل بات آپ کو بتاؤں, کسی کا انتقال ہوتا ہے, ایک دن ہمیں بھی موت آنی ہے. اب ہم مر جائیں گے تو ہماری جگہ آپ لیں گے, نہیں لیں گے؟ بھائی آصف اقبال صاحب ہیں یا دوسرے کوئی بھی انسان ہوگا, وہ دوسرے کی جگہ لے گا ہی لے گا نا, تو نئی جنریشن آئے گی ہی آئے گی. تو ایسے ہی ہم, بدلاؤ تو یقینی ہے, پر ہوتا کیا ہے کہ کوئی گیا تو ہم کہتے ہیں بھیا اب اس کے جیسا تو کوئی نہیں آئے گا. ارے بھائی, ہو سکتا ہے اس سے بہتر آئے, اور آتا ہی ہے. آپ دیکھیے کہ جو لوگ چلے گئے ان کے بعد کیا دنیا نہیں چل. تو نئی نسل, مجھے تو کوئی شکایت نہیں ہے, میں تو دیکھتی ہوں کہ اتنا جوش ہے سب میں, اور سب سیکھنا بھی چاہتے ہیں, پڑھنا بھی چاہتے ہیں.
1: میم, نئی نسل کی بات ہو رہی تو نئی نسل آج کل سوشل میڈیا سے زیادہ آراستہ ہے, تو اردو کے رسم الخط سے اگر بات کی جائے تو سوشل میڈیا کس طریقے کا رول ادا کر رہا ہے, اردو رسم الخط کو فائدہ پہنچا رہا ہے کہ نقصان پہنچا رہا ہے؟
0: ہاں, دیکھیے یہ بہت اچھا سوال ہے کہ دیکھیے دو طرح کی باتیں ہیں یہاں پر. اگر آپ اردو رسم الخط کے حوالے سے بات کریں یا پھر اردو زبان کے حوالے سے بات کریں, تو دیکھیے سوشل میڈیا جہاں تک اس کا تعلق ہے, اردو زبان کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں اوور آل, صرف رسم الخط نہیں, حالانکہ ہمارا موضوع رسم الخط ہے, لیکن سوشل میڈیا سے ہمیں بہت فائدہ پہنچا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارا ادب انٹرنیشنل لیول پر ان لوگوں تک پہنچا ہے کہ جن تک کتابیں نہیں پہنچتی, یا جن تک وہ ان چیزوں کی رسائی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ زبان سیکھ سکیں. आप देखिए कि मैं खुद भी उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी से मैं उर्दू सिखाती हूँ, वहाँ दादा पोता पोती ये लोग उर्दू सीखते हैं, बाकायदा लिख कर भेजते हैं। हम लोग जो सिखा रहे हैं, और हम अपनी मिसाल नहीं इसलिए नहीं दे रहे हैं कि ऐसे बहुत लोग हैं जिनका हमें पता भी नहीं है, वो सोशल मीडिया के ज़रिए बाकायदा उर्दू रस्मुल ख़त सिखा रहे हैं और लोग सीख रहे हैं, और उसके बाद लोग लिख लिख कर भेजते हैं, बाकायदा पूरे पूरे पैरा लिख कर आते हैं। तो सोशल मीडिया, हाँ एक चीज़ से मुझे इत्तेफाक है कि बाज़ लोग रोमन में लिख, वहाँ हम लोग टोकते हैं उनको कि भाई रोमन का आप इस्तेमाल मत कीजिए, बल्कि आप उर्दू रस्मुल ख़त में भी लिखिए, क्योंकि उर्दू रस्मुल ख़त में लिखेंगे तभी उसके लिए ज़्यादा बेहतर है।
1: मैम, जब रोमन की बात निकली है तो रोमन उर्दू के जो बढ़ते रुझान हैं उससे जो असल उर्दू का रस्मुल ख़त है उसको क्या खतरात होंगे?
0: देखिए, मुझे नहीं लगता कि खतरात तो इस तरह से हैं जितना हम लोग डरे हुए हैं, क्योंकि अगर किसी को मान लीजिए उर्दू लिखनी नहीं आती, कोई ऐसा शख्स है या कोई ऐसा स्टूडेंट है या कोई ऐसी खातून है कि जब तक वो रस्मुल ख़त नहीं जानती हैं, वो सीख रही हैं अगर, तो वो रोमन के ज़रिए से चीज़ों को ना सिर्फ ये कि पढ़ सकती हैं, शेर पढ़ सकती हैं, गज़ल पढ़ सकती हैं, नज़्म पढ़ सकती हैं, लिख भी सकती हैं उसमें, लेकिन बहरहाल उनको ये एहतियात लाजिम है कि जब उन्हें ज़बान आ जाए और वो पढ़ना लिखना सीख जाएं, तो फिर वो उर्दू रस्म ख़त का ही इस्तेमाल करें।
1: मैम, आप भी तालीमी इदारे से जुड़ी हुई हैं और क्योंकि सिखाती तो आप ही लोग हैं उर्दू लिखना पढ़ना जो भी है, लेकिन आगे एक वक्त पे जा करके लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिखने का काम कम हो जाता है, तो तालीमी इदारों की क्या जिम्मेदारी है, क्या तजावीज़ आप देंगी कि उर्दू रस्म व खत जो है जो लोगों में वो रुझान हमेशा बना रहे हैं?
0: हाँ बिल्कुल, देखिए हमने हमेशा इस बात का ख्याल रखा, और आपको ये बताएं कि हम लोग जिस ज़माने में तालीम हासिल कर रहे थे उस ज़माने में भी हमारे पेरेंट्स कोई या हमारे साथ हमारे जो दोस्तों का सर्किल था उसमें हर तरह के लोग थे, पेरेंट्स में बहुत हाईली क्वालिफाइड भी थे और बिल्कुल घरेलू भी थे, सब तरह के पेरेंट्स थे। ऐसे में हम लोगों ने, सभी दोस्तों ने तालीम हासिल की, और उसके बाद हमने अपने स्टूडेंट्स को भी देखा, तो हमारे यहाँ ये था कि हम लोगों को तीनों ज़बानें सिखाई जाती थी। हमारे जो मिलने जुलने वाले लोग थे, अगर वो हिंदी भाषी थे तो वो उर्दू भी पढ़ते थे, उनके हाथ की रसीदें हमारे पास मौजूद हैं आज भी। इसी तरह से हम लोगों ने उर्दू पढ़ी तो हम लोगों को हिंदी भी पढ़ाई गई, और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी जगहों पर उर्दू हिंदी इंग्लिश कंपल्सरी पेपर्स भी होते हैं। तो मेरा कहना ये है कि हम ये ना अपने दिमाग में तय कर लें, नई नस्ल से भी ख़ास तौर से और अपने लोगों से भी, कि भाई देखिए हम अगर कई ज़बानें सीखें तो हमारे फ्यूचर के लिए वो बहुत बेहतर है। हिंदी हमारी हिंदुस्तान की ज़बान है, हमारी हिंदी और उर्दू दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रूह का रिश्ता है, दोनों सगी बहनों की तरह से हैं, तो अगर हम उर्दू पढ़ें तो हम हिंदी ज़रूर पढ़ें, उर्दू रस्मुल ख़त सीखें, हिंदी रस्मुल ख़त भी सीखें, और साथ साथ अंग्रेज़ी भी सीखें, क्योंकि अगर हम ऑफिशियल काम करना है हमें, तो जो आपने कहा आपका सवाल बहुत बहुत अच्छा है, आज की ज़रूरत है ये सवाल कि अगर हम ऑफिसेस में जा रहे हैं, हमें अपना कोई लेटर लिखना है या हमें अपनी कोई बात कहनी है, तो हमें वहाँ हिंदी और इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्यों नहीं अपना दिल इतना वसी करते हैं, हमें सारी ज़बानें सीखनी चाहिए। और देखिए हम जिन स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, मैं आपको ये बता दूँ कि उन स्कूल कॉलेजेस में ये तीनों ज़बानें पढ़ाई जाती हैं। हाँ बाज़ लोग ऐसे हैं कि वो जिस मीडियम में पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं हमको तो यही ज़बान सीखनी है, अगर हम दूसरी ज़बान सीखेंगे, अरे भाई हमारे बच्चे को ये नहीं आता तो क्यों नहीं सिखाते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है ना, ये आप नई नस्ल को ब्लेम नहीं कर सकते, ये तो पेरेंट्स की, घर वालों की, सबकी, टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो नौजवानों को या स्टूडेंट्स को या बच्चों को तीन चार ज़बानें ज़रूर सिखाएं, और हमारे लिए ये कोई मुश्किल नहीं है, उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, हम माँ के साथ सीख के आते हैं, हिंदी और इंग्लिश हमारे स्कूल कॉलेजेस हर जगह मौजूद है, हम वहाँ सीखते हैं, तो ये क्या शिकायत है भाई कि मतलब उर्दू सीख ली है तो और क्यों नहीं सीखेंगे।
1: मैम, तालीमी इदारों की बात हुई और भी जो शोबे हैं उनकी बात हुई, एक शोबा अदबी इदारे जो हैं या जो अदबी तंजीमें हैं वहाँ पे काम रस्मुल ख़त के लिए हमारे हिसाब से नहीं होता है, मुशायरे होते हैं, सेमिनार होते हैं, कोई इस तरीके से नहीं होता जिससे रस्मुल ख़त को फ़रोग मिले, आप उनको क्या तजावीज़ देनी चाहेंगे कि उससे रस्मुल ख़त को और फ़रोग मिले?
0: देखिए उसके लिए तो फिर हमें बाकायदा एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अगर हम कोई भी अदबी प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो वहाँ हम कुछ ना कुछ 10 मिनट 5 मिनट या आधा घंटा जितना मुंतजमीन जो हैं वो हमें वक्त दे सकें, कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसा इंतज़ाम ज़रूर करें कि जिससे हमारे जो न्यू कमर्स हैं जो बिल्कुल उर्दू नहीं जानते, हम कहें कि भाई ठीक है हमने आपको मुशायरे में बुलाया, आप हमारी ऑडियंस हैं, लेकिन जिस ज़बान को आप सुनने आए हैं 10 मिनट आप उसके अल्फ़ाबेट्स तो सीखिए और वहाँ ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि उन्हें वो भाषा या वो ज़बान उन्हें जो है वो सिखाई जाए। तो ये पॉसिबल है क्योंकि देखिए मुशायरों को लोग इतना पसंद करते हैं, इतनी भीड़ होती है कि अगर हम इस तरह से कोई भी प्रोग्राम रखते हैं, मे बी पॉसिबल कुछ लोगों को इख्तलाफ हो, मे बी पॉसिबल कुछ लोग ना पसंद करें, लेकिन 100% तो ऐसा नहीं होगा ना। देखिए 90% लोग पढ़ने भी आएंगे और सीखने भी आएंगे। इसके लिए हमें जो मुंतजमीन है कहीं ना कहीं उनसे राबता
1: कुछ
0: करना
1: राइटिंग
0: होगा।
1: कंपटीशन टाइप
0: हाँ,
1: के
0: बिल्कुल। हम जैसे अभी देखिए मैं आपको मिसाल दूँ, अभी एक प्रोग्राम हुआ और हम लोग भी हर साल करते हैं, पर्सनल बात नहीं करूँ, सिर्फ प्रोग्राम के हवाले से बात करूँ, यह है कि 2-3 प्रोग्राम ऐसे फिलहाल लखनऊ में ही हो रहे हैं कि जिसमें जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए तालिबे इल्म हैं, जो जिन्हें उर्दू नहीं आती या थोड़ी बहुत आती है, और बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन हैं वो, या कैफी आज़मी अकेडमी है वहाँ भी प्रोग्राम्स होते हैं और जगहों पर भी होते हैं, तो उसमें ये रखा जाता है कि जो नए तालिबे इल्म हैं उनके लिए कोई ना कोई कॉम्पिटिशन, जैसे अफसाना कॉम्पिटिशन, ठीक, या फिर ज़बान सिखाई गई कुछ महीने, फिर वहाँ उन्हें एक एग्ज़ाम कराया गया और फिर उस एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट उन्हें उस प्रोग्राम में दिया गया। और मैं आपको बताऊँ, ये इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल के प्रोग्राम, वहाँ पे ज़बान सिखाने के लिए इस तरह कोशिश की जाती है और उसमें काफ़ी कामयाबी भी है। पर मैंने कहा ना कि हम जानना नहीं चाहते, हम लोग करना नहीं चाहते, अगर हम कोशिश करेंगे तो ये मुशायरों में भी मुमकिन है। और देखिए जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मादरी ज़बान से बेपनाह मोहब्बत कर, अच्छा जो उर्दू के तलफ़ुज़ या उर्दू की मिठास की शीरीनी की वजह से उर्दू को बेपनाह चाहते हैं, उन शायकीन की एक बड़ी तादाद है। तो अगर हम इस तरह का कोई भी प्रोग्राम रखते हैं तो आप यकीन जानिए उमर साहब कि उसे कामयाबी मिलेगी। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और इस जानिब हमें कोशिश करनी चाहिए। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे इल्म में ऐसे 4-5 प्रोग्राम्स यहीं इस लखनऊ में हर 6 महीने पर होते हैं कि जिसमें ये कोशिश की जाती है कि नई जनरेशन इस ज़बान या इस अदब के लिए या इस रस्मुलख़त को सीखने के लिए खड़ी रहे, बल्कि दूसरों को भी सिखाए।
1: मैम वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, आखिरी सवाल छोटा सा ये है कि आवाम की क्या जिम्मेदारी इस रस्मुलख़त के मसले पर होनी चाहिए?
0: देखिए आवाम की ज़िम्मेदारी रस्मुलख़त के सिलसिले में यह है कि वो न सिर्फ ये कि अपने बच्चों को सिखाए, और अगर किसी के यहाँ उर्दू तालीम का इंतज़ाम है तो पड़ोस में अगर वो देखता है कि भाई तालिबे इल्म कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अदर मीडियम से पढ़ रहे हैं तो उनमें भी दिलचस्पी पैदा करें। मसलन अगर मैं ही हूँ, मान लीजिए मेरे पड़ोस में अगर 5 बच्चे हैं तो ठीक है, अगर आपके पड़ोस में 10 बच्चे हैं तो उनमें से 10 लोग तो पढ़ रहे होंगे ऐसी जगह पर कि भाई ठीक है रस्मुलख़त सीख रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बाज़ जगह अगर उसका इंतज़ाम नहीं है तो हमें चाहिए कि हम उन बच्चों को बुलाएं। अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो कुछ किताबें अलिफ बेते जो 2-3 लैंग्वेजेस में जिसमें सिखाया जाता है, मसलन हिंदी से उर्दू सीखिए, इंग्लिश से उर्दू सीखिए, इस तरह की किताबें ख़रीद के हम बच्चों में तकसीम कर सकते हैं और ये दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं कि भाई आप आइए, जब हमारे पास वक्त है वो वक्त हम उन्हें दे दें और उनको उस वक्त में उर्दू सिखाएं।
1: तो सामाइन ये थी मोहतरमा प्रोफेसर रेशमा परवीन साहिबा, जिन्होंने हमें उर्दू रस्मुलख़त के मौजू पर अहम और कारामद मालूमात फराहम की। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें अपनी राय से मुतला ज़रूर करें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157। तो सामाइन इसी के साथ आज का ये उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद उमैर को दे इजाज़त, आदाब।

0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: सुगम संगीत के अंतर्गत आ जाइए सुनते हैं कुछ शिव भजन।

0: सुगम संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कुछ शिव भजन। इसके साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप दिल्ली से सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसंख्या के बदलावों के लिए जांच की गठित समिति उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में दृढ़ता से जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कल त्रिशा शर्मा मौत मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। श्रोताओं, रेडियो देश के सबसे पुराने और सबसे विश्वसनीय जनसंचार माध्यमों में से एक है और अब ये 90 वर्ष पूरा कर रहा है।

दोस्तों, बड़े गर्व की बात है कि आज आकाशवाणी सैकड़ों स्टेशनों के जरिए देश के लगभग 98% से अधिक हिस्से तक पहुंच चुका है।

मोटे लाला शौकीन, गोंद में छुपाए हैं चिरागे अलादीन। तीन को हमेशा करते आए साढ़े तीन, तीन को हमेशा करते आए साढ़े तीन। जरा नाप जरा तोल, इसे लूट उसे

0: कौन।
1: सोचिए वो दौर जब आवाजें सिर्फ पास तक सुनाई देती थीं, तभी अचानक आसमान से उतरी एक अनदेखी आवाज जिसने लोगों को हैरान कर दिया। ऐसा है रेडियो।

कहते हैं हर कहानी तब खास बनती है जब उसमें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि दो दिलों की बातचीत शामिल हो। कुछ यादें, कुछ किस्से और कुछ ऐसे लम्हे जिन्हें सुनकर बस एक ही बात निकले, वाह क्या बात है, और वो है रेडियो।

0: ऐसे मत देखो, मेरा दिल धड़कता है।
1: दिल, हाय मेरा दिल, तेरा दिल, दिल से दिल।

दोस्तों, यहाँ तक कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सूचना और स्वतंत्रता के संदेश का माध्यम भी ये रेडियो ही था।

आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जो बदलती तकनीक के साथ भी विश्वास और अंतरंगता को बरकरार रखती है।

दोस्तों, यहाँ तक कि किसी भी सूचना की विश्वसनीयता परखने के लिए पहले रेडियो ही सुनते थे। यहाँ तक कि समय का मिलान भी बड़े विश्वास के साथ इसी रेडियो से करते थे।

दोस्तों, समय बदला, तकनीक बदली, लेकिन रेडियो की आत्मा आज भी वैसी ही है। इस नए दौर में भी वही अपनापन, वही दीवानापन।

0: इसके साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम गाती गुनगुनाती अब समाप्त होता है। आज आपने जिन फिल्मों के गीत सुने वो फिल्में थीं काला बाजार, हाफ टिकट, चाइना टाउन, कश्मीर की कली, मेरे जीवन साथी, पराया धन, मजबूर, जमीर, जहरीला इंसान और टैक्सी चोर। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप दिल्ली से सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य असौभ्य कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसंख्या के बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठी की

0: पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। गृहमंत्री आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CPA पर इस वर्ष के अंत तक वार्ता करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी CEPA समझौते पर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस के अवसर पर विश्वभर में सेवारत संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता के वास्ते संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवारत बहादुर सैनिकों की सराहना की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में मामूली तेजी देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 352 अंक बढ़कर 76,220 जबकि निफ्टी लगभग 100 अंक की वृद्धि के साथ 24,002 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग अब से कुछ ही पलों में सुनेंगे आप।
3: जिंदगी बहुत कीमती है,
4: उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूची

0: वनीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 8700014242।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
7: लोकगीतों के कार्यक्रम में आज की कलाकार है मैनावती श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं उनके गाए कुछ लोकगीत।
8: यह भी एक ऐसा गीत सुना रही हूँ, जब दूल्हा शादी करने के लिए आता था माड़ू में, लगभग आज भी शादी के समय में चलता है, तो धोती पहरा करके शादी करने के लिए जब उनका बाप है, इस तरीके से लोग गाली देते थे लोग।

0: जाओ यहाँ हम लेते हैं छोटा सा अंतराल।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी

0: हम अभी जो सुना जा रही हैं
1: लोकगीतों के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं मैनावती देवी के गाए कुछ लोकगीत।
0: नजर उतरवाई जो

लोकगीतों के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे श्रीमती मैनावती श्रीवास्तव के गाए लोकगीत। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

महालक्ष्मी अय्यर की। शंकर, एहसान और लॉय का संगीत है और गीत को

शालमली खोलगड़े की आवाजों में आवाज में आप ये गीत सुन रहे थे शहजादे फिल्म से। अमित त्रिवेदी का संगीत था और गीत को लिखा था कौसर मुनीर ने। अगला गीत सुनते हैं सुखविंदर सिंह की आवाज में।

ये गाना है टशन फिल्म से, सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजें हैं। संगीत है विशाल शेखर का और गीतकार है पीयूष मिश्रा।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: इस गीत को संगीत से सजाया था विशाल शेखर ने और आवाजें थीं केके और शिल्पा राव की।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
3: अखबार प्लास्टिक कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
2: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
3: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
4: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT नई दिल्ली द्वारा उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से भाराणे जी,
3: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी

0: से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
1: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
0: जी, ये बात तो है।
1: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
0: जी हाँ, जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
1: जी,
0: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
1: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
0: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
1: जी,
0: गुलाब की कई प्रजातियाँ चीन से ही विकसित हुई हैं और धीरे धीरे ये प्रजातियाँ पूरी दुनिया में फैल गई।
1: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
0: काले गुलाब?
1: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
0: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
1: जी,
0: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
1: जी,
0: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
1: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
0: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
1: जी,
0: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातःकाल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
1: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
0: जी, वो तो है।
1: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
0: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
1: जी,
0: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल,
0: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
1: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है। जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का,
0: जी
1: पीला गुलाब मित्रता का, और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
0: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
1: जी,
0: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
1: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
0: जी, तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचोड़।

0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता।
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
1: या हंस हंस के बातें करना।
0: जब अंधेरा होने लगता,
1: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता।
0: तब हम घर को वापस आते,
1: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर

0: एंजल और वान्या। निर्माण सहयोग जगबंधु जाना। संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस, लेकिन

0: क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
1: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
0: बेस्ट ऑफ लक। और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
2: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
0: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सब ने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी,
4: हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
5: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2।
5: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली। आयो गोरखाली। जय महाकाली। आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ, शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
3: जय महाकाली। आयो गोरखाली।
1: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
0: मार्ग दुर्गम था। खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
1: आक्रमण हुआ
0: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
3: जय महाकाली। आओ गोरखाली।
0: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिक

0: सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
1: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
2: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
0: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
2: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
0: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
3: ना छोड़नु, ना छोड़नु।
2: जिसका अर्थ है उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
2: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
2: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी।

0: यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।

हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने। श्रोताओ, आज मैं जब आ रही थी तो रिमझिम बारिश की फुहार पड़ रही थी और उस वजह से मुझे लगा क्यों ना आज सावन को याद कर लिया जाए, इस चिलचिलाती धूप में थोड़ा राहत दिया जाए खुद को, है ना। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और अपने को राहत देते हैं।

चुपके चुपके फिल्म का आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। एस डी बर्मन ने संगीत से सजाया था और गीत को लिखा था आनंद बख्शी साहब ने।

श्रोताओं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। उर्दू अदब और गज़ल की दुनिया के बेताज बादशाह पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र साहब का 91 वर्ष की आयु में भोपाल में कल निधन हो गया। वे लंबे समय से डिमेंशिया से पीड़ित थे। उनके जाने से आधुनिक उर्दू गज़ल का एक स्वर्णिम और गौरवशाली अध्याय समाप्त हो गया। बशीर बद्र साहब की सबसे बड़ी

सलमा आगा की आवाज में अभी आपने निकाह फिल्म का गीत सुना। गीतकार थे हसन कमल और गीत को संगीत से सजाया था रफी ने। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। बशीर बद्र साहब ने उर्दू शायरी को भारी भरकम शब्दों के दायरे से बाहर

निकालकर आम इंसानों की धड़कनों को दिलों तक पहुंचाया। साहित्य और उर्दू गज़ल में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1999 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। साल 1987 के मेरठ दंगों में उनका घर बेशकीमती किताबें और कई अप्रकाशित गजलें जलकर खाक हो गई थीं। इस गहरे सदमे में वे भोपाल आ गए और अपनी इस पीड़ा को अपने शायरी के सबसे बड़े ताकत बना लिया। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर साहब ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और उन पर बहुत सटीक बात कही कि बशीर बद्र के जाने से आज हमारी उर्दू जुबान थोड़ी और गरीब हो गई है। भले ही बशीर बद्र साहब आज हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके लिखे अल्फाज और खूबसूरत गजलें हमेशा प्रेमियों के दिलों में जिंदा रहेगी। आइए सुनते हैं अगला गीत इन्हीं बातों के साथ।

लेकिन फिल्म से आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत था और गीत को लिखा था गुलजार साहब ने। अगला गीत सुनते हैं, अनुभव फिल्म से, गीता दत्त की आवाज़ है, संगीत है कनु रॉय का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने अब समाप्त होता है। ये गाना जो आप सुन रहे थे वो खामोशी फिल्म का था, किशोर कुमार की आवाज़ में, हेमंत कुमार का संगीत था। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं मेहंदी हसन और गुलाम अली।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22

0: मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे मेहदी हसन और गुलाम अली की गायनक में। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें। खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ जिले में 392 करोड़ की लागत वाले 114 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों के तवस्सुत से सड़कों, खेल सहूलियात, तालीमी इदारों, शहरी बुनियादी ढांचों को मजबूती मिलेगी। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा,
1: जब अच्छी सरकार आती है, अच्छे लोग चुन करके जाते हैं तो अच्छी सरकार आती है, और अच्छी सरकार आती है तो विकास लेकर के भी आती है। ये जो विकास है, ये आपके जीवन स्तर को उठाने का माध्यम है, बिना भेदभाव। ये सब तब होता है जब अच्छे लोग चुने जाते हैं और अच्छी सरकार बनती है, तब परिणाम आते।
0: ज़राअत, किसान बहबूद और देही तरक्यात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में दो रोज़ा कौमी ज़रई इजलास की इफ्तिताही तकरीब को खिताब किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मेहनती किसानों की कोशिशों की वजह से मुल्क में वाफर गजाई जखीरा मौजूद है। जनाब चौहान ने कहा कि मुल्क के गजाई तहफ़ को यकीनी करना, किसानों की आमदनी को बेहतर बनाना और मुल्क की आवाम को तगज़िए से भरपूर खुराक मुहैया कराना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
2: देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की। इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं इस वर्ष में। इस साल कुल मिलाकर जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3,765.63 टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188 लाख टन अधिक है।
0: मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवसुत से वजीर आजम रिहायशी स्कीम देही के तहत 12 रियासतों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी जारी की। इस मौके पर जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अहादा है कि मुल्क में कोई भी गरीब कच्चे मकान में न रहे। हुकूमत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिलेबस में जामे इस्लाह के लिए इंडस्ट्री वर्ल्ड के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलात तकनीकी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में AI सिलेबस अफरादी कुव्वत के साथ एक आला सतही मीटिंग की। मीटिंग में AI तालीम को मुस्तकबिल की तकनीकी जरूरियात के मुताबिक ढालने पर बातचीत हुई। मरकजी वजीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली वाक़े CBSE सदर दफ्तर में एक आला सतही जायजा मीटिंग की। मीटिंग में बोर्ड के दर्जा 12वीं के इम्तिहानात की तशखीस और नतायज के बाद के अमल से मुतालिक मौजू का जायजा लिया गया। इस दौरान मरकजी वजीर ने अफसरान को तलबा की दिक्कतों का वक्त पर शफाफ तरीके से और तलबा के मफाद के तरीके से तस्फिया यकीनी करने के अहकाम दिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की यौम वफात पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खराज अकीदत पेश किया है। वजीर आला ने कहा कि उनकी सादा जिंदगी, किसानों के तई मानवन और अवामी बहबूदी सियासत सभी को हमेशा रागिब करती रहेगी। उनकी यादों को और उसूलों को बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत कई अवामी बहबूदी स्कीमें चला रही है। दरियासना वजीर आला ने आज लखनऊ में साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह की यौम वफात के मौके पर उनके मुजस्मे पर गुलहाय अकीदत पेश किए। जिला हमीरपुर में ललपुरा थाना हलके के मोरांग कादर गांव के नजदीक बेतवा नदी में जेरे तामीर पुल का स्लैब गिरने से 6 मजदूर जां बहक हो गए हैं। SDRF और NDRF की टीम और गांव के लोग राहत और रसानी के कामों में लगे हुए हैं। 2 लाशों को बरामद कर लिया गया है, बकिया 4 मजदूरों की लाशों की तलाश जारी है। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक गोयल ने बताया कि गुज़िश्ता देर रात 100 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी तूफान के चलते ये जेरे तामीर पुल की स्लैब गिर गई। बेतवा नदी में जेरे तामीर पुल के हादसे की जानकारी लेते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार की माली मदद और मुनासिब इलाज के अहकाम दिए हैं। अमेठी जिले के मुंशीगंज थाना हलके में कल देर रात पेश आए एक सड़क हादसे में 3 नौजवानों की मौत हो गई, जबकि एक शदीद तौर से जख्मी हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब प्यास से लदा एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू हो गया और सड़क किनारे जा रही 2 बाइकों पर पलट गया, जिससे 3 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश कर रही है। और रियासत के कई जिला में गुज़िश्ता शब और आज सुबह तेज आंधी और गरज चमक के साथ शुरू हुई बारिश से आवाम को फिलहाल शदीद गर्मी से राहत मिली है। संत कबीर नगर, बलिया, कौशाम्बी, कुशीनगर, अम्बेडकर नगर, पीलीभीत, अयोध्या, चंदौली, जौनपुर, हमीरपुर, गोरखपुर और दारुल हुकूमत लखनऊ समेत कुछ दीगर जिलों में बारिश होने की खबर है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने रियासत में कई मकामात पर 31 मई तक आंधी बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। इससे दर्ज हरारत में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का इम्कान है। महकमे के मुताबिक 1 जून से मौसम खुश्क होने की उम्मीद है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम नारी जगत। नमस्कार बहनों, और हमारे जो भी श्रोतागण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप सभी को मेरा राम राम। बहनों, आप सुन रही हैं आपका अपना मनपसंद पसंदीदा कार्यक्रम नारी जगत, और मैं हूं आपकी बहन संध्या त्रिपाठी। बहनों, हमेशा की तरह आज भी मैं आई हूं और आपके लिए कुछ नई जानकारी भरी बातें लेकर आई हूं। थोड़ी सी कानूनी मसलों पर चर्चा होगी, क्योंकि कानून जानेंगे तभी तो अपना हक आप मांग पाएंगे। साथ ही आजकल की भाग दौड़ में काम की टेंशन, घर की जिम्मेदारी, इन सब के चलते नींद भी तो पूरी नहीं हो पाती। और बहनों, जो दिन भर की थकान की वजह से आप अस्वस्थ भी महसूस करती हैं, तो उस पर भी दो बातें करेंगे। और हाँ, कार्यक्रम में तो गीत संगीत रहेगा ही, क्योंकि इसके बिना कार्यक्रम अधूरा सा लगता है। साथ ही सरकार की नई योजनाएं महिलाओं के लिए, उनकी जानकारी, उसके बारे में जानकारी दूंगी, और फिर उन योजनाओं पर खुलकर चर्चा भी करूंगी जिसका आप लाभ ले सकेंगी। तो बस चाय का कप हाथ में उठाइए और 30 मिनट सिर्फ अपने लिए समय निकालिए, क्योंकि आज का कार्यक्रम नारी जगत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बहनों, आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं अखिल भारतीय स्वदेशी दिवस, यानी अपने देश में बनी वस्तुओं को अपनाना, अपने लोगों के श्रम और हुनर को सम्मान देना और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत बनाना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बहनों, जब हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो सिर्फ एक सामान नहीं खरीदते, बल्कि अपने देश के कारीगरों, किसानों, छोटे व्यापारियों और युवाओं के सपनों को भी आगे बढ़ाते हैं। आज के दौर में वोकल फॉर लोकल सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का माध्यम बन चुका है। हमें यह समझना होगा कि छोटी छोटी शुरुआत भी बड़ा बदलाव ला सकती है हमारे जीवन में। बहनों, अगर हम अपने घर में, अपने त्योहारों में, अपने रोज़मर्रा के जीवन में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें तो यह देश हित में एक बड़ा योगदान होगा। तो आइए आज इस विशेष अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि जहां संभव हो वहां स्वदेशी अपनाएंगे, अपने देश की मिट्टी, मेहनत और उत्पादों का सम्मान बढ़ाएंगे। इसी खूबसूरत संदेश के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति की तरफ। जब देश का हर नागरिक स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेता है, तब आत्मनिर्भर भारत का सपना और भी मजबूत होता है। इसी देशभक्ति और गौरव की भावना के साथ सुनते हैं ये गीत, जो साल 1967 में आई फिल्म उपकार का यह गीत आज भी उतना ही प्रेरणादायक और जोशीला है, जिसे अपनी मधुर आवाज़ महेंद्र कपूर जी की ने दी थी और गुलशन बावरा जी के शब्द कल्याण जी, आनंद जी के शानदार संगीत ने इस गीत को आज भी अमर बना दिया है।

बहनों, जब जब देश किसान और मिट्टी की बात होती है, तब तब यह गीत अपने आप होठों पर आ ही जाता है। और आज भी जब ये गीत कहीं भी खेत खलिहान में सुनाई देता है, तो देश, अपनी मिट्टी और अपने लोगों के प्रति हम सभी गर्व महसूस करने लगते हैं। इसी सकारात्मक भावना के साथ अब आगे बढ़ते हैं और अब बातें जागरूकता की, महिलाओं की कानूनी सुरक्षा के। बहनों, हम सब सुनते आए हैं, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, पर पूजा के साथ साथ सुरक्षा भी तो उतनी ही ज़रूरी है। तो ऐसे में आज मैं आपको ऐसे कानून और हेल्पलाइन नंबर बताऊंगी जो हर महिला के मोबाइल में सेव जरूर होना चाहिए। तो बहनों, पेन और कॉपी उठा लीजिए और कुछ नंबर भी बताऊंगी, आप नोट कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहनों, घरेलू हिंसा में सुरक्षा कानून 2005, अगर कोई भी पति, ससुर, जेठ आपको उत्पीड़न आपका करता है, तो ऐसे में मायके से पैसा लाने का दबाव बनाए तो चुप मत रहिए, ये जुर्म है। ऐसे में आप 1091 यानी 1091 पर डायल कर सकती हैं। ये महिला हेल्पलाइन 24 घंटे चलती है, पुलिस तुरंत आपकी सहायता करेगी। दहेज लेना देना दोनों जुर्म है। बहनों, लड़के वालों की डिमांड है कहकर दहेज दे देते हैं, मत दीजिए। दहेज निषेध कानून में 5 साल तक की सज़ा भी होती है। अगर शादी के बाद भी दहेज के लिए तंग कर रहे हैं तो आप तुरंत रिपोर्ट करिए। आप अगर वर्किंग वूमेन हैं तो वहाँ भी, ऑफिस में भी आपको सुरक्षा चाहिए। तो ऐसे में कामकाजी बहनें ध्यान दें, अगर ऑफिस में कोई बॉस या साथी गंदे मैसेज भेजें, गलत तरीके से छुएं या प्रमोशन के बदले गलत डिमांड करें, तो ये कार्यस्थल पर उत्पीड़न का मामला है। हर कंपनी में अतिरिक्त समिति होती है, वहाँ शिकायत दीजिए। नौकरी नहीं जाएंगी, उल्टा उस पर कार्रवाई करिए। ऐसा कभी मत सोचिए कि हम नौकरी छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसे में आप हार जाएंगी और आपको हारना नहीं है। बच्चों की सुरक्षा, पास्को एक्ट। बहनों, अपनी बेटियों को गुड टच, बैड टच जरूर समझाइए। स्कूल बस हो, ट्यूशन हो, रिश्तेदार हो, कोई भी गलत करे तो बच्चा तुरंत आपको बताए या किसी भी जो उसके करीब है उसको बताए। ऐसे में भी आप 1098 यानी 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन है, नंबर है, एक फ़ोन पर पूरी मदद आपको मिलेगी। वहाँ बच्ची को भी सिखाइए कि इस पर कॉल ज़रूर करें। बहनों, अगर आपको कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि आपको कोर्ट जाना पड़ रहा है और वहाँ पर आपको कोई मदद नहीं मिल रही है, तो सरकार की तरफ से आपको मुफ्त वकील भी मिलेंगे, केस लड़ने के पैसे भी नहीं लगेंगे। ये टेंशन मत लीजिए कि आपको पैसा देना पड़ेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग पर फ़ोन करिए, उनका हेल्पलाइन नंबर है 181 यानी 181। यह नंबर हर ज़िले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है जो आपको मुफ्त वकील देता है। तलाक का केस हो या प्रॉपर्टी का, आपकी लड़ाई सरकार लड़ेगी। तो बहनों, 3 नंबर आप हमेशा याद रखिए, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए और अपने फ़ोन में भी सेव कर लीजिए। अपनी बेटी, बहू, पड़ोस को भी यह नंबर ज़रूर बताइए, क्योंकि जो महिला अपने हक को जानती है वो कभी लाचार नहीं होती। और याद रखिए, कानून कमजोरी के लिए नहीं बना है, ताकतवर तो वैसे भी बच जाते हैं। तो बहनों, कानून की जानकारी लेकर अब थोड़ा जूस भर लेते हैं और सुनिए ये गीत। यकीन मानिए, आपको कोई कमज़ोर नहीं कह सकता, क्योंकि आप कानून जानती हैं।

बहनों, फिर मिलेंगे का यह गीत हमें यही सिखाता है कि हर हाल में ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहिए, जिसे अपनी मधुर आवाज़ बॉम्बे जयश्री ने दी थी। गीतकार प्रसून जोशी और मधुर संगीत शंकर एहसान लाइन ने दी थी। बहनों, आपने देखा होगा हम दिन भर मशीन की तरह चलती हैं, सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक। रसोई, बच्चे, सास ससुर, ऑफिस, बाजार, सबकी चिंता। पर रात में जब बिस्तर पर हम लेटते हैं तो नींद आंखों से कोसों दूर, दिमाग में हजारों बातें, कल टिफिन क्या बनेगा, बेटी की फीस, सास की दवाई, और सुबह उठते ही हमारा सिर भारी, भारीपन, चिड़चिड़ापन, बीपी हाई, ये सब टेंशन बढ़ जाता है। तो बहनों, आप भारी भरकम लेक्चर नहीं सुनिए किसी का, बस घर के छोटे नुस्खे अपनाइए और अपने रातों को सुकून भरी बना करके रहिए। आज से खुद से वादा करिए कि मैं अपनी नींद से समझौता नहीं करूंगी। नींद आना कोई लग्जरी नहीं, ये शरीर की ज़रूरत है। जैसे भूख लगने पर खाना ज़रूरी है, वैसे ही थकान होने पर हमारे शरीर के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। पर हम सभी लोग क्या करते हैं, रात में 12 बजे तक मोबाइल, व्हाट्सएप, रील्स, सीरियल्स, और फिर कहते हैं नींद नहीं आती। डॉक्टर कहते हैं कि 7 से 8 घंटे की नींद लें, और हम सब काम की वजह से फिर जो समय मिलता है उसमें खुद को व्यस्त कर देते हैं फ़ोन पर। ऐसे में लाजमी है कि आपके अंदर चिड़चिड़ापन तो बढ़ेगा ही, और जब समय पर काम नहीं पूरा होगा तो गुस्सा भी लगेगा। ऐसे में आप कुछ नियम बना लीजिए, जैसे सूरज के साथ सोना और सूरज के साथ जागना। सूरज के साथ सोने का मतलब है कि आप 10 बजे तक कोशिश करिए कि बिस्तर पर चले जाएं और सुबह 5 से 6 बजे उठ जाएं। शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी, पर कुछ दिन करेंगी तो खुद आदत बन जाएगी। बिस्तर पर लेटकर टीवी मत देखिए, फ़ोन मत चलाइए, लड़ाई मत करिए, दिमाग को सिग्नल दीजिए कि यहाँ आते ही सोना है। प्रयास करिए कि रात का खाना 8 बजे तक खा लीजिए और पूरे परिवार को खिला करके अपना काम निपटा लीजिए। सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना दूध में हल्की सी हल्दी और जायफल डालकर जरूर पीजिए। यह दादी नानी का नुस्खा है, आपके शरीर के लिए बहुत ही काम आएगा। सोने से पहले 5 मिनट अपनी डायरी में लिख अपनी दिनचर्या लिखिए, आज क्या टेंशन है। कागज़ पर उतरते ही आधा टेंशन खत्म हो जाएगा। या फिर 10 बार लंबी सांस लीजिए, 2 मिनट में दिमाग आपका शांत हो जाएगा। सोने से 1 घंटे पहले हर चीज़ से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से दूरी बना लीजिए। अपने बच्ची को कोई कहानी सुना दीजिए। मोबाइल की नीली रोशनी उसके दिमाग के लिए बहुत ही घातक है।

ऐसे में खुद भी मोबाइल से दूर रहिए और बच्चों को भी दूर रखिए। बहनों, एक बात गांठ जरूर बांध लीजिए, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसकी चिंता छोड़ दीजिए। दिन में 10 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालिए, छत पर जाकर धूप सेकिए, तुलसी के पौधे में पानी दीजिए या बस आंख बंद करके कुछ देर ध्यान कीजिए। और हाँ, ना कहना भी सीखिए। हर काम के लिए हाँ कह देंगे तो खुद के लिए समय कहाँ बचेगा। यकीन मानिए, 7 दिन में फ़र्क आपको खुद ही दिखेगा। आपका चेहरा खिला खिला लगेगा, गुस्सा भी कम आएगा, क्योंकि जो महिला चैन से सोती हैं वो पूरा घर संभाल लेती हैं। तो बहनों, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो घर के घर है। दिमाग को शांत करके और नींद को न्योता देने के लिए कभी कभी संगीत भी अहम भूमिका निभाता है। तो जब भी सोने जाइए तो कोई जो भी गीत आपको पसंद हो वो ज़रूर सुनिए। अभी आप सुनिए मेरी पसंद का गीत।

पैनो फिल्म कुदरत का यह सदाबहार गीत है, जिसे अपनी मधुर आवाज़ लता जी ने दी थी। इसके बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया था आरडी वर्मन ने। बहनों, अब आगे बात हो जाए घर को तनाव मुक्त कैसे बनाएं, क्योंकि घर में कभी कभी ऐसा माहौल हो जाता है कि सुबह ही उठो तो किचकिच, तो ऐसे में पूरा दिन हमारा बेकार हो जाता है। बहनों, मान लीजिए घर में टेंशन होना नॉर्मल है, चार बर्तन होंगे तो खटकेंगे ही, पर उस टेंशन को क्लेश बनने से रोकना है, ये तो हमारे हाथ में है। हम ही हैं तो घर की धुरी हैं, अगर धुरी खुद ही हिल जाएगी तो घर पूरा हमारा हिल जाएगा। कोई बड़ी बड़ी किताबी बातें नहीं हैं बहनों, बस कुछ बातें अपना करके, कुछ फार्मूले अपना करके आप अपने घर को खुशहाल बना सकती हैं। खुश गृहिणी से ही खुशहाल घर बनता है, और लक्ष्मी वहीं टिकती हैं जहाँ शांति और हंसी हो। तो पल्लू कमर में बांध लीजिए और सुनिए ये बातें, यकीन मानिए आज रात से ही आपके घर का माहौल बदलना शुरू हो जाएगा। बहनों, टेंशन को अलमारी में बंद करके और हंसी को ड्राइंग रूम में सजाने के लिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बहनों, इसी गीत के साथ मैं संध्या त्रिपाठी आपसे लेती हूँ अनुमति। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, नई जानकारी और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
1: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम नारी जगत, जिसे लेकर आई थी संध्या त्रिपाठी। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्स और FM 100.00 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: आकाशवाणी at 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। खेती किसानी कार्यक्रम में किसान भाई आज सुनेंगे वार्ता। विषय है रैबिस की बीमारी, लक्षण एवं बचाव। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रमा शंकर सिंह।
5: आज का जो विषय बा, एक सबसे घातक बीमारी रबीज होला। रबीज का है एकरे बारे में हम आपके बताएं काहे होला और कौन कौन चीज से फैलेला। तो सबसे पहले रबीज के बारे में आपको बतावल चाहब कि ई जो है एक लैटिन वर्ड शब्द है जौन एक मतलब होला पागलपन। तो जौन जान में रबीज होला वो लगभग पागल जैसे हो जाला। और पहले तो कहल जात रहा कि पानी के सामने ले गए पे वो जौन है पानी ना पिए, हाइड्रोफोबिया कहल जाला, ये तरह के चीज़ होत रहे। लेकिन ये एक भ्रम रहा है जौन कि सब में ना होला, कुछ जानवरन में ऐसा होला या कुछ आदमी में ऐसा होला। अब ये होला कहाँ से, ये एक वायरल बीमारी है, विषाणु से फैलेला, कॉन्टेजियस है। कॉन्टेजियस माने एक जानवर एक आदमी से दूसरे आदमी में। दूसरा एकर एक महत्व और है कि ये जानवर से आदमी में और आदमी से जानवर में फैलेला। और मुख्य रूप से जौन स्तनधारी जौन जीव बाटे पूरे पृथ्वी पे स्तनधारी में जीव में पावल जाला। कब्बे कब्बे ये देखल गई बा कि पक्षियों में भी पाया जाता है, लेकिन बहुत कम है। जौन बीमारी रेबीज के होला ये प्राण घातक है। दुनिया में अगर कोनो बीमारी सबसे खराब बा तो रेबीज है। अगर ये हो जाला भैले के बाद एकर कोनो इलाज नहीं है। बाकी बीमारियों का तो इलाज हो जाला, लेकिन एकर इलाज कोनो बटले नहीं। ये नाते आपके अगर ये बीमारी आपके या कोनो ऐसा कुत्ता आपके काट ले जौने से कुत्ते नहीं एकरे फैलावे खातिर बहुत से जानवर बाटे जौन की ये बीमारी फैलावल है। एक बारे में हम ये बतावल चाहते नहीं कि ये बीमारी फैलेला कैसे। ये बीमारी एक्चुअली जौन आपके मांसाहारी जानवर बाटे जैसे कुत्ता है, सियार है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आदमी से जानवरों में भी जा सकेला, जानवर से तो आदमी में जैबे करेला। तो आपके सियार से, कुत्ता से, बिल्ली से एकर संक्रमण ज़्यादा होला। एक चीज़ और होला जौने कहल जाला चमगादड़। चमगादड़ से ये बहुत तेजी से फैलेला और चमगादड़ एक कैरियर होला, ढोएला। और अगर कोनो कहीं पे ज्यादा चमगादड़ मर गए बाने, कोनो कुत्ता तत्काल खा लेलस या केहू ओके कोनो तरह से जो है खा लेते हैं तो ओहू से जौन है ओकरे अंदर जौन है रेबीज के बीमारी फैल जाला। तो चमगादड़ जौन है यो स्तनधारी है, भले उसके चिड़िया आप पहल जा लेकिन स्तनधारी है। अक्सर देखा जाला कि चमगादड़ जौन बा आपके जहाँ रहल जाला, जहाँ बांधल जाला, वहाँ भी रात बिरात जौन है वो चमगादड़ जौन है पहुँच जाने और काट लेना। दूसर का सियार जौन होला, सियार जौन कहल जाला उसे कुत्ता से, बिल्ली से जौने में पागल रहना, ओकरे कटले से तो निश्चित होला, लेकिन अब ये कैरियर भी हो गए बाटे। कैरियर का मतलब समझा दी आपके कि ये सबन के जो लार होला, लार में वो आवेलें और कटले के बाद जौने जानवर या जौने आदमी के काट लिए हैं वो शरीर में पहुंच जाला। तो विशेष ध्यान दे आपके ये बात कि एकर वायरस जौन बाटे अगर वो पागल कुत्ता रही तो उसमें ज्यादा रही है, अगर वो काट ले तो निश्चित रूप से आपके बीमारी होके है और आप सतर्क होके एक टीका जरूर लगवा लिया जाए। एकर वायरस जौन बा ये आपके ध्यान नहीं दे होगा कि जब काट ले आपके कब हो तो आप एक एक खूब बढ़िया से साबुन होके या आपके जौन जितना साबुन होला जौन डिटर्जेंट होला या डिसइनफेक्टेंट होला उसे आप धोल जा ओके आपके ज्यादा काम करी। और एक चीज और एक बारे में बताइए आपके कि एमे जौन है कटले के बाद कितना दिन बाद बीमारी फैलेला, जैसे कि एक भ्रम होला आदमी के कि कितना दिन बाद फैलेला, तो आपको बता दें कि ई जौन बा बीमारी कटले के 9 दिन से लगाए तक 9 महीना तक, मतलब अगर शरीर में अगर आपके दिमाग से जितना नजदीक कटले रही उतने जल्दी हो जाए, तो ईमान के चल जा 9 दिन से 9 महीना तक या यहाँ तक कहल गई बा कि सालों तक में ये बीमारी आपके हो सकेला, रबीज आपके हो जाला। तो आपके ध्यान ही देख बा कि जब काटे तो करेक्ट का बट है खूब बढ़िया से साबुन से सफाई कर लिया जा, ऐसे धोले से ही होला कि जहाँ पे कटले रहला वहाँ पे जौन विषाणु होला वो धुल जाला और वहाँ पे वो विकसित नहीं हो पावेला, नहीं तो क्या होला कि वो जहाँ कटले रही वहाँ से वो आपके जौन नर्व होला नर्व के माध्यम से इस शरीर में घुसेला, नाड़ी तंत्र कहल जाला, नाड़ी तंत्र से आपके पहले तो मांस में उबड़ी आपके मांस में जहाँ कटले रही वहाँ से नाड़ी में जाई, नाड़ी से आपके रीढ़ के हड्डी में जाई, रीढ़ के हड्डी से आपके दिमाग में चल जाला। तो आप ध्यान दिया जा कि जितना दिमाग से दूर कटले रही उतना टाइम ज्यादा लगेला बीमारी फैले में और जितना नजदीक कटले रही उतना जल्दी होला। देखल ही गई बा कि अगर दिमाग में आपके सर में कुत्ता काट लेला तो आपके बीमारी जो है 7 दिन के अंदर हो जाला 9 दिन के अंदर हो जाला, तब जब तक जो है वो टीका लगवाओल जाए ओकरे पहले ही जो है आपके जिके कटले रही ओकर मृत्यु हो जाला। ये नाते अगर कुत्ता अगर काट लेता या कोनो इस तरह की चीज काट लेता जौन की जौने में रबीज के बीमारी बा तो आप तुरंत 12 घंटे के अंदर जाके टीका लगवा शुरू कर दिया जा। और ओके अभी टीका के बारे में हम डिटेल्स जौन है बाद में बताई और अभी एमे ये बतावत नहीं कि कहा जाला कि कहाँ कहाँ आपके शरीर में जैसे दूध में आवेला कि नहीं आवेला, तो आपको बता दें कि दूध में भी आवेला और सबसे ज्यादा जौन है वो जानवर जौन पगलाई ले ओकरे जौन है लार में आवेला। तो लार जब काटी और शरीर में जाई तब आपके रेबीज हुई, खून से नहीं होला, ये हमेशा जौन है नाड़ी तंत्र से अंदर जाला। अगर कौनो जानवर पगलाइल बा अगर ओकर खून आप लग गए तो उसे नहीं हुई, अगर शरीर के ऊपर कहीं स्क्रेच बा या कहीं कटल बा ऊपर ओकर लार पड़ जाई तो वो आपके शरीर में जाके बीमारी पैदा कर दे। अब एमे जौन है आपके बतौली है कि 9 दिन से कई महीना तक एकर इनक्यूबेशन कटले के बाद ही पैदा होला, ये नाते है कि जल्दी से जल्दी आप जरूर टीका लगवा लिया जा, सबसे पहले सफाई कर जा टीका लगवाल जा। अब जैसे कुत्ता होलें भेड़ होलें और सुअर होले एमे 15 दिन से 16 दिन में बीमारी फैल जाला और घोड़ा और जौन आपके गाय भैंस होला उमे 30 दिन से 80 दिन तक में बीमारी पैदा होले। कारण क्या होला कि एक दिन में अक्सर पिछले पैर पे काटे लें अगले पैर पे काटे लें मुंह पे काटे लें तो जल्दी पैदा हो जाला, तो मुंह पे कटी हैं तो और जल्दी यहाँ तक कि आप टीका लगवा जाला वही बीच में जो है बीमारी फैल जाला। अब एकरे बाद एक लक्षण का होला ओकरे बारे में आपको हम डिटेल बता दें। सबसे पहले कि जो जानवर के रबीज हो जाए जैसे आपके कुत्ता बा तो 2-3 दिन तक वो शांत पड़ल रही ओकरे बाद जो है ओमे जो है एक फ्यूरियस फार्म होला, मतलब ओमे बहुत तेज उत्तेजना होला वो स्थिति में आ जाई, वो काटे लगी दौड़ावे लगी ओकरे बाद काफी लार चुई और ओकरे बाद जो है पैलसिस वाला सिम्टम आवे लगी ओकर, तो ओकर जो नीचे के जबड़ा होला वो लटक जाला और लार चुए लगेला। तो सबसे बड़ा पहचान ये है कि जौन पगलाइल रही वो एक तो भागी तेजी से और दूसर लार होके निचला जबड़ा जो नीचे चल जाई लटकल रही और जे पाई ओके काटल शुरू कर दे, तो ये नाते अब बाद में का होला कि ओकर पिछला पैर में भी पैलसिस आ जाला। तो सबसे पहले तो में उत्तेजना होला पगलाई तेजी से, जैसे पहले ही बतौली कि बीमारी में पागलपन होला, तो पागलपन में तू पागल तो होवे करी साथ साथ ये सब लक्षण आई, लास्ट में ओके पैलसिस हो जाला, पैलसिस में जबड़ा खोला पिछले पैर का खोला। तीसरका का होला कि जौने जौने जानवर के कोनो जानवर के जौने हो जाए एमे मुंह के अंदर फायरिंग्स कहल जाला ओमे पैलसिस हो जाला, पैलसिस हो जाला तो कहल जाला ना कि हाइड्रोफोबिया, तो ये पानी कहाँ पी पाई, पी नहीं पाई, मुंह के अंदर घुसबे नहीं करी। और दूसरका का होला कि जौने जानवर के रबीज हो जाला ओकर आवाज बदल जाला, ओके जैसे गला बैठल रही वो अंग्रेजी में हॉर्स आवाज कहल जाला, बैठल आवाज आई, मानो आवाज आपके कौनो जानवर के रही चाहे कुत्ता होके चाहे आपके गाय भैंस या बकरी होके चाहे घोड़ा होके, घोड़ा में भी आवाज आपके हिनहिनैले के बदल जाई, वो में घोड़ा में भी हिनहिनाला सब काफी तेज से। और जौन आप अगर गाय भैंस बात अगर हो जाला तो निश्चित जानल जा कि वो बोलल शुरू कर दी। जब ओके फ्यूरियस फार्म से आगे जाई पॉलिटिक में जाई तो बोली और आवाज हमेशा बोलत रही। तो सबसे बड़ी पहचान तो ये है अगर गाय भैंस पाले हैं कभी इस तरह की बीमारी आवे तो ऐसे आपके प्रिकॉशन लेने की जरूरत बा, हमेशा सावधानी बरतने की जरूरत बा।
4: अभी आप सुन रहे थे खेती किसानी में वार्ता रैबिस की बीमारी एवं लक्षण, विशेषज्ञ थे रमाशंकर सिंह। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में समाचार रिले होंगे।
6: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Supreme Court directs all high courts to pronounce judgment within 3 months of reserving order. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. PM Surya Ghar scheme achieves major milestone as 40 lakh households embrace rooftop solar. IMD predicts below normal monsoon rainfall in the country and above normal heatwave conditions in several states during June. And Indian sprinter Nipam wins bronze in women's 100 meter at under 20 Asian Athletics Championships in Hong Kong. The Supreme Court today directed all high courts across the country to pronounce judgments within 3 months of reserving them. We have a report.
7: The Apex Court also noted that delays in the delivery of judgments can cause irreparable harm to the litigants, underlining that faster decisions are required in cases of personal liberty. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joy Mallya Bagchi said that orders in the bail applications should be pronounced the same day, and if they are reserved, they must be pronounced and uploaded the next day. Issuing a slew of directions, the top court said that order of the bail or sentence suspension should be communicated to the jail authorities as soon as it is pronounced, and the under trial convict should be released preferably the same day or at the most the next day. Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
6: Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said the incident of paper leak was extremely unfortunate and should not have happened. In an exclusive interview with DD News, Mr. Pradhan assured that the re-examination process will be conducted in a proper and systematic manner without any errors. He also appealed for everyone's cooperation in carrying out the task smoothly.
8: The incident is very unfortunate. It should not have happened. Now that we have announced re-NEET, it should be conducted properly and done with care. This is our responsibility. We expect everyone's cooperation in this work.
6: Addressing students, Mr. Pradhan assured them that the government understands their concerns and acknowledged that their trust had been breached. He said the authorities had taken a tough decision because they did not want even a single deserving student's future to fall into the hands of examination mafias or become a victim of irregularities. Emphasizing quality and transparency, he said the decision was taken to maintain fairness in the examination system.
8: I want to assure the student that the mistake that has been made will not be repeated. The teachers who were given the question were compromised. We have made a tough decision that we will not hand over any student's right to the exam mafia. We respect the mental state of the children. We want to take care of them. We want to give them an error-free examination process.
6: The minister reassured that every possible effort is being made to conduct an error-free examination amid growing concerns surrounding the examination process. The Delhi government will provide free travel in all Delhi Transport Corporation DTC buses to the appearing candidates for NEET UG 2026 examination, which is scheduled on the 21st of next month. Delhi Chief Minister Rekha Gupta said the candidates can travel free in the DTC buses upon presentation of a valid admit card. She added that no student should face inconvenience on a day that holds such importance for their future. India has marked a historic milestone in its clean energy journey. Union New and Renewable Energy Minister Prahlad Joshi today said that 40 lakh households have now been empowered with rooftop solar under PM Surya Ghar scheme. He added that more than renewable energy initiative, this transformative scheme is turning citizens from power consumers to power producers. The scheme is also enabling families to reduce electricity expenses, benefit from government subsidies, and move towards zero electricity bills. The minister highlighted that with every solar-powered home, the country moves closer towards energy security, environmental sustainability, and the vision of a self-reliant Vikasit Bharat. Union Textiles Minister Giriraj Singh today said India has emerged as a stronger economy under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, and the textile sector is achieving rapid growth through reforms and policy support. During his two-day visit to Andhra Pradesh, the minister visited Mohan Spintex Company at Mallavalli Industrial Park in Krishna District. He said India's textile market is currently valued at over 15 lakh crore rupees, and the government is working to increase it beyond 25 lakh crore rupees by 2030. Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today inaugurated India's first integrated next-generation aviation weather and fog monitoring system, Skycast, at Indira Gandhi International Airport in New Delhi under the flagship mission MAUSUM. Addressing a press conference, Dr. Singh said the new system aims to strengthen airport weather monitoring and fog forecasting. He said Skycast has been developed to support safer, more efficient and weather-resilient air transportation operations, particularly during dense winter fog and rapidly changing weather conditions.
9: Today, we are dedicating to the nation through the aviation sector an integrated weather monitoring system for the aviation sector, which would enable the air flyers, the air crew, the air pilots to determine with precision, particularly during the foggy seasons, during the hazy weather, where you have a lot of pollution, so much of visibility gets affected also because of the other particles. So all that through an integrated equipment called Skycast.
6: The Reserve Bank of India, RBI, in its annual report released today, stated that robust macroeconomic fundamentals will support the growth trajectory of the Indian economy in the current fiscal year, despite headwinds from elevated energy prices, supply chain disruptions, and global market volatility. According to the report, healthy balance sheets of the corporate and banking sectors, along with the government's continued thrust on capital

0: District of Uttar Pradesh. The bridge, which stretches from Moorkandar to Kandaur village, was being built over the Betwa River. The incident took place last night at around 2 a.m. when some workers were standing under a hydro machine amid rain. NDRF and SDRF started rescue work and operations are still underway. The India Meteorological Department, IMD, has predicted below normal monsoon rainfall in the country and above normal heat wave conditions in several states during June. Addressing the media, Director General of IMD, Dr. Mrityunjay Mahapatra, said the average rainfall in the country during the month of June is most likely to be below normal. He said during the period only some parts of the country, including northwest, northeast and south peninsula, are expected to witness normal or above normal rainfall. He further informed that during June, above normal maximum temperatures are likely to prevail across most parts of the country. Mr. Mahapatra added that during the month of June, above normal heat wave conditions are expected over many parts of Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Bihar, Odisha, Chhattisgarh and Gujarat.
1: This year's forecast says that we will have about 2 to 3 days more over UP, Punjab, Haryana and adjacent areas of Himachal, etc. and in some parts of the coastal east coast states and Gujarat. And specifically if I state names of the states, it is above normal heat wave days are expected over parts of Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Bihar, Odisha, Chhattisgarh, Gujarat and Andhra Pradesh and isolated regions of Maharashtra, Telangana, Himachal Pradesh and Tamil Nadu.
0: In sports, at the 2026 Asian Under-20 Athletics Championships, stellar results were recorded in multiple track and field events involving Indian athletes. In the women's 100 metres, Neepam won the bronze medal with a timing of 11.62 seconds. She became the first Indian woman in 25 years to win a medal in this event at the championships. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court directs all high courts to pronounce judgment within 3 months of reserving order. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. PM Surya Ghar scheme achieves major milestone as 40 lakh households embrace rooftop solar. IMD predicts below normal monsoon rainfall in the country and above normal heatwave conditions in several states during June. And Indian sprinter Neepam wins bronze in women's 100 metre at Under-20 Asian Athletics Championships in Hong Kong. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanaklata. सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
2: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
4: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
2: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
4: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्प्रिंटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
5: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं, एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुस जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवर्जन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन, मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
6: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
2: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
1: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
2: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा

नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे नेपाली कार्यक्रम।

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स और एफएम 100.1 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 4 बजे हैं। अब ये सभा यहीं समाप्त होती है। विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। शाम 5 बजे हम अपनी सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: जीवन में अगर देखा जाए तो मनुष्यता की पहचान रिश्ते ही तो हैं। ये रिश्ते कभी रक्त के बंधन होते हैं तो कभी प्रेम के। ऐसे ही रिश्तों को सहेजना अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि मन का सुकून और शांति इससे ही है। आज की कहानी इन्हीं रिश्तों के सम्मान और आवश्यकता की है। चलते हैं गांव की ओर, जिस गांव का नाम है शिवपुर।

शिवपुर गांव की सुबह हमेशा शांत और सौम्य होती थी। तलैया के पास खड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्गों की बातें और सूरज की पहली किरण फसल पर पड़ते ही पूरा गांव मानो जाग उठता। प्रेम है एक दूसरे का, सत्कार है और साथ ही है अपनापन। मंदिर की घंटियां की आवाजें, गाय का रंभाना, बच्चों की खिलखिलाहट, पनघट पर पनिहारियों की हंसी ठिठोली और संतोष के साथ गुजर बसर करते लोग। इसी गांव के एक कोने में पुराना लेकिन बेहद स्नेह से भरा घर, राम नारायण का घर। राम नारायण और उनकी पत्नी कमला गांव में सबके आदर का पात्र हैं। मेहनती, ईमानदार और रिश्तों को सबसे ऊपर रखने वाले। इनके दो बेटे विक्रम और अमित बचपन से ही एक दूसरे की छाया की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों में इतना गहरा प्रेम है कि लोग उदाहरण देते हैं कि राम नारायण के दोनों बेटे सच में राम लक्ष्मण जैसे हैं। एक दूसरे के लिए तो सदा खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए भी साथ में खड़े हो जाते हैं। राम नारायण जी ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा दी है तो माँ यानी कमला जी ने उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक। कुल मिलाकर दोनों बालक ऐसे हैं जैसी चाह सभी को होती है और सभी चाहते हैं उनके बच्चे भी ऐसे ही हो जाएं।

विक्रम बड़ा भाई है तो स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदार और शांत भाव का है, और अमित छोटा है तो यह तो तय है कि वह चंचल होगा, पर दिल का साफ है। बच्चे विद्यालय जाते, थोड़ा खेलते, पढ़ते और खेतों में पिता के साथ काम करते। माँ के हाथ का बना भोजन बिना नानुकुर के बड़े प्रेम से करते, और शाम को मित्रों के साथ कभी कभी गांव के मेले में भी घूमाते। दोनों की हंसी सुनकर लगता जैसे घर में कभी कोई तूफान आ ही नहीं सकता। प्रेम देखकर लगता कि कोई शक्ति इन्हें अलग कर ही नहीं सकती। जीवन का सारा पाठ बचपन में ही सीख लिया है इन्होंने। और यह सब देखकर रामनारायण जी और कमला जी ईश्वर को धन्यवाद देते, और रामनारायण जी अक्सर कहा करते, मेरी असली कमाई, असली धन ये दोनों हैं।

समय बीतता गया। पढ़ाई में होशियार तो थे ही, सो बड़े होते होते दोनों शहर में जाकर पढ़ने लगे और यहीं से आवो हवा बदलने लगी। शहर की चकाचौंध रास आने लगी और मासूमियत कहीं खोने सी लगी। फिर दोनों के जीवन में नए सपने, नए विचार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, अनंत तक चलने की दौड़ का हिस्सा बनने की चाह, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं था, हर किसी को आगे बढ़ना और नई संभावनाएं खोजना भी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य यह था, इन्होंने कई बातें मासूमियत के कारण सीखी ही नहीं, तो बड़ा बनने की लालसा ने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लालच भी भर दिया। अब विक्रम का विवाह सीमा से हुआ, जो महत्वाकांक्षी थी, परंतु महत्वाकांक्षा के गुण के साथ एक अवगुण भी था, स्वार्थपरता का। उसे सब कुछ अपने हिसाब से और स्वयं के लिए चाहिए था। उसके हिसाब से तो दुनिया भी उसके लिए ही घूम रही थी, परंतु प्रेम के वशीभूत विक्रम ने उसे पसंद कर लिया और इन अवगुणों पर ध्यान तक ना दिया। वहीं अमित की शादी गांव की सादगी भरी राधा से हुई, जो परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास करती थी। उसके भी सपने थे जीवन के, पर चाहत सभी के साथ उनको पूरा करने की। दोनों के मन में लालच तो पहले से आ ही चुका था, और विवाह के बाद घर की हवा बदलने लगी। धीरे धीरे ख्वाहिशें विष का काम करने लगी, और जहां कल तक दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, आज विषवेल फैलने लगी थी। लालच, अहंकार, स्वार्थ अपनी

की बड़ी बहू विक्रम की पत्नी सीमा अक्सर कहती, इतनी बड़ी जमीन है लेकिन फायदा कुछ नहीं, बांट लेना चाहिए। हमारा अपना भी तो परिवार है, उसको देखना है कब तक सबको ढोकर चलेंगे। और वहीं छोटी बहू अमित की पत्नी यानी राधा यह सोचकर दुखी होती, जमीन तो रहती ही है पर रिश्ते टूट गए तो घर कैसे रहेगा। हमारा भविष्य अपनों के साथ है, संस्कार है, अपनापन है और यही तो जीवन की पूंजी है। और विक्रम अमित दोनों अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस कड़वाहट का पता ही नहीं चला। कहां क्या अंधकार पनप रहा है जीवन की चकाचौंध में वह देख ही नहीं पाए। धीरे धीरे उनके दिलों में दूरियां और बढ़ने लगी। रामनारायण कमला जी प्रयास कर रहे थे, देख रहे थे कि किसी तरह से इसे संभाल लिया जाए, दोनों बेटों को समझा रहे थे, परंतु उनकी सुनता कौन था। शायद उनके पास सब कुछ संभालने के लिए समय भी बहुत कम बचा था।

कमला यानी दोनों की माँ रात को अक्सर आंगन में बैठकर दीपक की लौ देखते हुए कहती, नारायण जी हमसे कहाँ गलती हो गई। जो लड़के एक रोटी में साथ खा लेते थे आज एक घर में रहने से डरते हैं। कल तक जिन पर पूरा गांव गर्व करता था वैसे ही बालक बनाने की प्रार्थना करता था, आज हम भी लोगों के किस्सों में शामिल हो गए। और वह रोने लग जाती। वहीं रामनारायण जी के पास कोई उत्तर नहीं था, चुपचाप सुनते और दोनों माता पिता जागती आंखों में ही रातें बिता दिया करते।

अब लालच का पेड़ बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका था और इसी लालच ने रूप ले लिया था बहस का, विवाद का। और एक सुबह जमीन बांटने की बात पर दोनों भाइयों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। परिवार का छोटा बेटा अमित चिल्लाया, भैया माँ बाप की सेवा की बात करो, तुम बस जमीन के हिस्से गिनते हो, माता पिता की आवश्यकताओं को तो देखना भी आवश्यक लगता नहीं तुम्हें, सब सब मैं अकेले कर रहा हूँ। बड़े बेटे विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम तो बस यही चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं, सब तुम्हें मिल जाए, सेवा का दिखावा करके पूरा मेवा अकेले खाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यही विवाद बैठक से गुजरता हुआ रसोई तक पहुंच गया। साथी सीमा और राधा दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और यह तनाव इतना बड़ा कि रसोई में बना भोजन अमृत नहीं विष का काम करने लगा और दूरियां बढ़ जा रही थी। और बूढ़े हो चुके माता पिता ने जब रोकने की कोशिश की, अपनी असहायता भी दिखाई, संस्कारों की दुहाई भी दी, उनके बचपन का प्रेम भी याद दिलाया, यूं कहें कि सारे हथकंडे अपना लिए, पर दोनों भाइयों की आवाजें इतनी ऊंची हो चुकी थी कि प्यार की सारी बातें उसमें ही दब गईं और ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और आगे कोई रास्ता नहीं। क्रोध में आकर एक दिन अमित घर छोड़कर गांव के दूसरे सिरे पर रहने चला गया ताकि वह विक्रम की पूरी संपत्ति को हत्या लेने वाली बात को गलत साबित कर सके। और विक्रम अपने माता पिता से अलग हो गया क्योंकि पहले भी सेवा तो अमित ही कर रहा था और वह सेवा अब समाप्त हो गई थी। उसी रात कमला ने रोते रोते कहा, नारायण जी अब इस घर की दीवारों में भी हमें अपनापन नहीं लगता, प्रभु ही कोई राह दिखाए।

कुछ ही महीनों में लगातार तनाव से पहले रामनारायण बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा उन्हें शांति चाहिए, लेकिन घर में शांति कहाँ थी, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। वैसे सच है, कभी कभी हम बच्चे अपने स्वार्थ में अपने माता पिता की उम्र का भी नहीं सोचते, उनके जीवन के अंत का कारण तक बन जाते हैं। और यहाँ यही हो रहा था। पिता के बीमार होने पर भी दोनों बेटों में बहस जारी रही, पैसों की, जमीन की, जिम्मेदारी की। और एक दिन सुबह राम नारायण ने अंतिम सांस ले ली, और जिसका सब कुछ टूटा था वो थी केवल कमला जी। कल तक जिससे सारे दर्द कह लेती थी, आज वो भी चला गया, सब खत्म कर गया। और 2 महीने बाद लगातार यही दुख झेलते झेलते वे भी संसार से चली गई। मृत्यु के पहले उन्होंने बस इतना ही कहा, काश तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। ये बात सुनकर भी दोनों भाइयों का अहंकार कम नहीं हुआ। उनके अंतिम संस्कार तक में वो दूर दूर बैठे थे। काश मां की अंतिम इच्छा सोचकर ही एक हो जाते।

अंतिम संस्कार के बाद पंडित हरिदास, जो कि राम नारायण जी के अभिन्न मित्र थे, दोनों को किनारे पर ले गए और थोड़ी कठोर और सच्ची आवाज में कहा, पिता की चिता ने तुम दोनों को जुदा नहीं किया, तुम्हारे लालच ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। तुम लोग जमीन बांटने में लगे रह गए, तुम्हारे हाथों के रिश्ते जलकर खाक हो गए। विक्रम, अमित, क्या किया तुमने? अपने माता पिता को ही खो दिया अपने लालच में। विक्रम और अमित का सीना भारी उठा। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि वे वास्तव में अकेले पड़ चुके हैं, आगे सब अंधकार है। उन्हें पछतावा लग रहा था, कल तक जो एक दूसरे की गलतियां खोज रहे थे, आज कहीं ना कहीं अपनी गलतियां देखने लगे थे। कहा भी है ना, किसी को एक अंगुली दिखाने पर तीन अंगुलियां अपनी ओर रहती हैं, और यहां भी यही हो रहा था। कल तक जो एक उंगली उठी थी, आज उन तीन अंगुलियों को भी देख पा रहे थे जो उनकी ओर थी।

अगले कुछ दिन तक घर एकदम खाली सा पड़ा था। दीवारें भी रो रही थी, सन्नाटा था, जीवन में पछतावा था, और पछतावा उम्र भर का कि काश हमने समझा होता तो शायद हमारे माता पिता हमारे साथ होते। एक दिन अमित चुपचाप घर आया। उसने देखा कि विक्रम अकेला बैठा है, माता पिता की तस्वीर साफ कर रहा है। दोनों की आंखें मिली और बिना बोले आंसू बह पड़े। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अमित माता पिता को तो खो दिया, अब नहीं चाहता कि तुझे भी खो दूं। अमित ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया दिल में प्यार हमेशा था, बस लालच और गुस्से ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। दोनों पहली बार लंबे समय के बाद गले मिले। दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। इधर राधा और सीमा भी रो पड़ी। उन्हें भी अपनी भूलों का एहसास हुआ।

पंडित हरिदास और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि तोड़ने वाली ताकतें बहुत होती हैं, पर जोड़ने के लिए संगठन चाहिए। दोनों भाई उसी शाम गांव के किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहां जमीन को जोड़कर खेती करने, आधुनिक तरीकों को अपनाने और एक साझा संगठन बनाने पर चर्चा की। विक्रम बोला, हम दोनों ने जमीन बांटने की गलती की, अब हम इसे जोड़कर एक साथ खेती करेंगे। अमित ने समर्थन किया और गांव वालों के लिए भी एक किसान संगठन बनाएंगे ताकि कोई परिवार हमारी तरह ना टूटे, गांव तरक्की करे। हम सभी मिलकर ऐसी खेती करेंगे जिसमें कोई रसायन का प्रयोग ना हो। सोलर सिस्टम से हम पूरे गांव की बिजली की समस्या का निदान करेंगे। हम मिलकर करेंगे तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साफ सफाई, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, सबका प्रयास अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए करेंगे और गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। यही हमारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारी ओर से क्षमा याचना भी। गांव वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।

संगठन बनने के बाद गांव की उपज दुगनी होने लगी, किसानों को बाजार में उचित दाम मिलने लगा, युवक युवतियां गांव छोड़कर शहर जाने के बजाय यहीं रोजगार पाने लगे, रिश्तों में खटास कम होने लगी। विक्रम और अमित ने मिलकर राम नारायण कमला कृषि सहयोग समिति इस नाम से अपने माता पिता की याद में एक केंद्र बनाया। गांव में जब कोई लड़ाई या मनमुटाव होता तो लोग कहते, जाकर विक्रम अमित से बात करो, उनका घर टूटकर जुड़ा है, वे समझाएंगे। और इस सब के साथ गांव को देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मान भी मिला।

कई सालों बाद विक्रम ने संगठन की सभा में कहा, माता पिता को खोना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उनकी यादों ने हमें एक कर दिया। हम समझ गए जमीन, पैसे, चीजें सब दोबारा मिल सकती हैं, पर रिश्ते टूट जाएं तो दोबारा नहीं बनते, और यदि बनते हैं तो संगठन एकता और प्रेम से ही बनते हैं। सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें भर आईं। गांव के बच्चे आज भी कहानी सुनते हैं कि कैसे विक्रम और अमित ने लालच से घर को तोड़ा और प्यार और संगठन से फिर से बना लिया।

रिश्ते। अभी आप सुन रहे थे विधि जैन की लिखी ये तो भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ,

0: नमस्कार। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। न्यायालय की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि विद्यार्थियों के विश्वास को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस हुरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता है। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। श्री बघेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हर एक तक सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी समझौते के प्रति वचनबद्धता दोहराई। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91.97 लाख करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 192 अंक गिरकर 74,776 पर बंद हुआ। निफ्टी 359 अंक गिरकर 23,548 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवा वाणी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: खो गया इंतजाम।
4: किसका?
3: गुड्डी की फीस का।
4: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
5: RBI कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: हमारी जनगणना हमारा विकास।
8: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
9: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
10: नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का युवाओं के कार्यक्रम युववाणी में, और आज है आप शिवलता के साथ। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सुविचार के साथ। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। दोस्तों, हमें अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। जिस तरह एक कोमल सी रस्सी भी एक कठोर पत्थर पर बार बार रगड़ खाने से निशान बना देती है, वैसे ही अगर हम कोशिश करते रहें तो ज़रूर सफल हो सकते हैं। दोस्तों, हर मौसम का हमारे शरीर पर और पाचन क्रिया पर सीधा प्रभाव पड़ता है। गर्मी के मौसम में सूरज की तेज़ किरणों के कारण वातावरण का तापमान बहुत बढ़ जाता है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा धीमा हो जाता है। इस मौसम में भूख कम लगती है और प्यास ज़्यादा, इसलिए गर्मियों में हमें ऐसे खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो पेट को ठंडा रखें, आसानी से पच सकें और शरीर में ऊर्जा बनाए रखें। गर्मियों में हमारा खान पान हल्का, सुपाच्य और पानी से भरपूर होना चाहिए, ताकि शरीर का तापमान संतुलित रहे और डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो। गर्मी के मौसम में चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के कारण शरीर से पसीने के रूप में भारी मात्रा में पानी और ज़रूरी मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं। ऐसे में सही आहार का चयन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, प्रकृति हमें हर मौसम के अनुकूल फल और सब्जियां प्रदान करती है। इस मौसम में तरबूज, खरबूजा, संतरा, अंगूर और पपीता जैसे फलों का सेवन अधिक करना चाहिए। तरबूज में लगभग 90% से अधिक पानी होता है, जो शरीर को तुरंत हाइड्रेट और रिफ्रेश करता है। लौकी, खीरा, ककड़ी जैसे पानी से भरपूर सब्जियों को भोजन में शामिल करें। खीरा शरीर को अंदर से ठंडा रखने और डिटॉक्स करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। दोपहर में भोजन में दही, लस्सी या छाछ का सेवन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, दही में पाए जाने वाले अच्छे बैक्टीरिया, जिन्हें हम प्रोबायोटिक्स भी कहते हैं, पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं और पेट की गर्मी को शांत करते हैं। सादे पानी के अलावा रोज़ नारियल पानी, नींबू पानी, आम पन्ना और बेल का शरबत पिएं। नारियल पानी शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है। नाश्ते और रात के खाने में पोहा, दलिया, खिचड़ी या जौ सत्तू जैसे हल्के अनाज लें, जो पेट पर भारी ना पड़े। दोस्तों, गर्मियों में गलत खान पान से फूड पॉइजनिंग, उल्टी, दस्त और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए कुछ चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तले और मसालेदार भोजन जैसे समोसे, पकौड़े, फ्राइज या अत्यधिक गर्म मसालों से बने भोजन से बचें, क्योंकि ये शरीर का तापमान बढ़ाते हैं और पचाने में कठिन होते हैं। अत्यधिक कैफीन के सेवन से बार बार आपको शरीर में आपके पानी की कमी हो सकती है, जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। गर्मियों में बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से पनपते हैं, इसलिए बाहर का खुला खाना या बासी भोजन खाने से फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ सकता है। अधिक चीनी वाले कोल्ड ड्रिंक्स कुछ समय के लिए ठंडक तो देते हैं, लेकिन वो शरीर को डिहाइड्रेट करते हैं और आपकी प्यास को और बढ़ाते हैं। इसलिए हो सके तो सॉफ्ट ड्रिंक्स और आइसक्रीम से दूर रहें। दोस्तों, कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन और तन। ये कहावत गर्मी के मौसम पर पूरी तरह सटीक बैठती है। गर्मियों का आनंद लेने और बीमारियों से दूर रहने का सबसे सरल तरीका यही है कि हम संतुलित, ताज़ा और प्राकृतिक रूप से ठंडा आहार लें। अत्यधिक पानी पीकर और हल्का भोजन अपना कर हम इस मौसम में भी पूरी तरह चुस्त दुरुस्त और ऊर्जावान बने रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं इस गीत की ओर।

दोस्तों, एविएशन के क्षेत्र में करियर बनाना आज के युवाओं के लिए एक बेहद आकर्षक, रोमांचक और उज्जवल भविष्य देने वाला विकल्प है। वैश्वीकरण और बढ़ते पर्यटन के कारण विमानन उद्योग दुनिया भर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में न केवल सम्मानजनक वेतन मिलता है, बल्कि देश विदेश घूमने और अलग अलग संस्कृतियों को जानने का अवसर भी मिलता है। आधुनिक युग में हवाई यात्रा अब केवल अमीरों की विलासिता नहीं, बल्कि आम लोगों की ज़रूरत भी बन चुकी है। उड़ान जैसी सरकारी योजनाओं और निजी विमानन कंपनियों की बढ़ती संख्या ने भारत सहित पूरी दुनिया में एविएशन सेक्टर का विस्तार किया है। ये एक ऐसा डायनामिक क्षेत्र है जो साहसी, अनुशासित और संवाद कौशल में निपुण युवाओं को आसमान छूने का मौका देता है। विमानन क्षेत्र केवल पायलट बनने तक सीमित नहीं है। इसमें हवाई जहाज के उड़ने से लेकर यात्रियों की सुरक्षा और हवाई अड्डे के प्रबंधन तक कई तरह के पेशेवर शामिल होते हैं। इन्हें मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जा सकता है। फ्लाइट क्रू, जिसमें कॉमर्शियल पायलट्स आते हैं, विमान उड़ाने वाले मुख्य कमांडर के लिए पायलट ट्रेनिंग और वैध लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ये इस क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित और उच्च वेतन वाला पद होता है। कैबिन क्रू और एयर होस्टेस के तहत विमान के भीतर यात्रियों की सुरक्षा, आराम और आपातकालीन स्थितियों को संभालने की जिम्मेदारी होती है। बात करें हम ग्राउंड स्टाफ और एयरपोर्ट ऑपरेशंस की, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, कस्टमर सर्विस एजेंट और एयरपोर्ट मैनेजर जैसी सुविधाएं इसमें आती हैं। इसमें हवाई क्षेत्र के विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग को सुरक्षित रूप से निर्देशित करने वाले पेशेवर आते हैं। इसके तहत आपको टिकट काउंटर, चेकिंग इन और बोर्डिंग पास जारी करने जैसे कार्यों को संभालना होगा। हवाई अड्डे के दैनिक कामकाज, सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन करना एयरपोर्ट मैनेजर के हिस्से आता है। एविएशन सेक्टर में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग होती है। ग्राउंड स्टाफ और केबिन क्रू के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास या किसी भी विषय में ग्रेजुएशन है। पायलट और इंजीनियरिंग के लिए 12वीं में फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है। अंग्रेजी और हिंदी या अन्य किसी अंतर्राष्ट्रीय भाषा पर मजबूत पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा शांत स्वभाव, टीम वर्क की भावना, संकट के समय त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखना इस क्षेत्र की मुख्य मांग है। अच्छी नज़र और मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना भी अनिवार्य है। दोस्तों, हर करियर की तरह एयरलाइंस क्षेत्र के भी दो पहलू हैं। उच्च वेतनमान, मुफ्तिया रियायती हवाई यात्रा, 5 सितारा होटलों में ठहरने का अवसर और एक ग्लैमरस लाइफस्टाइल तो है, पर इस क्षेत्र में काम के घंटे निश्चित नहीं होते। त्योहारों और छुट्टियों के दिनों में भी काम करना पड़ सकता है। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी के कारण ये मानसिक रूप से तनावपूर्ण भी हो सकता है। दोस्तों, एयरलाइंस का क्षेत्र उन युवाओं के लिए एक बेहतरीन मंच है जो लीक से हटकर कुछ अलग करना चाहते हैं और जिनमें वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने का जज्बा है। कड़ी मेहनत, कड़े अनुशासन और सही प्रशिक्षण के बल पर इस क्षेत्र में एक शानदार और दीर्घकालिक करियर बनाया जा सकता है। ये क्षेत्र साबित करता है कि अगर आपके सपनों में जान है, तो आसमान भी आपकी सीमाओं को नहीं बांध सकता।

दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स यानी संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 29 मई को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में शांति स्थापना के लिए काम करने वाले सैन्य, पुलिस और नागरिक कर्मियों के साहस, समर्पण और योगदान को याद करना है और उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने शांति की राह में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना यानी यूएन पीस कीपिंग फोर्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हें आमतौर पर ब्लू हेलमेट या ब्लू बेरेट के नाम से भी जाना जाता है। उनके इसी निस्वार्थ सेवा भाव और शहादत को सम्मान देने के लिए हर साल 29 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस वर्ष 2026 के लिए निर्धारित की गई विशेष थीम है इन्वेस्ट इन पीस यानी शांति में निवेश करें। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं इस गीत की ओर।

मनाया जाता है। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, नेशनल वोटर्स डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही मैं लेती हूँ आपसे विदा, इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: पंचो जय हिंद
3: भैया, नारा लगा ले यही के साथ बैठकी के शुरुआत भई।
2: हाँ भैया,
3: आज देखा भैया 29 मई हवे। हाँ। और आज के दिन अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस के रूप में भैया पूरे दुनिया में मनावल जा रहा है।
2: हाँ भैया, एक आरंभ जौन बा 1948 में भइल रहा है और ये अपने पहले ही मिशन 1948 में भइल अरब इजराइल युद्ध के दौरान जौन युद्ध विराम के पालन करोले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभौले रहा।
3: भैया बिल्कुल सही कहा, 1948 में जौन अरब इजराइल युद्ध भइल रहा।
2: हाँ हाँ,
3: वो समय जौन बा बड़ी भयावह स्थिति रहा।
2: हाँ,
3: लेकिन ये जौन बा संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक जोन रहल हैं।
2: हाँ, हाँ।
3: दोनों देशन के बीच में भैया संघर्ष विराम करवा के बहुत बढ़हन काम कैले।
2: हाँ भैया, में दुनिया भर से जनबा सैनिक और पुलिस के तैनात कैल जाला और उनके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा जौन भी निर्धारित जनादेश बा ओकर श्रृंखला के संबोधित करे खातिर नागरिकन के शांति सैनिकन के साथ एकीकृत कैल जाला।
3: कुल मिला के भैया ई बा कि जौन भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग शांति
2: हाँ हाँ
3: के क्षेत्र में लोग काम कर रहा बटे, चाहे सैनिक हमें चाहे सामान्य नागरिक हमें, उनकर जो योगदान बा ओके याद कैला के उद्देश्य से जौन बा ई दिन मनावल जाला।
2: भैया भारत जौन बा संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान में सैन्य योगदान दे वाला सबसे बड़ा देश में एक रहल बा। आ नवंबर 2021 तक भारत कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन में दूसरा सबसे बड़हन सैन्य और पांचवा सबसे बड़हन पुलिस योगदान देवे वाला देश है।
3: भैया जैसे कि तू पहले कहला ना कि 1948 में एकर स्थापना भइल रहा।
2: हाँ हाँ,
3: तब से लेके जौन बा 71 संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में 49 में से भारत के भैया जौन बा करीब
2: 2 लाख
3: से अधिक सैनिक जौन बा योगदान अपन दिले।
2: हाँ भैया, भारत में महिला के ईवन शांति मिशन में भेजले के लंबा परंपरा भी रहल बा।
3: हाँ भैया, भाई देखा बात कही हमन के आगे भी हुई।
2: हाँ हाँ,
3: लेकिन बीच में कुछ मन मनसायन होके पंच भाई लोगन के पूरा हर

0: आइए आइए खन्ना साहब।
1: नमस्कार नमस्कार, आइए मिस्टर खन्ना, तशरीफ रखिए।
2: अरे भाई, जब आए हैं तो तशरीफ भी रखेंगे, क्यों जीवन की माँ।
3: और क्या, लड़की देखने आए हैं, कोई मजाक थोड़े ही है।
1: अरे बेटा जीवन, तुम खड़े क्यों हो, बैठो ना।
2: That's all right. Thank you very much.
1: आप लोगों को घर खोजने में कोई परेशानी तो नहीं हुई?
4: अजी कतई नहीं।
3: आपको तो लगता है गली का बच्चा बच्चा जानता है।
4: आखिर को सेठ है भाई, सेठ।
1: आप तो शर्मिंदा करते हैं खन्ना साहब, हम तो बस नाम के ही सेठ हैं।
3: क्या बात करते हैं आप, ये कलात्मक कमरा, ये कीमती सामान, भला आपको कोई कैसे नहीं जानेगा।
4: सेठ जी, आपको कुछ शेरो शायरी का भी शौक है?
1: जी बचपन में था, लेकिन अब
3: संगीत से प्रेम हो गया होगा।
1: जी नहीं जी नहीं, वो दरअसल
2: अजी क्या शायरी क्या संगीत, रॉक एंड रोल शेक जस्ट एंजॉय कीजिए, हर फिल्म में फास्ट म्यूजिक के साथ चलता है।
1: लगता है आप सभी को किसी न किसी कला से प्रेम है।
4: जी हाँ, कहा है ना, कला बिना सब जीवन सूना।
1: अहो भाग्य की आपके यहाँ मेरी बेटी का रिश्ता तय हो रहा है।
4: जी हाँ, जी हाँ।
1: आज उसकी माँ जिंदा होती तो कितनी खुश होती।
3: समधिन जी के ना होने का दुख हमें भी है।
1: शिवन बेटा, तुम्हारी वकालत की पढ़ाई कैसी चल रही है?
3: अजी पढ़ क्या रहा है, खाना पूरी कर रहा है। जीवन तो बड़े बड़े वकीलों के कान वैसे ही काट देता है, क्यों जीवन के बाबू।
2: तुम ठीक कहती हो जीवन की माँ,
4: अगर जीवन हम लोगों की वकालत न करता तो हम लोगों का अब तक तलाक हो गया होता।
2: यू आर राइट डैडी, लेकिन सारी गलती
3: देखा ना, मैं पहले ही कहती थी कि तुम ही हमेशा गलती करते हो।
4: ठीक कहती हो जीवन की माँ, तुमसे शादी करके मैंने जो गलती की उसे आज तक भुगत रहा।
3: रहने दो जीवन के बाबू, मैं चुपचाप तुम्हारी सब ऐसी वैसी बातें सह लेती हूँ, कोई और होती तो पता चलता।
2: वंडरफुल वंडरफुल, मेरी फिल्म के लिए अच्छा कॉमेडी सीक्वेंस रहेगा।
1: तुम्हारी फिल्म?
2: जी हाँ, मैं अभी इसी महीने बम्बई गया था, सब मामला पक गया है, बस इनिशियल मनी यानी पूंजी हाथ में आते ही फिल्म का मुहूर्त कर दूंगा।
1: बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे।
3: अरे हाँ, इतने बड़े मकान में बस आप और सिर्फ आपकी बेटी कला?
1: हाँ मिसेस खदा, कला की माँ ने बड़े शौक से यह मकान बनवाया था, लेकिन अरे मैं बातों में आप लोगों के लिए नाश्ता तो भूल ही गया।
5: अरे कला बेटी, जरा नाश्ता तो ले आओ।
1: ये मेरी बेटी कला है।
3: नमस्ते। खुश रहो बेटी, बैठो, खड़ी क्यों हो?
1: बैठ जाओ बेटी, ये जीवन की माँ है।
4: और मैं उसका बाप हूँ।
2: और मैं जीवन, आई मीन योर लाइफ।
3: जी
2: कुछ कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि आपका नाम बड़ा सुंदर है, ब्यूटीफुल।
1: मेरी बेटी भी कम सुंदर नहीं है।
3: अरे हाँ बेटी, तुम्हारा रिजल्ट तो आ गया होगा।
6: जी मैं फर्स्ट डिवीजन।
4: तुमने जरूर ज्योग्राफी में एमए किया होगा।
6: जी नहीं, हिस्ट्री में।
3: अच्छा, इतिहास तो मेरा प्रिय विषय रहा है।
4: भैया है, ये भी कोई पढ़ने वाली चीज है?
3: अरे हटो, तुमने कभी जाना समझा भी है इतिहास को? जाओ शहर का भूगोल समझो पहले।
1: अरे आप लोग तो कुछ खा नहीं रहे हैं, ये नाश्ता तो वैसे ही रखा है।
3: आप चिंता ना करें,
4: हम लोग सब निपटा देंगे।
3: हाँ बेटी, तुम्हें और क्या क्या आता है?
6: जी
2: बताइए ना, आपकी हॉबी क्या है?
6: जी
3: अरे जी, शर्माओ नहीं, बोलती जाओ। भाई साहब, अगर आप
1: समझा, आप लोग बात करिए, तब तक मैं अंदर रसोईये को देखता हूँ। कला बेटी शर्माना नहीं, ये लोग जो पूछे उसका जवाब दे देना।
3: अरे भाई, बाप के सामने तो बेटी शर्माएगी।
4: रहने भी दो जीवन की माँ, जब हम लोग तुम्हें देखने तुम्हारे घर गए थे तब तुम तो

0: बिल्कुल नहीं शर्माई थी।
1: तुम ही कौन 2-4 किलो शर्म अपने साथ लाए थे जीवन के बाबू?
2: ओ डैडी मम्मी, आपने ये कहावत तो सुनी होगी, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। कला जी, आप तो नहीं शर्माती?
1: जी कतई नहीं।
2: देखा मम्मी?
1: हाँ हाँ। अच्छा बेटी, ये सामने दीवार पर जो पेंटिंग टंगी है वो किसने बनाई है?
3: जी मैंने।
1: अच्छा, और वो तानपुरा कौन बजाता है?
3: मैं।
1: अरे तुम तो बिल्कुल मेरी ही तरह हो, मुझे भी चित्रकारी और संगीत से बड़ा प्रेम है।
0: गलत।
1: क्या गलत?
0: यही कि तुम्हें किसी किस्म की लीपा पोती और गाने बजाने की तमीज नहीं है।
1: बेकार की बातें करते हो जी।
0: मैं सही कह रहा हूँ, तुम ही बताओ बताओ कि तुम इतने दिनों से कलम ब्रश लेकर कागज खराब कर रही हो, खराब कर रही हो ना?
1: हाँ हाँ। तो
0: आज तक तुम अपनी शक्ल भी नहीं बना पाई?
1: और क्या जरा बोलो।
0: पिछले 10 वर्षों से तुम रियाज कर रही हो, सारे गामा सारे गामा सारे गामा पर, बोलो कर रही हो ना?
1: हाँ हाँ। तो
0: लेकिन आज तक 10वां राग ईजाद नहीं कर पाई।
1: बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद।
0: यानी कि मैं बंदर हूँ?
2: डार्विन की छोरी है कि हम सभी बंदर के बच्चे हैं। आपका क्या ख्याल है कला जी?
3: आप सही कहते हैं जीवन जी, इसीलिए तो आदमी भी बंदर की तरह इधर उधर उछलकर नाचता रहता है।
2: बहुत अच्छे, इसका मतलब आपको डांस भी आता है?
3: जी हाँ, हर तरह का।
1: मैंने भी कथक सीखा है।
2: नो मम्मी, मेरी फिल्म में कथक नहीं, जिप्सी डांस चलेगा। कैसा रहेगा कला जी?
3: फर्स्ट क्लास। लेकिन आपकी फिल्म?
2: जी हाँ, सब तैयारी है, बस फ्लोर पर जाने की देरी है। मैं हीरो और आप हीरोइन, आप हीरोइन और मैं हीरो, हम लोग जब सड़क पे निकलेंगे देखने वालों की निगाहों में बस जीवन कला कला और जीवन होंगे। आपको बेल बॉटम तो पसंद है ना? और हाँ, आपको मेरी फिल्म की कहानी मालूम है?
3: जरा बताइए तो।
2: ए टीनेज लव स्टोरी फुल ऑफ सस्पेंस, थ्रिलिंग, एक्शन पैक्ड सेंसेशनल ड्रामा। जरा अटेंटिव होकर सुनिए। रात का समय है, मूसलाधार बारिश हो रही है, हीरोइन टिंकल के बीच घोड़े से सरपट सरपट सरपट भागी जा रही है। तभी बिजली कड़कती है, एक भयानक चीख के साथ हीरोइन घोड़े से गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी एक कार वहां आकर रुकती है, उसमें से हीरो निकलकर उस हसीना को देखता ही है कि विलेन अपने साथियों के साथ आ जाता है। वो हीरोइन को जबरन उठा लेता है, लेकिन वही हीरो वो धिशुम सॉरी डैडी। और इसी बीच विलेन के चंगुल से निकलकर हीरोइन दौड़कर हीरो से चिपट जाती है और हीरो उसे अपनी बाहों में।
3: अरे छोड़िए छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं आप, कुछ तो शर्म कीजिए।
2: सॉरी मैडम, मैं समझा कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ। बस बस वहीं से डुएट शुरू हो जाता है। बरसात में हम तुम एक जंगल से जा रहे हो और तुम गिर जाओ बरसात में।
3: बड़ी अच्छी थीम और लिरिक है आपकी फिल्म की।
0: अच्छा, अजीब बनने दीजिए इसे, ओवरनाइट जीवन कला की जोड़ी फिल्मी दुनिया की सारी जोड़ियों को पीछे छोड़ देगी। लंदन में टी, पेरिस में लंच, न्यूयॉर्क में नाश्ता, हांगकांग में डिनर और बॉम्बे में।
3: ओहो, अरे आप लोग जलपान तो कीजिए।
1: चिंता ना करो बेटी, चिंता ना करो, हम लोग अब यहाँ से खाना भी खा कर जाएंगे। मेरे लिए तो घर में तुम्हें दोनों समय खाना बनाना पड़ेगा और सुबह उठकर 2 घंटे मेरे साथ भजन पूजन।
3: जी
0: भजन पूजन तुम जानो, पर मुंह अंधेरे मेरा हुक्का तैयार मिलना चाहिए।
2: मुझे बेटी चाहिए, फिर कला की साधना, बिना कला के क्या जीवन। आप मुझसे एग्री करती हैं ना कला जी?
3: बिल्कुल, मैं सभी से सहमत हूँ। आपके लिए बेटी, डैडी के लिए हुक्का और मम्मी के साथ कीर्तन।
0: शाबाश बेटी, अब जरा अपने पिताजी को भेज देना।
3: जी अभी भेज दी।
1: आसामी तगड़ा है,
4: काफी मोटा है।
2: डैडी, आसामी तगड़ा हो या मोटा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल मेरी फिल्म के फाइनेंस का है।
1: काफी दहेज देगा शायद।
4: अगर मेरी मानो, यह मकान भी लड़का लड़की के नाम लिखवा लेना जीवन की माँ।
1: सुनो, नकदी में जो मिले उससे मेरे लिए कंगन हार।
2: नहीं मम्मी नहीं, नकदी से मेरी फिल्म का मुहूर्त होगा। कहिए खन्ना साहब, आपको हमारी लड़की पसंद आई?
1: लड़की तो हमें पसंद है, लेकिन क्यों जीवन के बाबू?
0: हाँ जीवन की माँ, लड़की पढ़ी लिखी होशियार है, हमें भी पसंद है, लेकिन क्यों जीवन बेटा?
2: यस डैडी, मेरी फिल्म के लिए एकदम फिट, लेकिन
5: मैं जानता था कि मेरी बेटी आप

0: को जरूर पसंद आएगी।
1: आपका विचार सही है, लेकिन
0: लेकिन क्या?
2: दरअसल हमारे भी चार लड़कियां हैं और नीना की तो शादी तय भी हो गई है, बस तिलक देना है।
0: ठीक है, पहले उसी की कर दीजिए, तिलक देकर छुट्टी करिए।
1: फिर आप जल्दी तिलक
0: जी,
1: आप तिलक में 20,000 नगद तो देंगे ही समझी जी, क्यों जीवन के बाबू?
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, नीना की ससुराल वाले भी तो इतना ही मांग रहे हैं।
0: जी, वो तो इतना अधिक,
1: हम तो कुछ नहीं मांग रहे जीवन को देखते हुए।
0: हमारा लड़का वकील बनेगा।
3: नो डैडी, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर।
1: अजी, हम तो अपनी एक ही लड़की के लिए इतना मांग रहे हैं, वैसे मेरे लिए तो 10 साड़ियां ही काफी रहेंगी।
0: वो मिस्टर खन्ना,
2: आप मेरी फिक्र न कीजिए। अरे जीवन के लिए जब आप कपड़े देंगे तो 2 सूट पीस मेरे लिए भी मंगवा दीजिएगा। कुछ गलत कह रहा हूँ समझे जी?
0: नहीं नहीं, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं इतना सब कैसे?
2: देखिए, आपकी इकलौती बेटी है, सारी जमा पूंजी या मकान वगैरह सब उसी का तो है।
1: अरे हाँ, मकान की अच्छी याद दिलाए, समझी जी अपनी लड़की को मकान तो देंगे ही।
0: अरे लेकिन इतना सब मैं कहाँ से दूंगा, और मकान देने के बाद मैं कहाँ रहूंगा?
1: कला की शादी के बाद आपका बचा ही कौन है जिसके लिए आप रहेंगे
0: जी? ये तो आप लोगों की मांगे हैं, क्या जीवन?
3: जी मैं आपसे क्या मांगूं, मैं तो कला का उपासक हूँ, बस फिल्म पूरी करने के लिए।
0: यानी?
3: डोंट वरी, फिल्म का हीरो मैं, हीरोइन कला, कहानी डैडी की और म्यूजिक मम्मी का, हिट फिल्म बनेगी, बस 5 लाख।
0: 5 लाख?
3: जी शुरू में इतने से ही काम चल जाएगा, वो धासु फिल्म निकलेगी, खन्ना सेठ ब्रदर्स की शानदार भेंट, बलि का बकरा, फाइनेंस बाई पीके सेठ। वैसे एक रोल चाहे तो आप ही कर सकते हैं।
0: यानी आप लोग मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते
1: हैं? नहीं पिताजी, आप बलि का बकरा नहीं बनेंगे, इन मंगतों से मैं निपटती हूँ।
0: कला, तुम?
1: हाँ पिताजी, मैंने आप लोगों की सारी बातें बाहर से सुन ली और मांगी भी, लेकिन बेटी हमने तो सब कुछ तुम्हारे लिए ही मांगा है।
4: हर साल अपनी बहू के लिए ही तो मांगती है, आपने सब कुछ तो मांगा लेकिन एक चीज तो मांगना भूल ही गई।
1: वो क्या बेटी?
4: एक कनस्तर मिट्टी का तेल।
1: मिट्टी का तेल? लेकिन उसकी क्या जरूरत है?
4: जरूरत क्यों नहीं है, आखिर आपकी बहू मरेगी कैसे? एक दिन मोहल्ले में आपको चीख चीख कर कहना भी तो पड़ेगा कि आपकी बहू खाना बनाते वक्त स्टोव से जलकर मर गई।
0: बेटी,
4: एक कनस्तर तेल एक बहू को जलाने के लिए कम तो नहीं होगा?
0: तुम क्या कह रही हो बेटी? मिस्टर खन्ना, आप लोग इसकी बातों का बुरा न मानिएगा, दरअसल बड़ी सेंटिमेंटल लड़की है।
3: एक्सीलेंट, मेरी फिल्म के हीरोइन का कैरेक्टर भी बिल्कुल ऐसा ही है।
1: हम लोग बच्चों की बातों का बुरा नहीं माना करते।
3: और फिर आपको हम सब ने पसंद कर लिया है।
4: झूठ झूठ बोलते हैं आप लोग, पिताजी की जिंदगी भर की मेहनत और ईमानदारी की कमाई पर नजरें हैं आपकी, आपको आपको पत्नी या बहू नहीं चाहिए।
1: ये तुम क्या कह रही हो?
4: ठीक ही कह रही हूँ पिताजी, ऐसी जगह शादी करने से अच्छा है आप मेरा गला घोट दे।
0: चुप जा,
4: गला घोट दे,
0: चुप हो जा। खन्ना साहब, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है, बाहर का दरवाजा खुला है, जाइए और अपने बेटे के लिए किसी टकसाल में लड़की खोजिए।
1: समी जी
5: गई, ये मुर्गी भी गई, चलो जीवन बेटे चले
3: चले, अब मेरी शादी, मेरी फिल्म, मेरा मुहूर्त। आइडिया, वन मोर आइडिया, फिल्म का नया टाइटल, लड़की पसंद है
6: लेकिन।

0: हाँ भैया, बहुत बढ़िया। मनमन साय भेल पंच पहलवन के झलकी लड़की पसंद है से।
1: हाँ भैया, और देखा आज जोन बा
0: हाँ
1: अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री
0: हाँ हाँ
1: जेके किसानन के मसीहा के रूप में जानल जाला, भारत रत्न इनके जोन बा
0: हाँ
1: दिहल
0: हाँ
1: गेल रहल, चौधरी चरण सिंह के आज पुण्यतिथि हवे।
0: हाँ भैया, ये हर साल 29 मई के मनावल जाला। 29 मई 1987 के उनका निधन भइल रहल। आ उनकी मुख्य रूप से जौन बा देखल जाए तो किसानन के अधिकारन के वकालत करे और उत्तर प्रदेश के भूमि सुधार में ऐतिहासिक योगदान करे खातिर के जानल जाला।
1: बिल्कुल सही कहा भैया, किसान लोगन के उत्थान और ग्रामीण विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहल,
0: हाँ
1: यही के वजह से इनके जोन बा हर साल आज के दिन याद कर जाला।
0: भैया, 28 जुलाई से 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के आप 5वां प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कैलें और उनके जैसा बतैबे कहीं भारत रत्न से भी सम्मानित कैल जा चुकल बा।
1: ये अवसर पे भी पूरा देश में जगह जगह पर कार्यक्रम का आयोजन कर जाला,
0: हाँ
1: जौना
0: हाँ
1: में

0: लोग चौधरी चरण सिंह के जौन योगदान बा ओके याद करल हैं।
1: हाँ हाँ
0: उनके भैया जौन बा जौन पुण्यतिथि बा
1: हाँ
0: हाँ
1: हाँ
0: ओपहर लोग जौन बा अपन श्रद्धा सुमन अर्पित
1: वही
0: करल हैं।
1: अवसर पे स्थित उनका जो समाधि स्थल व किसान घाट पर, वहाँ भी जौन बा श्रद्धांजलि कार्यक्रम के आयोजन कइल जाला। और जैसे आप बतौली, पूरा देश में लोग उनके जौन बा श्रद्धांजलि अर्पित करल।
0: भैया देखा हम चाहता ठीक बैठकी में फिरू एगो मन मनसायन होके पंच भाई सुने गीत गौने फिर हमन के बात कही कैल जाए।

0: शंकर यादव और उनका संगतिया लोग भैया गीत गौने सुनौत रहा है। उम्मीद बा कि अपन पंच भाई उनका पूर्वहर मन मन साइन भैल हुई यही के साथ अपने चलने का जून भैल चल जाए।
1: पंचो जय हिंद।

अभी हमारे ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे केंद्र से क्रमशः भोजपुरी और हिंदी में क्षेत्रीय समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। सर्वोच्च न्यायालय आज देश के सज्जो उच्च न्यायालय के फैसला सुरक्षित रखले के 3 महीना के भीतर ओके सुनौले का निर्देश देले हो। न्यायालय कहलस कि फैसलन में देरी से याचिका कर्तन के अपूर्णीय क्षति हो सकेला। एगो रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान काले वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिया से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के साथ ही 12 राज्यन के 10,000 करोड़ रुपया से बेसी का राशि जारी कैले। एह मौका पर श्री चौहान कहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हवें कि देश में कौनो गरीब मनई कच्चा मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मऊ में 392 करोड़ रुपया से बेसी लागत क 114 परियोजनन के लोकार्पण आ शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल भेल हैं। एह मौका पर वहाँ के कहने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में पछिला 12 साल में लोग बदलत भारत के देखले हम हैं। श्री योगी कहलें कि प्रदेश सरकारों बिना रुकले या बिना थकले लगातार विकास का कार्य कर रही हो।
3: कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी, 2.5 से 3 घंटे की? आप सोचो ना, आप चाहिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से धड़धड़ा करके 2.5 घंटे 3 घंटे में लखनऊ। यहाँ आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी, और बाढ़ से बचाव के लिए सरकार कार्य कर रही है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काल ही लखनऊ में पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था के लेके एगो उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कैले। इस दौरान मुख्यमंत्री कहले कि पुलिसिंग खाली कानून व्यवस्था ले सीमित नहीं हो। वहाँ के कहले कि आधुनिक तकनीक, संवेदनशील व्यवहार, संवाद कौशल, साइबर अपराधन का समझ आ फॉरेंसिक दक्षता प्रभावी पुलिसिंग का बुनियादी जरूरत बन गई बा। मुख्यमंत्री कहले कि प्रशिक्षण व्यवस्था में गुणवत्ता, एक रूपता आ पारदर्शिता सुनिश्चित कैल जाए। हमीरपुर जिला में काल देर रात आयल तूफान के दौरान बन रहल पुल गिरले से 6 गो मजूरहन का मौत हो गई। मोराकंदर से कंदौर गांव ले फैलल ई पुल बेतवा नदी पर बनावल जात रहल। ई घटना देर रात 2 बजे ओह समय भइल जब बरखा के बीचे कुछ मजूरहा हाइड्रोलिक मशीन के नीचे खड़ा रहलें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एह हादसा पर गहरा शोक जतौले हमें। वहाँ के मृतक लोगिन के परिजनन के 5-5 लाख रुपया आ घाही लोगिन के 50-50 हजार रुपया के आर्थिक सहायता उपलब्ध करवले का निर्देश देले हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह का पुण्यतिथि मनावल जा रहा हो। यह मौका पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उनके मूर्ति पर फूल चढ़ा के श्रद्धांजलि देने। पत्रकार लोगों से बतियावत वहां के चौधरी चरण सिंह के व्यक्तित्व आ कृतित्व के बारे में चर्चा कैली।
4: देश के स्वाधीनता आंदोलन के साथ वे जुड़े थे। देश के अंदर कृषि के क्षेत्र में, राजस्व के क्षेत्र में तमाम प्रकार के रिफॉर्म करने का श्रेय चौधरी साहब को जाता है। वे देश के किसानों के मसीहा थे और उनका स्पष्ट कहना था कि देश के विकास का रास्ता

0: गांव और गांव के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है।
1: मौसम विभाग प्रदेश में बिहनहू कहीं कहीं बिजली गिरले आ तेज झोंकेदार बेयार चलने के ऑरेंज अलर्ट जारी कैले हो। सतही कई जगहिन पर गरज चमक के साथे बरखा भइले आ बौछार पड़ले के संभावना जतावल गइल बा। एह बीचे प्रदेश के पूर्वी जिलन में बीतल रात से आंधी पानी के साथे भइल बरखा के बादे आज दिन में मौसम साफ रहल। कई जगहिन पर दिन में हल्का है घाम निकरल, बाकी लोग भीषण उमस आ गर्मी से राहत महसूस कैले। समाचार पूरा भइल, नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूरणीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
3: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 114 परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में लोगों ने बदलते हुए भारत को देखा है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार भी बिना रुके और बिना थके सतत विकास के कार्य कर रही है।
4: कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी, 2.5 से 3 घंटे की? आप सोचो ना, आप चाहिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से धड़धड़ा करके 2.5 घंटे 3 घंटे में लखनऊ। यहाँ आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी, और बाढ़ से बचाव के लिए सरकार कार्य कर रही है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसिंग केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, संवेदनशील व्यवहार, संवाद कौशल, साइबर अपराधों की समझ और फॉरेंसिक दक्षता प्रभावी पुलिसिंग की बुनियादी आवश्यकता बन चुकी है। हमीरपुर जिले में कल देर रात आए तूफान के दौरान निर्माणाधीन पुल के गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। मोराकंदर से कंदौर गांव तक फैला यह पुल बेतवा नदी पर बनाया जा रहा था। यह घटना देर रात 2 बजे उस समय घटी जब बारिश के बीच कुछ मजदूर हाइड्रोलिक मशीन के नीचे खड़े थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह के व्यक्तित्व और

0: कृतित्व के बारे में चर्चा की।
1: देश के स्वाधीनता आंदोलन के साथ वे जुड़े थे। देश के अंदर कृषि के क्षेत्र में, राजस्व के क्षेत्र में तमाम प्रकार के रिफॉर्म करने का श्रेय चौधरी साहब को जाता है। वे देश के किसानों के मसीहा थे और उनका स्पष्ट कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव और गांव के खेत और खिलियानों से होकर के जाता है।
0: अमरोहा सहित प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में भी अलग अलग आयोजनों में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। मौसम विभाग ने प्रदेश में कल भी कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश और बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।

0: पंचों जय जवान जय किसान। भैया नारा लगल और यही के साथे अपने बैठकी के शुरुआत भइल।
1: हाँ
0: हाँ। अब भैया गवे गवे समय आ गइल बा, मई का महीना खत्म हो वाला बा।
1: हाँ
0: हाँ। पंच भाई जे अगाह भैया धाने के खेती करेला, उ धाने का नर्सरी डाल रहा बा।
1: हाँ भैया,
0: कई लोग अभी खेते के तैयारी कर रहा बाटे।
1: हाँ हाँ।
0: तो जौन धान है ये अपने खरीफ का मुख्य फसल हवे।
1: हाँ हाँ।
0: और अपने यहाँ स्थिति परिस्थिति के अनुसार अलग अलग किस्म के जौन बा धान पंच भाई लगावल है।
1: हाँ
0: कुछ क्षेत्र ऐसा बा भैया जहाँ पे पानी भरेला, तो
1: हाँ
0: जहाँ पे पानी भरेला वहाँ खरते दूसर प्रजाति रहले।
1: हाँ हाँ
0: उस रीला क्षेत्र बा वहाँ खरते दूसर प्रजाति रहले।
1: हाँ हाँ
0: या जहाँ पे सामान्य जमीन बा भैया
1: हाँ
0: वहाँ
1: हाँ
0: पर जौन बा दूसर प्रजाति रहले।
1: जैसे परिस्थिति के अनुसार जौन बा धाने के प्रजाति के अगर चुनाव कइल जा आ रहे तो जौन बा बढ़िया फल देला फसल देला जौन बा अपने पंच भाई लोगन के, ता यही से संबंधित जौन बा पंच भाई लोगन के जानकारी देते हैं डॉक्टर
0: हाँ
1: सतीश
0: भैया,
1: कुमार तोमर जी
0: और ये
1: परिस्थिति।
0: भैया कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती में जौन बा वरिष्ठ वैज्ञानिक और वहाँ का अध्यक्ष हमें,
1: हाँ हाँ
0: तो ये जौन जानकारी दे रहा बाटे परिस्थितियों के अनुसार धान की प्रजातियाँ, एक अपन किसान भाई सुने और लाभ उठावें।
2: किसान भाइयों, हमारा खरीफ में धान एक प्रमुख फसल है और किसान को धान की फसल से बहुत उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि उसको साल भर धान से चावल खाने को चाहिए। इसकी अच्छी पैदावार होना बहुत आवश्यक है और अच्छी पैदावार के लिए हमारे किसान भाई सबसे पहला जो ध्यान जाता है किसान भाई का, वो जाता है कि अच्छी प्रजाति का बीज हमें मिले। अच्छी प्रजाति का चुनाव वो करना चाहते हैं तो इस चीज को ध्यान में रखें कि उनके खेत की स्थिति किस तरह की है और उनको आगे कौन सी फसल बोनी है। जैसे अगर कोई किसान भाई सब्जी की खेती आगे करना चाहता है धान के बाद में, तो उसको कम अवधि वाली धान की प्रजाति की बुआई करना चाहिए, या किसी के पास सिंचाई के प्रॉपर साधन नहीं है तो असिंचित क्षेत्रों के लिए जो प्रजातियां उपयुक्त हैं उनकी खेती करनी चाहिए। तो जो कम दिन की और असिंचित क्षेत्रों में प्रजातियां अच्छी पैदावार देती हैं, तो वो किसान भाई जिनको आगे सब्जी लगानी है, अगेती मटर लगाना है या अगेती आलू करना है, उनके लिए जो प्रजातियां हैं उनको किसान भाई नोट कर लें। उसमें एक प्रजाति है शुष्क सम्राट। ये प्रजाति 105 से 110 दिन में तैयार हो जाती है और इसकी पैदावार 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। दूसरी प्रजाति है बरानी दीप। ये प्रजाति 95 से 100 दिन में तैयार हो जाती है और इसकी भी उत्पादन क्षमता 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। एक प्रजाति है पंत धान 12। ये प्रजाति 105 से 110 दिन लेती है और इसकी पैदावार 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो प्रजातियां हैं ये असिंचित क्षेत्रों के लिए कम अवधि वाली प्रजातियां हैं, इनको किसान भाई खेती कर सकते हैं। दूसरा जो आता है हमारे किसान भाई, जो मध्यम अवधि की हमारी धान की प्रजातियां हैं और वो अच्छी पैदावार देती हैं, उनको भी किसान भाई देखें कि जो किसान भाई अपनी फसल को 130 से 135 दिन में धान की फसल काटना चाहते हैं, अच्छी उपज लेना चाहते हैं, तो वो मध्यम अवधि की प्रजातियों को लेकर के बुआई करें। इसमें जो सबसे पहली प्रजाति है और बहुत अच्छी पुरानी प्रजाति है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ जो है ये प्रजातियां जो है किसान भाई इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, एक है सरजू 52। ये प्रजाति ऐसी है जिसको आज भी किसान जो है बहुत पसंद करते हैं, जबकि बहुत पुरानी प्रजाति हो चुकी है। लेकिन इसकी खासियत ये है, ये प्रजाति सूखा भी बर्दाश्त कर लेती है और थोड़ा पानी भी अगर ज्यादा हो जाता है तो उसको भी बर्दाश्त कर लेती है, यानी कि ये अच्छी पैदावार देती है और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो जो है आपकी 50 से लेकर 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक ये उत्पादन दे जाती है। इसका दाना थोड़ा सा मोटा होता है लेकिन लंबा होता है। दूसरी एक प्रजाति है नरेंद्र 2064। ये प्रजाति 115 से 125 दिन में तैयार होती है और इसकी उत्पादन क्षमता 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तीसरी जो प्रजाति है वो है नरेंद्र 2065। ये प्रजाति 125 से 130 दिन में तैयार होती है और 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अपनी पैदावार देती है। ये दोनों ही प्रजातियां बहुत अच्छी है, थोड़ा सा डांट इनका जो है लंबा होता है जिसको किसान भाई कहते हैं, तो इनको किसान भाई बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा सियाट्स धान 1, 2 और 4, ये प्रजातियां भी जो हमारा नैनी में है सियाट्स करके, वहां से ये निकली हैं और इनकी जो अवधि है 125 से 135 दिन है, उत्पादन क्षमता 45 से 52 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, दाना महीन और लंबा होता है। अब आती है जो देर से पकने वाली हमारी प्रजातियां हैं, लंबी अवधि की प्रजाति जिनको हम कहते हैं। इसमें दो प्रजातियां बहुत ही किसान पसंद करते हैं, एक है सांबा मैसूरी जो 155 दिन लेती है और 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक जो है पैदावार देती है। इस प्रजाति में एक ही समस्या है कि इसमें जो BLB है, बैक्टीरियल लीप ब्लाइट है, वो थोड़ा सा इसमें असर करता है, उसका किसान भाई ध्यान रखेंगे तो इससे जो प्रजाति से आप उत्पादन क्षमता अच्छी ले सकते हैं। दूसरा है सियाट्स धान 3, ये 140 दिन में तैयार होती है और 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देती है, लेकिन इसका दाना महीन होता है इसलिए किसान इसको पसंद करते हैं। चौथी प्रजाति है MTU 7029, ये ऐसी प्रजाति है जिसको बोनी मैसूरी भी कहते हैं, स्वर्णा मैसूरी भी कहते हैं, और ये 160 दिन लेती है, 60 से 65 कुंटल इसकी पैदावार होती है। तो ये अधिक पैदावार देने वाली हमारी जो प्रजातियां हैं, इनको किसान भाई ले सकते हैं, अपनी आवश्यकता क्षेत्र के अनुसार सिलेक्शन कर सकते हैं। अब कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जलभराव होता है, तो जलभराव में किसान भाइयों ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खेतों में कितना पानी रुकता है। अगर कम पानी रुकता है, यानी कि 30 सेंटीमीटर तक अगर आपके पानी रुकता है, खेत में लगा रहता है, तो वहां पर जो है आप MTU 7029, जिसको हम स्वर्णा मैसूरी कहते हैं, उसको भी ले सकते हैं, और एक वैरायटी NDR 8002 उसको भी ले सकते हैं। ये जो प्रजातियां हैं ये 30 से 50 सेंटीमीटर तक जो है आप लगा सकते हैं। इससे ज्यादा अगर पानी आता है आपके खेत में, तो एक प्रजाति आती है जल लहरी, ये 150 दिन में तैयार होती है, 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है, इसको किसान भाई लगा सकते हैं। फिर एक प्रजाति आती है जलमग्न, ये प्रजाति 150 से 200 दिन लेती है और उत्पादन क्षमता इसकी 45 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। लेकिन इसकी खासियत यह है कि जैसे जैसे आपके खेत का पानी का लेवल बढ़ता है, वो ऐसे ऐसे इसकी लंबाई बढ़ती जाती है। एकदम से पानी ना आए, अगर धीरे धीरे खेत में पानी का लेवल बढ़ता है, तो ये प्रजाति वहां पर, और जब खत्म हो जाती है, ये प्रजाति सर्वाइव कर जाती है। और इसी में एक प्रजाति आती है जलप्रिया, 150 से 160 दिन लेती है, 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी जो है पैदावार होती है। तो जहां पर पानी 1 मीटर 1.5 मीटर तक पानी आता है, वहां पर ये जलप्रिया और जलमग्न को आप किसान भाई खेती कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है सभी किसान भाइयों को कि आप जो है इसको अगर जुलाई में लगाने जाएंगे तो आपको पैदावार उसकी नहीं मिलेगी। आपको ये जितने भी जल भराव वाली जहां 1 मीटर 1.5 मीटर पानी आता है, इनको अगेती लगाना पड़ेगा। अगेती लगाने का मतलब है कि आप जो है इसको मई में अवश्य लगा दे, तब ये आपको जो है पानी धीरे धीरे बढ़ेगा, कि हमारे यहाँ मानसून आता है जून लास्ट में, तो ये उस लायक हो जाए कि आपको जो है ये वहां पानी में डूबे नहीं। अब वो प्रजातियां मैं किसान भाइयों बता रहा हूँ, जो प्रजातियां अगर आपके खेत में अचानक से पानी आ गया और 10-15 दिन आपके खेत में पानी भरा भी रहा, तो ऐसे खेतों के लिए जो प्रजाति है वो है सांबा सबवन। एक प्रजाति है सांबा सबवन, जो हमारी सांबा मैसूरी है उसी में एक जीन डाला गया है सबवन करके, और इससे क्या होता है कि इसमें 10 से 15 दिन तक अगर ये कंप्लीट पानी में डूबी भी रहे, तब भी ये प्रजाति जो है आपको 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार दे जाएगी। दूसरी है स्वर्णा सबवन, ये प्रजाति थोड़ा ज्यादा समय लेती है, लेकिन ये भी अगर 15 दिन तक पानी में डूबी रहेगी और उसके बाद अगर पानी उसका निकलता है, तो ये प्रजाति भी आपको अच्छी पैदावार दे जाती है। नरेंद्र नारायणी एक प्रजाति है, इसको भी किसान भाई लगा सकते हैं। नरेंद्र जलपुष्प एक प्रजाति है, और नरेंद्र मयंक, ये प्रजातियां आप जल भराव जहां पर सडन बाढ़ आई और पानी निकल गया, जिसको हम फ्लैश फ्लड कहते हैं, वहां पर किसान भाई इन प्रजातियों को लगा सकते हैं। अब जो सेगमेंट आता है किसान भाइयों धान की वेरायटी का, वो आता है बासमती का। वैसे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पर बासमती का GI नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ किसान मैं देखता हूँ अपने खाने के लिए या शौक में किसान भाई बासमती की खेती करते हैं। इसमें है पूसा बासमती 1, और इसी में संशोधित किया गया है एक संशोधित बासमती 1 या 1। इसके अलावा जो प्रजाति है उसमें बासमती 217 है, बासमती 317 है, त्रावड़ी बासमती है, ये पुरानी प्रजातियां हैं। लेकिन इनके बाद जो प्रजातियां आई हैं उनको भी किसान भाई देखें कि पूसा बासमती 1121, ये प्रजाति बहुत अच्छी पैदावार देने वाली है, 130 दिन में ये करीब करीब तैयार हो जाती है। और अगर आप देखें, अगर हम मंडी की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये धान बिकता है मंडी में। इसके बाद जो प्रजाति आई है वो आई है पूसा बासमती 1509, ये प्रजाति कम अवधि की है और इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी है। बस इसमें एक थोड़ा सा नुक्स है कि ये जब आप चावल बनवाने जाते हैं तो इसका चावल जो है थोड़ा सा टूटता ज्यादा है, इसलिए इसको अगर रबर के रोलर हो तभी किसान भाई इसको खेती करें। इसके अलावा बल्लभ बासमती 22, पूसा बासमती 6, मालवीय बासमती धान 10-9, ये भी अच्छी प्रजाति है, पूसा बासमती 17-28, पूसा बासमती 16-37, पूसा बासमती 17-18, पूसा बासमती 16-92, ये प्रजाति जो है किसान भाई ले सकते हैं बासमती की। इसी में एक है पंजाब बासमती 5, हरियाणा बासमती 2, ये इतनी बासमती की प्रजातियां हैं और इनका मार्केट वैल्यू भी अच्छा है। तो जो भी किसान भाई इनकी खेती करना चाहते हैं इनमें से चुनाव करके आप बासमती धान की प्रजाति ले सकते हैं। अब वो सेगमेंट आता है जहां पर हमारे किसान भाई के यहाँ अगर ऊसर का क्षेत्र है तो वहां कौन सी प्रजाति किसान भाई लें। तो ऊसर के लिए जो अच्छी प्रजाति है, एक तो आपकी आती है ऊसर धान 1 करके एक प्रजाति आती है, ऊसर धान 1, और जो अब इम्प्रूव्ड बहुत अच्छी प्रजातियां आ गई है CSR 36, CSR 43, CSR 13, CSR 56, ये प्रजातियां उसरीली भूमियों में धान की अच्छी खेती करने के लिए बड़ी उपयुक्त है। इनको लेकर के किसान भाई जहां भी आपके खेत में ऊसर है वहां पर इनको लगा सकते हैं। अब आता है कई बार किसान भाई जो है आज बहुत अच्छी पैदावार कम समय में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए संकर धान की जो प्रजातियां हैं वो ग्रो करनी चाहिए किसान भाई को। और संकर धान में जो उन्नत प्रजातियां हैं जो अभी हमारे क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छी पैदावार दे रही हैं, उसमें है प्रो एग्रो 6444, प्रो एग्रो 6201, PHB 71, ये वेराइटी बहुत अच्छी वेराइटी है। अगर कहीं इसका सीड मिलता है उत्पादन क्षमता इसकी 70 क्विंटल 75 क्विंटल तक भी ये वेराइटी पैदावार दे देती है, इसको आप ले सकते हैं। पूसा RS 10, ये भी एक वेराइटी बहुत अच्छी है, इसको किसान भाई ले सकते हैं। KRS 2, ये वेराइटी भी जो है बहुत अच्छी है हाइब्रिड में। एक प्रजाति हमारे पूरी उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी के साथ जो है इस समय चल रही है और अभी जो गोरखपुर में हाईएस्ट प्रोडक्शन मिला है वो इस वेराइटी को हाइब्रिड लगाया गया था और बेस्ट स्टेट गवर्नमेंट ने इसकी जो पैदावार आई वो 40 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से हार्वेस्ट की गई थी। स्वाना 7501, ये वेराइटी संकर धान की है और लगभग 135 दिन में ये तैयार हो जाती है और इसकी पैदावार पिछले साल जो क्रॉप कटिंग हुई थी उसमें ये हाईएस्ट का अवार्ड जो है इस किसान को जिसने ये वैरायटी लगाया था उसको मिला है। तो ये धान की जो प्रजातियां हैं इनमें से कोई भी प्रजाति लेकर के लगा सकते हैं। अपनी परिस्थिति का जरूर ध्यान रखें, किस तरह का हमारा खेत है, हमारे पास सिंचाई के क्या साधन है, कितने दिन की फसल हमको लेना है, आगे कौन सी फसल गेहूं बोना है, चना बोना है, मसूर बोना है या सब्जी लगाना है, उसके हिसाब से आप प्रजाति का चुनाव करें, अवधि के हिसाब से, उत्पादन क्षमता के हिसाब से, तो आपका जो धान की पैदावार है वो बहुत अच्छी जो है आपको प्राप्त होगी। इसमें एक दो चीजें मैं और किसान भाई को बताना चाहता हूं कि एक तो जब भी आप कोई धान की बुआई करने जाते हैं तो उसका अपने घर पर बीज की उत्पादन क्षमता का टेस्ट जरूर करें। अगर आपने कहीं से सर्टिफाइड बीज नहीं लिया है और आप घर के बीज की बुआई कर रहे हैं तो आप उसको जो है बीज को उसमें से 100 बीज लेकर के आप उसका जमाव करके देख लीजिए कितने बीज उसमें से जम रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपने बीज की दर को जो है निर्धारित करें कि हमको पर एकड़ या पर हेक्टेयर जो भी बीज डालना है। एक छोटा सा आसान उपाय और है कि आप जो है एक नमक का घोल बनाएं और नमक का घोल ऐसा बनाएं कि आपका अंडा जो है उसमें तैरता रहे, यानी कि इतने परसेंट का घोल बनाएं, कम से कम 20% का घोल वो बनता है, अंडा उसमें तैरने लगे डाल के देख लें कच्चा अंडा और उसमें फिर आप अपने बीज को डाल दें। जो बीज नीचे बैठ जाएं उनको आप अलग कर लीजिए, ऊपर वाले बीज को फेंक दीजिए और फिर 4 से 5 बार पानी से अच्छी तरह धुल के ताकि नमक उसमें से निकल जाए, फिर जो है आप उस बीज का नर्सरी डालने के लिए या सीधी बुआई के लिए कुछ भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये किसान भाई जरूर ध्यान रखें, धान की अच्छी पैदावार आप लोग प्राप्त करेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ, लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
5: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
6: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
6: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
6: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
5: For details, log on to www.ddindia.com.
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
9: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: अभिनव संदेश से पहले सुननी है जानकारी, परिस्थितियों के अनुसार धान की प्रजातियां, डॉक्टर सतीश कुमार तोमर जी से इतना निम्न जानकारी खरतीन दिया जाए, इनके बहुत बहुत धन्यवाद भैया। लेकिन सुखला सुखला ना ये ठो गीत के माध्यम से।

वाली कहती किसान वाली के कि तोहरा सैया साँझ सवेरे, अरे तो तोरा सैया साँझ सवेरे, अरे घूमत तो हुई है डाड़े मेरे, नवेली नार नैहर में आई। और कहत कहे कि तुम्हारे पति क्या करते होंगे, अरे घसिया।

0: किसान के बीवी तनी आ गए अपने पानी पर और का कहला का सुना, तुहार पति तुहरे जोग, हमार पति हमरे जोग, इमे घमंड को ने बात कहे। लेकिन भैया जेकर पति कप्तान ओकर बात नहीं बोल। हाँ भैया तो सुना, किसान वाली का कहती है, किसान वाली कहती है कप्तान वाली के कि तू सुना, अब ले हम सुन लिया, तू सुना। अरे जब तू के कलेक्टर, अरे जब तू के कलेक्टर, अरे कप्तान मिलल है,
1: अरे जीव जीव।
0: जब तू के कलेक्टर, अरे कप्तान मिलल है, तो सखी हमहू सजा।

0: महकमा में खाना पीना टाइम से ना मिलत, हमार पति अखिया समनवा रही है तो का हुई। अरे भूख लगी दुल्हा के, अरे भूख लगी सैया के, अरे लपसी चटैबे, भूख लगी सैया के, अरे घोर के लपसी चटैबे, लेकिन होटलिया में खा
1: नहीं, होटलिया में।

0: कहले हमारी बलमुआ के कमत समझाऊ हो ट्रैक्टर खरीद ले बस 70,000 में। आ कहले कि हम तुहार बलमुआ 35,000 पर घमंड करने चढ़ल दौड़ल है, हमारे पास 70,000 के ट्रैक्टर है, हमारा बलमुआ कब ऊपर चढ़ते ना। हमारो बलमुआ ट्रैक्टर खरीद ले बस 70,000 में। और का कहले अरे कि जब नोट का गड्डी,
1: अरे जीजू
0: आपके पति कप्तान है, अरे जब नोट का गड्डी सखी तू पवलू तो सख

किसान वाली कहला कप्तान वाली से अपने सहेली से कहले कि तुहरे बलमुआ के पहरा पड़ेला। कहे कि भाई जिला के मालिक हूँ, तुहरी बलमुआ पे पहरा पड़ेला, पहरा के देले बंदूकधारी चौकीदार और सिपाही। लेकिन ए सखी, हमारी बलमुआ के गौआ के लोगवा सब घेरले रहे हरे हरवाही। और का कहले, अरे कि जब जिला के मालिक, अरे जब जिला

हमरा बलमुआ कब्बो न कब्बो आई किसान के राज पा जाई है टिकट, लड़ जाई है इलेक्शन तब बन जाई है मिनिस्टर। आई साफ सुबह दरबार लगई है सलामी के तभी है कप्तान या कलेक्टर। और का कहले अरे कि जब हीरा रतन सख तू पवलू, जब हीरा रतन सख तू पवलू।

0: के कहा तक बड़ाई करे, कहे भाई देश के मालिक हुए, देश के बचावल है, उन रहे तो दिन दहाई लो लूट ले। हे माने तुहार पति तुहरे जोग, हमार पति हमारे जोग, तुहरे बलमुआ के कहा तक बड़ाई करी, कहे कि भाई चोर बदमाशन से इ देश के बचावे, लेकिन हमारो बलमुआ हम मेहनत कमाई करके गेहूं चना बोई बोई बॉर्डर पे पहुंचावे, कहल कि हमार बलमुआ कमी है ना बंडा खेबू का खेबू, कहल कि हमारो बलमुआ हम मेहनत कमाई करके गेहूं चना बोई बोई बॉर्डर पे पहुंचावे, कहल किसान के वाली अरे हमारी करे जऊ के,
1: अरे जीजू
0: कहल की अरे हमारी किसनवा के, हमारी

0: हाँ भैया देखा शंकर यादव और उनका संगतिया लोग कितना निम्न जौन बा गीत गानों सुनौले। उम्मीद बा कि पंच भैल उनके पुरहर मन मनसायन भैल हो यह विरह के माध्यम से। यही के साथ भैया अपने चलने का जून हो गए, चलल जाए।
1: पंचों जय जवान जय किसान।

0: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बारी। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। श्रोताओं, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हमारे केंद्र को जिन विलुप्त व्यक्तियों के संबंध में सूचना दी गई है उनके विवरण इस प्रकार हैं। जुगराफिया खातून, पुत्री अता हुसैन, साकिन भटगवा, टोला भटमली, थानहा गोल्हौरा, जनपद सिद्धार्थनगर के गायब होने की सूचना हमारे केंद्र को दी गई है। जुगराफिया खातून की उम्र लगभग 19 वर्ष है। इनकी लंबाई लगभग 5 फीट है। रंग सांवला है। चेहरा लंबा है। ये सूट और सलवार पहनी हुई हैं। जुगराफिया खातून पुत्री अता हुसैन के संबंध में कोई भी सूचना मोबाइल नंबर 8795934551 पर दी जा सकती है। अखिलेश महतो, पुत्र बाबूलाल महतो, निवासी हजरतपुर, थाना गोहद्दी नगर, जनपद समस्तीपुर, बिहार के गायब होने की सूचना हमारे केंद्र को दी गई है। अखिलेश महतो, पुत्र बाबूलाल महतो की उम्र लगभग 60 वर्ष है। इनकी लंबाई लगभग 5 फुट 6 इंच है। ये इनका चेहरा लंबा है। अखिलेश महतो, पुत्र बाबूलाल महतो के संबंध में कोई भी सूचना मोबाइल नंबर 6238164423 पर दी जा सकती है। मीना, पत्नी राजेश, ग्राम खुनवा बाजार, थाना सोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर के गायब होने की सूचना हमारे केंद्र को दी गई है। मीना पत्नी राजेश की उम्र लगभग 35 वर्ष है। इनकी लंबाई लगभग 5 फुट है। रंग सांवला है। चेहरा लंबा है। ये धानी कलर की साड़ी और पैर में स्लीपर चप्पल पहनी हुई हैं। मीना पत्नी राजेश की उम्र लगभग 35 वर्ष है। चंदन यादव, पुत्र कन्हैया प्रसाद, निवासी बर्डपुर नंबर 8, टोला बभनी, कपिल वस्तु, जनपद सिद्धार्थनगर के गायब होने की सूचना हमारे केंद्र को दी गई है। चंदन यादव, पुत्र कन्हैया प्रसाद की उम्र लगभग 21 वर्ष है। इनकी लंबाई लगभग 5 फीट 2 इंच है। रंग गोरा है। इकहरा मजबूत जिस्म है। चंदन यादव, पुत्र कन्हैया प्रसाद सफ़ेद टी शर्ट व जीन्स पहने हुए हैं। इनके संबंध में कोई भी सूचना मोबाइल नंबर 8368710751 पर दी जा सकती है। बबलू पुत्र जग्गन, ग्राम असनहरी, थाना शिवनगर डिडई, जनपद सिद्धार्थनगर के गायब होने की सूचना हमारे केंद्र को दी गई है। बबलू पुत्र जग्गन की उम्र लगभग 23 वर्ष है। इनका रंग गेहुआ है, चेहरा लंबा है। ये पीले सफ़ेद रंग के बनियान पहने हुए हैं। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बबलू पुत्र जग्गन के संबंध में कोई भी सूचना मोबाइल नंबर 8112441394 पर दी जा सकती है। अमीना खातून, पत्नी शहाबुद्दीन चौधरी, वार्ड नंबर 2, आज़ाद नगर, नगर पंचायत व थाना डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थ नगर के गायब होने की सूचना हमारे केंद्र को दी गई है। अमीना खातून, पत्नी शहाबुद्दीन चौधरी की उम्र लगभग 25 वर्ष है। इनकी लंबाई लगभग 5 फीट है। रंग गेहुआ है। ये कथई रंग का सूट व सलवार और नकाब पहनी हुई हैं। अमीना खातून, पत्नी शहाबुद्दीन चौधरी के संबंध में कोई भी सूचना मोबाइल नंबर 9082038329 पर दी जा सकती है। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आइए सुनते हैं विजय शंकर विश्वकर्मा के स्वर में कुछ पारंपरिक लोकगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं इनके स्वर में एक देवी गीत, रचना पारंपरिक है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की

0: जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
0: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
0: दूरदर्शन डीटीएच सर्विस डीडी डायरेक्ट प्लस।
1: फॉर डिटेल्स लॉग ऑन टू www.ddindia.com।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
3: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में अभी आप सुन रहे थे विजय शंकर विश्वकर्मा के स्वर में कुछ पारंपरिक लोकगीत। और इसी के साथ हमारा लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। भोजपुरी बोली का कार्यक्रम देश समार में आइए सुनते हैं फतेह चंद गुप्ता से उनका भोजपुरी कविता पाठ।
1: अब जिंदगी जियल हमार मोहाल हो गईल, अब जिंदगी जियल हमार मोहाल हो गईल, हमरा घरवा में रहल बबुआ के काल हो गईल, हमरा घरवा में रहल बबुआ के काल हो गईल। कुकुर के लैका भले पोस लेत बाना, कुकुर के लैका भले पोस लेत बाना, बुजुर्गन के पोसल अब बवाल हो गईल, अब जिंदगी जियल हमार मोहाल हो गईल, अब जिंदगी जियल हमार मोहाल हो गईल। आगे कविता कि भरी रे जिंदगिया ठेठवली हम जांगर, भरी रे जिंदगिया ठेठवली हम जांगर, बबुआ बहस्य अब जो जो आगर, भरी रे जिंदगिया ठेठवली हम जांगर, बबुआ बहस्य अब जो जो आगर। देवी और देवता के खूबे गोहरौली, देवी और देवता के खूबे गोहरौली, सब भूल गईले खेली खेल जैसे बादर, भरी रे जिंदगिया ठेठौली हम जांगर। कमजोरी खांसी और दम्मा भी दबावेला, कमजोरी खांसी और दम्मा भी दबावेला, शुगर ब्लड प्रेशर कबो किडनी सतावेला, शुगर ब्लड प्रेशर कबो किडनी सतावेला, घर से बाहर खातिर डंडे के सहारा बाटे, बाबा बाबा कहिना तिरहिया देखावेला, बाबा बाबा कहिना तिरहिया देखावेला, कमजोरी खांसी और दम्मा भी दबावेला। उम्र के ग्राफ बढ़ले से संख्या बल खास हो गईल, उम्र के ग्राफ बढ़ले से संख्या बल खास हो गईल, ठिकाना ठौर ना बाटे समस्या खास हो गईल, उम्र के ग्राफ बढ़ले से संख्या बल खास हो गईल, ठिकाना ठौर ना बाटे समस्या खास हो गईल, वृद्धाश्रम रोज खुलत बा ई चर्चा खास हो गईल, वृद्धाश्रम रोज खुलत बा ई चर्चा खास हो गईल, संस्कृति क चरण होता ई बतिया खास हो गईल, उम्र के ग्राफ बढ़ले से संख्या बल खास हो गईल। हाथ कप कपाला गोड़वा भी कप कपात बा, हाथ कप कपाता कपाला गोड़वा भी कप कपात बा, दांत टूट गईल अब जबान लपिटात बा, दांत टूट गईल अब जबान लपिटात बा, केहू ना चिन्हाला अब आँखिया धूमिल बा, केहू ना चिन्हाला अब आँखिया धूमिल बा, कान के बा उहे हाल बात ना सुनात बा, हाथ कप कपाता गोड़वा भी कप कपात बा, दांत टूट गईल अब जबान लपिटात बा, दांत टूट गईल अब जबान लपिटात बा, केहू ना चिन्हाला अब आँखिया धूमिल बा, कान के बउहे हाल बात ना सुनात बा, हाथ कप कपाता गोड़वा भी कप कपात बा, घटल घटल श्रद्धा घटल विश्वास पूजा पाठ ना होला, घटल श्रद्धा घटल विश्वास पूजा पाठ ना होला, न मतलब बाप से बाटे धर्म के बात ना होला, न मतलब बाप से बाटे धर्म के बात ना होला, घटल श्रद्धा घटल विश्वास पूजा पाठ ना होला, न मतलब बाप से बाटे धर्म के बात ना होला, मेहरिया बाल बच्चन में सिमट गईला क जिंदगी, खुलल गर बाप के मुहमा तो जूता लात भी होला, घटल श्रद्धा घटल विश्वास पूजा पाठ ना होला न मतलब बाप से बाटे, धर्म के बात ना होला न मतलब बाप से बाटे, धर्म के बात ना होला। मेहरिया बाल बच्चन में सिमट गईला आज क जिंदगी, खुलल गर बाप का मुहवा तो जूता लात भी होला। मेहरिया बाल बच्चन में सिमट गईला आज क जिंदगी, खुलल गर बाप का मुहवा तो जूता लात भी होला। घटल श्रद्धा घटल विश्वास, पूजा पाठ ना होला। बुजुर्गन के अगर इहे हाल रह जाई, बुजुर्गन के अगर इहे हाल रह जाई, तो बेटा बाप की बीचे न कौनो ताल रह जाई। बुजुर्गन के अगर इहे हाल रह जाई, बुजुर्गन के अगर इहे हाल रह जाई, तो बेटा बाप की बीचे न कौनो ताल रह जाई। न बेटा बाप की बीचे न कौनो ताल रह जाई। श्रवण के कहानी पर करी विश्वास ना कोई, श्रवण के कहानी पर करी विश्वास ना कोई। बुजुर्गन के घटी सम्मान न कौनो नाम रह जाई। बुजुर्गन के अगर ये हाल रह जाई, बुजुर्गन के अगर ये हाल रह जाई, तो बेटा बाप की बीचे न कौनो ताल रह जाई। न बेटा बाप की नीचे न कौनो ताल रह जाई। श्रवण के कहानी पर करी विश्वास ना कोई, श्रवण के कहानी पर करी विश्वास ना कोई। बुजुर्गन के घटी सम्मान न कौनो नाम रह जाई। बुजुर्गन के घटी सम्मान न कौनो नाम रह जाई।
0: भोजपुरी बोली का कार्यक्रम देश समार में अभी आप सुन रहे थे फतेह चंद गुप्ता से उनका भोजपुरी कविता पाठ। और इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम अस्तबक में आइए सुनते हैं गुजराती लोकगीत। कलाकार हैं भारती व्यास।

प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम अस्तबक में अभी आप सुन रहे थे गुजराती लोकगीत, कलाकार थी भारती व्यास। और इसी के साथ हमारा प्रादेशिक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारी इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

शाम 7:31 पर। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कुछ फिल्मी कव्वालियाँ। रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मिथिलेश वर्मा से उनकी हिंदी वार्ता। विषय है हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना।

रात 8:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गुलाम अली, मेहदी हसन और रूना लैला को।

रात 10 बजे आप सुनेंगे हमारे केंद्र से फिल्म संगीत। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन, राग होगी दुर्गा। अभी आप सुन रहे थे हमारी इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

0: में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में बदली है भारत की तस्वीर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर आदेश सुनाने का दिया निर्देश। हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए श्रमिकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के दिए निर्देश। और प्रदेश में बीती देर रात आए आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार विकास लेकर आती है। ये विकास बिना भेदभाव नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने का माध्यम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी तो सभी ने 12 वर्ष में बदलते भारत को देखा। श्री योगी ने बताया कि आज प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मऊ से विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है।
4: मऊ जनपद आज फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है। इस विकास यात्रा के 100 यात्री आपके सामने है। कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी? तो यहाँ आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी।
3: मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र आदि देकर सम्मानित किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मऊ के ताजोपुर में ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान दिए गए पंचप्रण का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना गाँव के विकास से ही साकार होगा।
4: गांव स्वावलंबी होंगे तो आत्मनिर्भरता की इकाई हम गठित कर पाएंगे। ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ने के समय एक प्रयास है, और यही तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कहा था, विकसित भारत की संकल्पना। भारत विकसित होगा तब जब प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तब जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब ताजोपुर जैसे गाँव विकसित होंगे।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत माँ का महान सपूत और किसानों का मसीहा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में कृषि राजस्व के क्षेत्र में तमाम रिफॉर्म का श्रेय उन्हें जाता है। उनका स्पष्ट मत था कि देश के विकास का रास्ता गाँव, खेत व खलिहानों से होकर जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान विकास के एजेंडे और सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। शासन की योजनाएं किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए।
5: विदेश के किसानों के मसीहा थे और उनका स्पष्ट कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है, और इसलिए विकास के एजेंडे में किसान होना चाहिए। किसान

0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज जनभवन में स्थापित हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन इकाई का उद्घाटन और अवलोकन किया। ये इकाई जनभवन गौशाला में गौवंशों को वर्ष भर मानक के अनुरूप पर्याप्त पौष्टिक और रसायन मुक्त हरा चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। यह हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन इकाई प्रतिदिन लगभग 100 किलोग्राम हरा चारा उत्पादन करने में सक्षम है। निपुण भारत मिशन के तहत राज्य स्तर पर कार्यरत मिशन के जिला समन्वयक और जिला समन्वयक प्रशिक्षण के लिए 1 और 2 जून को राज्य स्तरीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT लखनऊ में आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण में प्रदेश के सभी 75 जनपदों के जिला समन्वयक प्रतिभाग करेंगे। प्रदेश के विशेष शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। निपुण भारत मिशन के माध्यम से बच्चों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान विकसित करने के साथ साथ विद्यालयों में सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनपद हमीरपुर के ललपुरा थाना क्षेत्र के मोरान कादर गांव के पास बीती रात बेतवा नदी में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। SDRF की टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में श्रमिकों की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया है। श्री योगी ने मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बीती देर रात आए तेज आंधी तूफान, बारिश व आकाशीय बिजली से कई जिलों में भारी नुकसान और जनजीवन प्रभावित हुआ है। सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद अचानक आए पानी के बहाव से कई वाहन बह गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को तत्काल फील्ड में जाकर सर्वे कर नुकसान का आकलन करने और राहत राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और हर 3 घंटे में स्थिति की अद्यतन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर परिसर में बने मां भगवती के मंदिर के शिखर पर आज ध्वजारोहण किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और साध्वी रितंभरा ने ध्वज को शिखर पर स्थापित किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 में संस्कृति विभाग द्वारा संग्रहालयों की स्थापना

0: विकास एवं क्यूरेशन कार्य की 17 नवीन परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इन परियोजनाओं के तहत संग्रहालयों की स्थापना, उच्चीकरण, नवीनीकरण, क्यूरेशन आदि के कार्य कराए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में बदली है भारत की तस्वीर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीनों के भीतर आदेश सुनाने का दिया निर्देश। हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए श्रमिकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के दिए निर्देश। और प्रदेश में बीती देर रात आए आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर
3: यानी मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुनेंगे फिल्म संगीत इस अंतराल के बाद।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: हमारी जनगणना हमारा विकास।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
7: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
8: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
7: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
8: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
7: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
8: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
7: For details, log on to www.ddindia.com।
9: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
10: आप
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

0: स्वच्छता से ही मिलेगी खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी।
1: स्वच्छता का संकल्प लाओ, गंदगी को दूर भगाओ,
0: कूड़ेदान में कूड़ा डालो, साफ सफाई का ध्येय अपनाओ,
1: हर गली हर मोहल्ला हो साफ, स्वच्छता से ही मिलेगी खुशियों की सौगात।
0: स्वच्छता का ये संकल्प लें, गंदगी को दूर भगाएं,
1: हर जगह स्वच्छता का दीप जलाएं, स्वस्थ और सुंदर जीवन को अपनाएं।
0: स्वच्छता का संदेश फैलाओ, हर जगह सफाई लाओ,
1: कूड़ा कचरा सही जगह डालो, स्वच्छता की आदत अपनाओ,

0: पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
0: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
0: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है CSU मुंबई @gmail.com।

फिल्म संगीत के सभी श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त राजेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज शुक्रवार है। आज हम फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं कव्वालियों का सुंदर सा गुच्छा। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली खूबसूरत कव्वाली, फिल्म बरसात की रात से। स्वर दिया है मन्ना डे, आशा भोसले व साथियों ने। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सी कव्वाली।

श्रोताओं, इस्माइल आज़ाद व साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म अल हिलाल की ये कवाली। और आइए अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर व साथियों के स्वर में फिल्म हिना की ये खूबसूरत सी कवाली।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हिंदी कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मिथिलेश वर्मा से उनकी हिंदी वार्ता। विषय है हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना।
1: किसी भी देश का साहित्य उस देश का अमूल्य थाती होता है। समय समय पर अपनी रचना धर्मिता से सो रहे तत्कालीन जनमानस को जगाने तथा अंदर तक झकझोरने का काम करता है। इसलिए साहित्य का योगदान देश के निर्माण में अवर्णनीय होता है। हिंदी साहित्य का भी योगदान विश्व के अन्य साहित्य की तरह अपने देश के नवनिर्माण में रहा है। जब हमारा देश ब्रिटिश साम्राज्य की पराधीनता में छटपटा रहा था, जनता के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटा जा रहा था, किसान साहूकार मजदूर तथा अन्य सर्वसाधारण वर्ग ब्रितानी शासकों की दमनपूर्ण नीतियों का शिकार होकर अपने ही देश में दास्तापूर्ण जीवन जीने के लिए अभिशप्त था, ऐसे समय में हिंदी साहित्य के कवियों लेखकों ने प्रकारांतर से अपनी रचनाओं के द्वारा यहाँ की जनता को ब्रिटिश कुशासन को समाप्त करने के लिए सोते हुए लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए जगाया। रीतिकालीन की समाप्ति के बाद देश की सामाजिक तथा राजनैतिक परिस्थिति में तेजी से बदलाव हुआ। अब देश भर मुस्लिम शासन के स्थान पर ब्रिटिश साम्राज्य का जुआ पड़ गया। ऐसे समय में 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक हिंदी साहित्य में एक नया युग छाया रहा, जिसे भारतेंदु युग के नाम से जाना गया। भारतेंदु युगीन लेखकों और कवियों ने शोषण के विरुद्ध अपनी कलम उठाई। उनकी रचनाओं में ब्रिटिश साम्राज्य का अंत करने की व्यग्रता दिखाई देती है। देश प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना का संचार करना इस काल के कवियों और लेखकों का प्रिय विषय था। भारतेंदु जी ने अपने द्वारा रचित नाटकों का जगह जगह मंचन करके सुसुप्त भारतीयों को जगाने का बीड़ा उठाया। इस संदर्भ में अंधेर नगरी नाटक का उल्लेख विशेष रूप से किया जा सकता है। इस काल के अन्य लेखकों में प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। राष्ट्रीय चेतना को और बढ़ाने में भारतेंदु युग के बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने के नाम पर पड़े द्विवेदी युग में अपना अप्रतिम योगदान दिया। इस समय के कवि राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कविताओं को लिखने लगे। भारतेंदु जी द्वारा प्रारंभ की गई राष्ट्रीय चेतना के द्विवेदी युग के कवियों ने तीव्र गति प्रदान किया। इस समय समूचे देश में राष्ट्रीय भावना का सर्वत्र तूफान दिखाई देने लगा। इस युग के कवियों में श्रीधर पाठक, मैथी शरणगुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे मुख्य माने जाते हैं। आचार्य द्विवेदी जी ने भी अपनी पत्रिका सरस्वती के माध्यम से राष्ट्रीयता से लबालब कविताओं, निबंधों तथा अन्य लेखों को स्थान देकर ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों को जनता तक पहुंचाकर राष्ट्रीय चेतना की लहर को समूचे देश में दौड़ाया। इस युग के प्रमुख कवि मैथिली शरणगुप्त ने भारत को जागृत करने के लिए एक कविता लिखी, जो तत्कालीन पत्रिका प्रभा में प्रकाशित हुई। उठो भाइयों, नींद को छोड़ दो, जागो जाल आलस्य को तोड़ दो, मिटे सर्वदा विद्या निशा, प्रभापूर्ण हो जाए हमारी प्राची दिशा। द्विवेदी युग के ही दूसरे ब्रिटिश कवि राम नरेश त्रिपाठी ने भी अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीयों में राष्ट्र प्रेम का स्वर फूंके। उन्हें उनके कर्तव्य का बोध कराया। अपने पथिक नामक खंड काव्य में सत्कर्तव्य शीर्षक से राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। जिस पर गिरकर उदर दरी से तुमने जन्म लिया है, जिसका खाकर अन्न सुधासम नीर समीर पिया है, वह स्नेह की मूर्ति दयामयी माता तुल्य यही है, इसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। इस प्रकार की कविताओं को लिखकर कविवर राम नरेश त्रिपाठी ने तत्कालीन जनमानस को राष्ट्रीयता की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो किया। एक स्थान पर उन्होंने कहा है कि पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए हैं वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। उससे होना उन प्रथम है सत्कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को से स्वजीवन सारा। राम नरेश त्रिपाठी व अन्य द्विवेदी योगीन परंपरा को बढ़ाने में माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित बालकृष्ण शर्मा, नवीन रामधारी सिंह दिनकर, गणेश शंकर विद्यार्थी तथा अन्य लोगों ने अपना भरपूर योगदान दिया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं राष्ट्रवादिता की लहर को दौड़ाने में पूरी तरह से समर्थ दिखाई देती है। इनकी कविताओं में वह संजीवनी है जो मृत प्राय असमंजस की स्थिति में चौराहे पर खड़े भारतीयों को देश की प्रतंत्रता की बेड़ियों को काट डालने के लिए राष्ट्र पर मर मिटने के लिए उत्प्रेरित करती है। चतुर्वेदी जी की पुष्प की अभिलाषा नामक कविता अत्यंत चर्चित रही है, जिसने सो रहे भारतीयों को जगाने में पूरी कामयाबी हासिल की। जैसे चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी बाला माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर मैं देना तुम फेंक, मातृभूमि की शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, भारत के नवयुवकों की शक्ति को ललकारते हुए उन्होंने कहा कि खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्यौहार जीवन की जवानी। माखनलाल चतुर्वेदी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्वतंत्रता आंदोलन के सजग प्रहरी गणेश शंकर विद्यार्थी के परम सहयोगी बालकृष्ण शर्मा, नवीन ने अपनी कविताओं में भारत के गौरवशाली अतीत का सजीव चित्रण किया है। उनकी रचनाओं के माध्यम से भारतीयों के दृढ़ इरादे प्रस्फुटित होते हैं। हम मानव को मुक्त करेंगे, यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में राष्ट्रीयता का सैलाब दिखाई देता है। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में अरुण यह मधुमेह देश हमारा तथा हिमाद्री तुंग भृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती जैसी कविताओं में राष्ट्रीयता के स्वर सुनाई देते हैं। निराला की जूही की कली, कुकुरमुत्ता, परिमल आदि रचनाएं जो राष्ट्रीय चेतना के पथ को प्रशस्त करती हैं। अन्य परवर्ती कवियों में दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, श्याम नारायण पांडे, दशरथ द्विवेदी जैसे राष्ट्रवादी कवियों ने राष्ट्रवादिता का संचार किया। दिनकर की आग की भीख में कवि की निराशा प्रकट होती है। धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा, कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी समाधि पर शीर्षक से लंबी कविता लिखी। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इस वीरोचित कविता ने भारतीय देशभक्तों के हृदय में स्वतंत्रता की ज्योत प्रज्वलित की। हिंदी के अन्य कवियों में श्याम नारायण पांडे ने हल्दी की घाटी काव्य में चित्तौड़ की, जो हमारे स्वाभिमान के प्रतीक राणा प्रताप की कर्मस्थली रही है, उसकी गौरव गाथा का गान करके भारतीयों को अतीत से प्रेरणा लेने की बात कही। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न जाना काशी, रामेश्वर काशी तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। स्वतंत्रता के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले दशरथ द्विवेदी की स्वदेश प्रेम से भरी कविताएं भारत के लोगों को झकझोरने का काम किया। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस प्रकार निष्कर्षतः यह कहना अतियुक्तपूर्ण लगता है कि हिंदी में राष्ट्रीय चेतना का बिगुल फूंकने में अपने कवियों, लेखकों, पत्रकारों आदि ने अपना अमूल्य योगदान दिया।
0: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मिथिलेश वर्मा से उनकी हिंदी वार्ता, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना। और इसी के साथ हमारा हिंदी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुनेंगे सुगम संगीत इस अंतराल के बाद।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
5: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मेहदी हसन, गुलाम अली और रूना लैला को।

श्रोताओं, इस समय आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र आपकी सेवा में है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गुलाम अली, मेहदी हसन और रूना लैला को।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली मेहदी हसन और रूना लैला को। और इसी के साथ हमारा सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में।

0: मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर ये तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमेरिका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

निशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज़ को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और IPL क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management leveraging technology and four-layered security involving citizens, says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. Indian shuttlers Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter men's doubles semi-final of Singapore Open Badminton. Mixed doubles duo Dhruv Kapila and Tanisha Krasto also advanced to semi-final. And in IPL cricket, crucial qualifier 2 match underway between Gujarat Titans and Rajasthan Royals in New Chandigarh. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat today.
4: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a four-dimensional concept. And instead of focusing solely on border security, we will introduce a new concept of territorial security. Under the Smart Border Security Project, we are working to strengthen the security grid along the entire border with Bangladesh and Pakistan.
3: The minister said central government is leveraging cutting-edge technology, including drones, radars and modern fencing, to establish an unbreachable leak-proof security grid. Moving beyond traditional border security, this model introduces the concept of complete territorial security by actively integrating citizens, civil administration, the local police and the military alongside the BSF. Referring to international borders, Mr. Shah added that with the formation of the new government in West Bengal, the long-standing deadlock has ended and the state government has provided land for border fencing within a single week. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan today said that a national seed reserve of 1,74,000 quintals has been established to ensure seed availability to farmers. Addressing media on the second day of National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 in New Delhi, Mr. Chauhan said that 9,76,000 farmer IDs have been created so far. He said that the farmers will no longer need separate documents to access different schemes. Mr. Chauhan stressed the need for transparency in fertilizer distribution, prevention of black marketing and ensuring proper supply to genuine farmers.
5: Save the Farm campaign, Khet Bachao Abhiyan, this cannot run without you. From June 1st to June 30th, all of you will also have to step out. I will also step out. You should also step out and tell the rest of the ministers, central ministers, public representatives and MLAs that they should also step out. Everyone will have to go. Let the public representatives lead this. How much fertilizer, which pesticide, whatever the requirement for pesticides is, we will reduce it and eliminate it.
6: Kisan Samman Nidhi mein koi reh gaya hai aupcharikta puri karke uska labh hum de de.
3: The government has said that there is sufficient stock of petrol, diesel and LPG in the country and all the refineries are operating at the optimum level. Addressing an inter-ministerial media briefing in New Delhi, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma said that LPG production is at all-time high, which is around 92,000 metric tons per day.
7: LPG ka production, it also depends on the optimization activity which is taken up within the refinery, and that impacts the production, and that's why we have slight up and down. One thing. Second is we are also giving the part of the pool for C3, C4 molecules. Third important thing is some of the refineries have come back to operations, and other than that, we are getting more, you know, LPG because of the optimization from some of the refiners.
3: Ms. Sharma also informed that no dry out has been reported at any LPG distributorship. Speaking about retail outlets, she said 150 districts have reported 30% growth in petrol, while 156 districts reported more than 30%. She said that the government is reviewing the situation. Director, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma said that a merchant vessel, Nisos Keros, a crude oil tanker, has safely transited the Strait of Hormuz.
8: A merchant vessel, Nisos Keros, a Marshall Island flag crude oil tanker, safely transited Strait of Hormuz on the night of 25-26 and is bound to arrive at Vishakhapatnam on 3rd June. This merchant vessel is carrying crude oil, approximately 2,70,000 metric tons. It has all foreign crew members and is a Marshall Island flag vessel. All Indian seafarers in the region are safe and no incident involving Indian seafarers, either on Indian flag or foreign flag merchant vessel, has been reported.
3: Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said that the incident of paper leak was extremely unfortunate and should not have happened. In an exclusive interview with DD News, Mr. Pradhan assured that the re-examination process will be conducted in a proper and systematic manner without any errors. He also appealed for everyone's cooperation in carrying out the task smoothly.
9: The incident is very unfortunate. It should not have happened. Now that we have announced re-NEET, it should be conducted properly and done with care. This is our responsibility. We expect everyone's cooperation.

अभी आप मोहम्मद रफ़ी को सुन रहे थे, फिल्म थी लोफर। और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को, फिल्म है पाकीजा।

श्रोताओं, इस समय यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र आपकी सेवा में है। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। हमराज फिल्म में अभी आप महेंद्र कपूर को सुन रहे थे। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म आँखियों के झरोखों से। स्वर दिया है हेमलता ने।

आँखियों के झरोखों से इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे हेमलता को। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में किशोर कुमार को, फिल्म है बुढ़ा मिल गया।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन, राग है दुर्गा।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन, राग थी दुर्गा। और इसी के साथ हमारा शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने

के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज़ रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताज़ा समाचार मिले तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।